सुप्रभात, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। आज दिन है मंगलवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 2026 के जून महीने की 16 तारीख। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 34 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रिभोज का आयोजन किया। तीन दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमरीका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबोला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसानी। इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता गर्मा सब्जियों के प्रभेद। वाचन स्वर है अनीता तिर्की का।
1: लतरदार सब्जियों में लौकी, नेनुआ, खीरा, करेला, तरबूज, झींगी, सेम, कोहड़ा, लोबिया, झाड़ीदार, फ्रेंच बीन, टमाटर, बैगन, फूलगोभी, भिंडी, चौलाई, लेटुस इत्यादि की खेती किसान भाई कर सकते हैं। टमाटर की उन्नत किस्मों में आरका आभा, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन है और टमाटर की संकर किस्मों में स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि और स्वर्ण वैभव है। इसी तरह

0: प्रोजेक्ट है। फ्रेंच बीन की जो लतरदार खेती है उसमें स्वर्ण सुफला, स्वर्ण हरिता, स्वर्ण श्वेता है और झाड़ीदार किस्म में फ्रेंच बीन की HAFB2, HAFB3, HAFB4 है। इसी तरह कद्दू वर्गीय जो सब्जी फसल है, लौकी में आर का बहार, पूसा समर प्रोलोफिक लॉन्ग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी इत्यादि है। खीरा की उन्नत किस्म में स्वर्ण पूर्णा, स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल, पूसा अगेती है। करेला में आर का हरित, लंबा हरा, प्रिया, पूसा हाइब्रिड 1 है। नेनुआ के लिए स्वर्ण प्रभा, पूसा चिकनी सतपुतिया है। सेम के लिए स्वर्ण उत्कृष्ट, पूसा अगेती रजनी है। झींगी के लिए स्वर्ण मंजरी, स्वर्ण उपहार, पूसा नसदार, पूसा सुप्रिया है। कोहरा में HAPK10। तरबूज के लिए आर का अनामिका, सुगर बेबी, आर का ज्योति है और चौलाई के लिए पूसा किरण, पूसा कृति, आर का अरुणिमा अच्छी किस्में मानी गई है। लतरदार जो सब्जियां हैं उसमें बीज की मात्रा कोहरा और लौकी के लिए 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर। बुआई आप जनवरी से लेकर मार्च तक कर सकते हैं। बुआई की दूरी होगी 2 से 2.5 मीटर। इसी तरह करेला, नेनुआ और झींगी के लिए बीज की जो दर है 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर, इसको भी आप फरवरी माह तक लगा सकते हैं। जो बुआई की दूरी है कतार से कतार 2 मीटर और पौधा से पौधा 1.5 मीटर की दूरी पर। खीरा के लिए और तरबूज के लिए खीरा में आप 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर ले सकते हैं, इसको भी आप मार्च तक रुपाई कर सकते हैं। पौधा से पौधा की दूरी 0.5 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर रखना है खीरा में। तरबूज में 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, इसको भी आप फरवरी तक बो सकते हैं। पौधा से पौधा की दूरी 1.25 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर तक आप रख सकते हैं। इसी तरह टमाटर की जो संकर किस्में हैं, इसमें बीज की मात्रा होगी 1.25 ग्राम से 1.5 ग्राम तक और इसे आप फरवरी माह तक रोप सकते हैं। बुआई की जो दूरी है पौधा से पौधा 40 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर। बैगन में भी आपको 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर और आप इसको फरवरी माह तक बो सकते हैं। बुआई की जो दूरी है पौधा से पौधा 40 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर। भिंडी आप 8 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर लगा सकते हैं, इसे भी आप मार्च तक रुपाई कर सकते हैं गर्मा के लिए और पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर रख सकते हैं। फ्रेंच बीन में आप 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से रख सकते हैं, इसकी बुआई भी आप फरवरी तक कर सकते हैं। चौलाई के लिए भी बीज दर जो होगी 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, फूल गोभी के लिए 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इन सभी को आप फरवरी माह तक बो सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी, जिसमें आज आपने सुना वार्ता गर्मा सब्जियों के प्रभेद, वाचन स्वर था अनीता तिर्की का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन स्वर है दिनेश कुमार लाल का।

जीवन में प्रायः ऐसे पल आते रहते हैं जब मन उचाट और उदास होने लगता है। एक भय पैदा होने लगता है कि कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं होने जा रहा है। अकारण मन का उदास होना अवचेतन मन की हताशा और आत्मविश्वास की कमी को प्रकट करता है। जब प्रत्यक्ष कारण हो तो भी यह खंडित विश्वास और नकारात्मक मानसिकता का प्रतीक है। मनुष्य का विश्वास तभी डोलता है और मन तभी निराश होता है जब वो ईश्वर पर अविश्वास कर रहा होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी यदि मन में ईश्वर के प्रति विश्वास और आभार का भरपूर भाव नहीं है तो इसे उसकी अज्ञानता ही कहा जाएगा। मनुष्य योनि में होना ही विश्वास और आशा का सबसे बड़ा आधार है जो कभी उसके मन को डीगने नहीं देता।

0: यदि उसे मनुष्य योनि मिली है तो ये सबसे बड़ा कारण है प्रसन्न और आशान्वित रहने का कि उसे आवागमन के चक्र से मुक्त करने और संसार के माया जाल से उबरने योग्य समझा गया है। उसे मनुष्य के रूप में जो समय मिला है वो हताशा और निराशा में व्यर्थ जाने देने के लिए नहीं है, इसका सदुपयोग करना आना चाहिए। दूसरी बात भय और चिंता की है जो परमात्मा को ना समझने के कारण है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अनहोनी कहा जा सके। जो हो रहा है या भविष्य में जो होने वाला है उसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ईश्वर की इच्छा है, जिसके हम पात्र हैं वही हमें दे रहा है। इसलिए किसी तरह की चिंता और आशंका व्यर्थ है। किसी भी आशंका से दूर जब ईश्वर के न्याय पर विश्वास करना आ जाता है तो मन प्रसन्नता से भर उठता है। ईश्वर की दया का इसी से पता लगता है कि उसने सृष्टि में जितनी भी रचनाएं रची हैं उन सभी में कुछ ना कुछ गुण दिए हैं। संसार में कुछ भी गुण विहीन नहीं है, भले ही राह की धूल या रोड़ा ही क्यों ना हो। हर चीज का कोई ना कोई उपयोग है। सर्वाधिक गुण मनुष्य में है। जब उसे यह आभास हो जाए कि वो कितनी अद्भुत शक्तियों का स्वामी है तो वो ऐसे गर्व की अनुभूति से भर उठेगा कि निराशा सदा के लिए उसके जीवन से पलायन कर जाएगी। ईश्वर के न्याय के प्रति आश्वस्त होना ही जीवन में हर्ष भाव का मुख्य उत्प्रेरक तत्व है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन स्वर था दिनेश कुमार लाल का। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और श्रोताओं ये वक्त है भक्ति गीतों के कार्यक्रम आराधना का।

श्रोताओं, कोई भी रिश्ता कभी भी आपकी संस्कृति, आपकी सुंदरता, आपकी उम्र या आपके व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करता। रिश्ता हमेशा आपकी सच्चाई और ईमानदारी, आपके द्वारा दिया गया समय और सम्मान पर निर्भर करता है। तो इन बातों के साथ भक्ति गीतों के कार्यक्रम आराधना में आप सबों का स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ।

आराधना आकाशवाणी के रांची केंद्र से। श्रोताओं, कितनी खूबसूरती से ईश्वर आपकी जिंदगी में हर एक दिन जोड़ते हैं, इसलिए नहीं कि आपको उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि किसी और को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है या बहुत ज्यादा जरूरत हो। तो हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी के काम आ सके।

श्रोताओं, जिस प्रकार वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच ही जाते हैं।

सुबह की शुरुआत ईश्वर वंदना के साथ भक्ति में गीतों के साथ आप सुन रहे हैं आराधना आकाशवाणी के रांची केंद्र से। श्रोताओं, कभी भी खुद को अकेला नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है, बस विश्वास करने की जरूरत है।

श्रोताओं, कहते हैं आपकी नीयत से भगवान खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब आपको ये तय करना है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं।

श्रोताओं, हवाएं मौसम का रुख बदलती हैं तो दुआएं मुसीबतों का, तो दुआ देते रहिए, आप पर भी दुआओं की बारिश होती रहेगी। इन बातों के साथ भक्ति गीतों के कार्यक्रम आराधना में आज बस इतना ही।

अभी आप सुन रहे थे आराधना भक्ति गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

संध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकई को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, तुम मंगल साज सजो। कपटयुक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकई बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा, हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाती की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकई ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक का, दूसरा वर भी हे नाथ मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार जो हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 7:05 का वक्त होगा स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का, जिसमें आज चर्चा का विषय है योग करें और खुश रहें। जानकारी दे रहे हैं पीएन सिंह और उनसे बातें कर रहे हैं संजीव कुमार लाल। सात बजकर 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुबह सुरीली। 7:45 का वक्त होगा खुला आकाश का, जिसमें आज आप सुनेंगे योग और ध्यान के विषय में सविता नारायण से प्रशांत गौरव की बातचीत। 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 8:30 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे लोकगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे उराव लोकगीत, कलाकार हैं सोमा उराव और उनके साथी। 9:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। 9:30 का वक्त होगा शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज आप सुनेंगे सितार पर राग रागेश्वरी में आलाप और जोड़ के बाद प्रस्तुत है दो गते, विलंबित गत तीन ताल में और द्रुत गत एक ताल में निबद्ध है। गायक कलाकार हैं चीर सत्य ठाकुर। दस बजे आप सुनेंगे क्रीड़ा जगत, जिसमें आज आप सुनेंगे परिचर्चा आईसीसी महिला T20 विश्व कप झारखंड T20 लीग, रिपोर्ट एवं संकलन विश्वजीत पात्र की है, प्रस्तुति प्रभु शरण की। 10:30 का वक्त होगा जोहार रांची कार्यक्रम का और 11:30 पर आपकी पसंद। 12:00 आप सुनेंगे महिलाओं के पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, प्रस्तुति कुमार गौरव पांडे की है। 12:30 पर फिल्म संगीत और 1:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:10 पर। अनुरंजनी इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 1:20 पर। कलाकार हैं शोभा गुरटू। एक बजकर 45 पर सुगम संगीत आप सुनेंगे, जिसमें आज आप सुनेंगे गजल हरिहरन की आवाज में। 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार। जय भारती कार्यक्रम 2:30 पर और 3:00 का वक्त होगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। 3:30 पर रांची मेलोडीज और 4:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार। श्रोताओं, ये तो थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आप सुनेंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार जो हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमैंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिक व्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोक सेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोक सेवा मुख्य परीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेब फलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होनी

0: की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर गोजेना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। वक्त है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का, जिसमें आज चर्चा का विषय है योग करें और खुश रहें। जानकारी दे रहे हैं पीएन सिंह और उनसे बातें कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के समय में योग का बड़ा ही महत्व है। योग में शक्ति है, योग में भक्ति है और योग एक साधना है। यदि हम वर्तमान जीवन शैली की बात करें तो लोग तनाव के वातावरण से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में यदि आप योग करते हैं, योग का सहारा लेते हैं, तो आप तनाव से बचेंगे और आपका जीवन खुशमय होगा। तो कौन कौन से योग करें और किस प्रकार योग करें और योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं प्रसिद्ध योगा ट्रेनर श्री पीएन सिंह साहब। सिंह साहब स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: सिंह साहब, आज की बदलती जीवन शैली में योग का कितना महत्व है?
2: मानव जीवन जब से शुरू हुआ है तब से मानवता एक खुशी, शांति,

0: का प्रबंधन कैसे करें, और कौन कौन ऐसी योगा है जिसे करने में आपको वक्त भी नहीं लगता और आप उसे करते हैं तो आपको शांति मिलेगी?
1: देखिए, जो लोग कहते हैं जो हमको समय नहीं मिल रहा है या हम काम में इतना व्यस्त हैं, उनको जानना चाहिए जीवन है तब काम है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे आप कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने क्वालिटी टाइम से कुछ ना कुछ कुछ मिनट 10 मिनट 15 मिनट कम से कम आप जरूर निकालें और योग करें। ऐसी विधि है योग कि आपके मन को शांति देगा, आपको स्वस्थ रखेगा, आपके शारीरिक संरचना है उसको तरोताजा रखेगा और आपको एक समन्वय करेगा। आपकी भावनाएं, विचार, आपके सांस, आपके शरीर, इन सब में एक लयबद्धता कायम करता है। और इसमें बहुत टाइम देने की बात नहीं है, आपके कमिटमेंट की बात है। आप जिस दिन यह अनुभव कर लेंगे कि योग अगर आप नियमित करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में, आपके विचार में, आपके मन में ये फर्क डालता है। छोटी छोटी योग की प्रक्रियाएं हैं जिसको आप करेंगे, जो आसन के रूप में किया जाता है, प्राणायाम के रूप में किया जाता है, ध्यान के रूप में किया जाता है, आप इसका अभ्यास जरूर करें
0: जी। तो कौन कौन से योग हम अपने दिनचर्या में शामिल करें जिसको करने से मन तरोताजा हो और बहुत सारी शारीरिक व्याधियां हैं उससे हम दूर रहें?
1: केवल आसन एक योग नहीं है, आसन एक योग की एक अंग है, अंग के रूप में देखिए। तो आप उसमें शरीर से जुड़ा हुआ जिसमें शारीरिक रूप से डेवलपमेंट की होते हैं उसको करना चाहिए, और डायनेमिक आसनास होते हैं उसको करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए कम उम्र के बच्चों को, उससे उनके शारीरिक ग्रोथ, मानसिक विकास होता है और बौद्धिक रूप से वो कुछ जानने की इच्छा के प्रति प्रेरणा जगता है, वो उस ओर सोचते रहते हैं। आजकल लोग, बच्चे जो छोटे होते हैं उसके ग्रोथ नहीं ले रहे हों तो जैसे एक छोटा सा है ताड़ासन करेंगे, और ताड़ासन करने से उसकी उस उम्र में लंबाई बढ़ती है, उसका बॉडी सुडोल होता है, उसके जो फिजिकल अंगों में एक बैलेंस बनता है। एक छोटा सा बात करते हैं। तो इसी तरह आप जब भी योग करें आप ये ख्याल रखें जो शारीरिक स्तर पर जब आप आसन करते हैं तो पहले स्ट्रेचिंग आसन करना चाहिए, ऊपर की ओर खींचने वाला आसन करना चाहिए, फिर बाएं और दाएं की ओर मुड़ने वाला आसन कर, त्रिकोण आसन कर दें, तिर्यक त्रिकोण आसन कर सकते हैं, फिर आगे और पीछे झुकने वाला चक्रासन, पीछे झुकने वाला, और पादहस्तासन आगे की ओर झुकने वाला करना चाहिए, और फिर बैठ करके, फिर पेट के बल लेट करके, फिर पीठ के बल लेट करके, ये एक संपूर्ण इंटीग्रेटेड आसन आप अपनी सुविधा के अनुसार सेलेक्ट करके आपको करना चाहिए। एक के बाद दूसरे को करना चाहिए। फिर इसके बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के कई तरीके हैं, लेकिन जो बहुत ही आसान है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये जो प्राण शक्ति जो शरीर में ट्रैवल करती है वो नाड़ियों के द्वारा ट्रैवल करती है और उसका शुद्धिकरण होता है जब प्राणायाम करते हैं आपको। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही प्रभावकारी है और हर व्यक्ति को करना चाहिए। और इसमें कुछ नहीं है, आप किसी भी ध्यान करने के आसन में आप बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, सर सीधा होना चाहिए, आंखें बंद, और आपके बाएं हाथ की उंगलियां आपके घुटने पर हों, तलहटी घुटने पर हों, तलहटी आकाश की ओर हो, और अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को जोड़ लेंगे उसके टिप्स को, और बाकी तीन उंगलियों को सीधा कर लेंगे। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। और दाहिने हाथ की अंगूठे को दाहिने नासिका पर रखेंगे और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों को दोनों भौम भौम के बीच, भौम भूमध्य पर रखेंगे, और रिंग फिंगर और छोटी फिंगर को बाएं नाक के अंगूठे पर रखेंगे, बाएं

नाक पर रखेंगे के छिद्र पर रखेंगे। अब दाहिने अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करेंगे और बाएं से सांस लेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे, पूरे फेफड़े में सांस को भरेंगे। बाएं नासिका को उंगलियों के सहारे बंद करेंगे, दाहिने अंगूठे को खोल देंगे, दाहिने से सांस को बाहर करेंगे, पूरा बाहर हो जाएगा धीरे धीरे। फिर दाहिने नासिका से सांस लेंगे, दाहिने अंगूठे से दाहिने नासिका क्षेत्र को बंद करेंगे, बाएं को नासिका क्षेत्र को छोड़ देंगे, खोल देंगे और उससे बाहर सांस को निकालेंगे। ये एक राउंड हुआ। इस प्रकार कम से कम 10 राउंड लेना चाहिए और ये प्रक्रिया आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस नाड़ी शोधन प्रक्रिया से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा शक्ति अप होती है और अब देखेंगे आपका मन शांत, चित्त स्थिर हो गया और मन में एक शांति का अनुभव होता है। एकाग्र, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने से आप देखेंगे आपका मन एकाग्र हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, आप तो सांस लेते ही हैं, बस कुछ मिनट आप बैठ करके और इसको आंखें को बंद रखेंगे इस क्रिया के दौरान, तो आप देखेंगे जो ये तुरंत में आपके जो मन स्थिति है उसमें बदलाव हुआ, सकारात्मक बदलाव हो जाता है। आपको यह भी शिकायत मिलती होगी जो हमें नींद नहीं आती है, यह आम शिकायत है। तो हम एक और सलाह देना चाहेंगे, बहुत ही है एक भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम के करने के बाद, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद, आप कम से कम इसी अवस्था में आँख बंद करके बैठ जाइए और सांस भरिए और सांस को, पहले सांस को जाने दीजिए, खाली छोड़ दीजिए, फिर सांस को भरिए और इसे भी जाने दीजिए। अब सांस भ्रामरी प्राणायाम के लिए सांस भरिए और छोड़ते वक्त भौंरे की आवाज़ करेंगे, जैसे देखिए।

0: इस प्रकार 6-7 सांस आप लीजिए, ये भ्रामरी प्राणायाम। जब आप भौंरे की आवाज़ करते हो तो आपका ध्यान मस्तिष्क के अंदर होना चाहिए। आप देखेंगे जो इससे आपका तनाव कम होगा, एंग्जाइटी कम होगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो टोनअप होते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है, आप में मन में शांति होती है, आप क्रिएटिविटी आप में डेवलप होता है। हम युवाओं को, विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे कि आप जिस चीज़ की तलाश में आप हैं, जो कैसा करियर आपका बनेगा, कैसा आप आगे चल के प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, परीक्षाओं और इंटरव्यू में कैसे आप निश्चिंत होके कॉन्फिडेंटली आप करेंगे, इन सब के सवालों का जवाब आपके योगा अभ्यास में छिपा हुआ है। आपके अंतःकरण की जो क्षमताएं हैं, पोटेंशियलिटीज हैं, उसको योगा बाहर निकालेगा और आप जो भ्रम की स्थिति में हैं, किस ओर जाएं, इस चौराहे जीवन के इस चौराहे में खड़े हैं आप, निर्णय के बीच में खड़े हैं, वो निर्णय करने की क्षमता योग का अभ्यास से आपको मिलने जा रहा है। ध्यान, प्राणायाम, योगासन आप करेंगे नियमित, आपका माइंड फोकस्ड रहेगा, आप शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है, और शांत मन करने के लिए, प्रसन्न मन रखने के लिए, स्वस्थ शरीर रखने के लिए आपको योग करिए, निरोग रहिए और खुश रहिए, अपने भी मुस्कुराइए, दूसरों को भी मुस्कुराने दीजिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया श्री पीएम सिंह साहब। योग करिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेरने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, कल एक फिर नई जानकारी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज चर्चा का विषय था योग करें और खुश रहें। जानकारी दे रहे थे पीएन सिंह और उनसे बातें कर रहे थे संजीव कुमार लाल।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। वक्त है कार्यक्रम सुबह सुरीली का। फिल्म संगीत से सजे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।

0: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: श्रोताओं, कहते हैं प्रसन्नता तो चंदन है, दूसरों के माथे पर लगाइए, आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेगी। तो इन बातों के साथ विनीता स्वागत करती है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सुबह सुरीली में। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म तेरी कसम से अमित कुमार की आवाज में।

और आइए अब सुनते हैं अभिमान फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत SD बर्मन का है और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

और आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आंधी फिल्म का गीत। संगीत आर डी बर्मन का है और इस गीत को लिखा है गुलजार ने।

हम सबसे गति से था लिए रंग सब सका संग मन में उमंग गति संग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुबह सुरीली। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित
2: कार्यक्रम खुला आकाश में आज आप सुनेंगे योग और ध्यान विषय पर सविता नारायण से गौरव प्रशांत गौरव की बातचीत।

0: दोस्तों, जब हम योग की बात करते हैं तो बहुत से लोगों की दिमाग में केवल शरीर को मोड़ने वाली आसनों की तस्वीर आती है, लेकिन योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह एक जीवन शैली है, यह एक विधा है जो मन, शरीर और आत्मा को जोड़ती है। आधुनिक जीवन में जहाँ तनाव, चिंता, नींद की कमी और असंतुलित खानपान आम बात हो गई है, वहाँ योग हमें एक सरल लेकिन प्रभावशाली समाधान प्रदान करता है। आज का इंसान हर समय किसी न किसी चीज़ की दौड़ में लगा हुआ है। काम का प्रेशर, सोशल मीडिया की अधीरता, रिश्तों की उलझने, इन सब के बीच हम अपने आप से कटते जा रहे हैं। इन्हीं सब विषयों को समेटे हुए आज योग और मेडिटेशन विषय पर बात करने के लिए आकाशवाणी रांची के स्टूडियो में मौजूद हैं सविता नारायण, जो एक मेडिटेशन काउंसलर हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और इन्हीं सोशल मीडिया के माध्यम से योगा की क्लासेस भी चलाती हैं। सविता जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद प्रशांत जी।
0: श्रोताओं, आपको बता दें, सविता जी की स्कूलिंग यहीं रांची से ही हुई है। इन्होंने लॉर्टे कॉन्वेंट JVM शामली से पढ़ाई की अपनी 10th एंड 12th की, और अपनी पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ की पढ़ाई भी की और लॉ की प्रैक्टिस भी कर रही हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम करती हैं। इनका फुल टाइम काम है योगा एंड मेडिटेशन पे लोगों को बताना, अपने YouTube चैनल के माध्यम से और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, फिजिकल क्लासेस के माध्यम से। तो आज हम इनसे जानेंगे कि योग और मेडिटेशन, जो कि साथ साथ चलता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, हम इनसे जानेंगे। सविता जी, सबसे पहले ये बताएं कि योग और मेडिटेशन, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई?
1: योग और मेडिटेशन की शुरुआत हुई थी जब पतंजलि ने योग सूत्र लिखे थे, और उसके बाद बहुत पीढ़ी आते गए योगियों के। अगर आपने परमहंस योगानंदा जी की किताब पढ़ी है तो उसमें उनके चेन ऑफ गुरुज हैं, महावतार बाबा जी से शुरू करते हुए लहरी महाशय श्री युक्तेश्वर जी, फिर इधर देखा जाए तो BKS अयंगर, और बहुत नाम मिलेंगे। मेडिटेशन के लिए रमना महर्षि, जो कि तमिलनाडु के श्री अरुणाचल पहाड़ों के पास रहा करते थे, और कई दिनों तक उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया था, बस गुफा में मेडिटेशन के ब्लिस में, आनंद में खोए हुए थे। ऐसा भी माना जाता है कि वो मोर और चिड़ियों से कम्युनिकेट, बातचीत कर सकते थे।
0: सविता जी, ये तो बात हुई मेडिटेशन की शुरुआत कैसे हुई, अब थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका मेडिटेशन की तरफ झुकाव कब से शुरू हुआ?
1: 2021 के पहले से ही, कोविड के पहले से ही मैं कुछ किताबें पढ़ा करती थी, लेकिन 2021 में जब कोविड का थर्ड वेव आया और मेरी माँ ऑलमोस्ट उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और अब वो नहीं है, लेकिन उस समय जब मैं उनके साथ थी तो 2 महीने तक अपनी माँ को ऐसे देखकर मैं इतनी ज़्यादा स्टिलनेस में थी कि मुझे डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ उस समय, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं अब, लेकिन उसका कोई, मेरे ख्याल से उसका कोई नाम नहीं हो सकता। इट्स अ लॉट ऑफ पीस एंड ब्लिस एंड जॉय, बट दीज आर ओनली वर्ड्स, ये सिर्फ शब्द हैं, इनको एक्चुअल एक्सपीरियंस करना एक अलग ही कहानी है।
0: ये तो हो गई मेडिटेशन की कहानी, लेकिन आप योगा को किस तरीके से देखती हैं, एज ए मेडिटेशन या फिर कुछ और?
1: ये जो स्टेट मैं बता रही हूँ आपको, इसमें ऐसा होता है कि माइंड कुछ बोलता नहीं है, जैसे एक आवाज़ होती है माइंड में, वो हमेशा चलती रहती है। अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो उसका कमेंट्स या जजमेंट्स हमेशा आपके माइंड में चलता रहता है। मेडिटेशन एक ज़रिया है इस

0: वॉइस जो है हमारे दिमाग में उसको हमेशा शांत रखने का, सो दैट जब अगर आपको किसी काम के लिए ज़रूरत हो तो इंटेलेक्ट आपके पास रहे, इंटेलिजेंस आपके पास रहे, लेकिन ये फालतू के कमेंट्स, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब बंद हो जाती हैं। तो आप जो पूछ रहे हैं कि योगा आसन इसमें कैसे आता है, वो ऐसे कि एक ज़रिया है हम अपने बॉडी को किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप आसन इस तरह से कर रहे हैं कि आपका दिमाग एकदम शांत है और आपका सारा तवाजा, आपका सारा अटेंशन अपने ब्रेथ पे है, अपने बॉडी पे है, तो वो उस स्टेट को हासिल करना हो जाता है।
1: काफ़ी डीप बात आपने बता दी। अच्छा, तब थोड़ी हल्की फुल्की बात हम लोग करते हैं। जैसे आम लोगों में यह धारणा है कि मेडिटेशन के लिए या योग के लिए अगर किसी एक आसन का नाम किसी के भी माइंड में आता है, दैट इज़ सूर्य नमस्कार। आपके हिसाब से, या आप अपने YouTube चैनल पर भी बताती हैं, तो किस तरह के आसन्स को आप बताती हैं जो कि मेडिटेशन में काम करता है?
0: कुछ आसनों के नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बस एक चीज़ याद रखना, आप कोई भी आसन कर रहे हो, या तो वो सूर्य नमस्कार हो, या वो डाउनवर्ड डॉग हो, चाइल्ड्स पोज हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान हमारा कहाँ है। क्या हमारा ध्यान जो नेक्स्ट मील होने वाला है लंच टाइम पे, या कल जो हमारी खिच-खिच बहस हुई थी उस पे है, या जो आसन कर रहे हैं तो उसके उसमें हमारा बॉडी कैसा फील कर रहा है। अगर हम डाउनवर्ड डॉग में हैं तो क्या हमारा ध्यान हमारे पेट के आसपास है, जहाँ पे सांस जाकर, जहाँ पे माना जाता है हारा है, लाइफ ब्रेथ वहीं से ओरिजिनेट करता है। और किसी भी सिचुएशन में आप हों, चाहे वो बहुत नर्वसनेस या स्ट्रेस वाला सिचुएशन हो, अगर आपका ध्यान यहाँ हारा पे चला गया या नाड़ी जहाँ होती है, तो आप देखेंगे अपने आप एक स्टिलनेस और खामनेस रिपल करेगा आपके बॉडी से।
1: यहाँ पे आपने एक बताया हारा और नाड़ी, ये क्या होता है?
0: हारा वो एरिया है हमारे जो पेट में नेवल होता है, नाड़ी होती है उसके जस्ट नीचे, वहाँ पर जब भी ब्रेथ आप इनटेक करते हैं तो हमारा पेट राइज करता है, फूलता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो वो वापस से पिचक जाता है। तो ये सब तो बात हो गई अगेन माइंड की, पर एक्सपीरियंस करके देखिए।
1: ओके, और नाड़ी भी उसी को कहते हैं आप?
0: हाँ।
1: अभी हमारी बातचीत हो रही थी इंटरव्यू से पहले, आपने बताया कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे थोड़े हल्के फुलके मिजाज के साथ सिखाती हैं, और आप उसमें एक करेक्टर को यूज़ करती हैं अपने अलावा, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: हाँ, तो इस चैनल में ताकि, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन शायद बोरिंग हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो एक आते हैं मेरा एक डॉग है टूना, वो आता है और उसकी तरफ से काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी हलचल होती है। जैसे कि अगर मेरा पैर उसके सिर पे लग गया तो उसकी तरफ से कमेंट होगा, हटा दो ये स्टिंकी फीट मेरे सर से।
1: ओके, बट उस कैरेक्टर को यूज़ करने का क्या उद्देश्य है? आप उसको किस तरीके से यूज़ करती हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है, ये थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: वो रीज़न यही है कि टूना बहुत बार रिप्रेजेंट करता है जो एक आवाज़ जो हमारे माइंड में हमेशा चलती रहती है। सपोज़ आप जाम में फंसे हैं तो क्या ज़रूरत है माइंड को हमेशा बोलने का, ओह कितना जाम है, मैं हमेशा लेट हूँ, ओह बारिश। क्यों नहीं हम उसी समय रुक के खाली बारिश को देख सकते हैं, या जाम में जाम को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना सकते हैं? क्यों नहीं हम किसी भी चैलेंज को, चाहे वो कितना छोटा या कितना भी बड़ा हो, वो एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिल जाए कि हम सांस एंजॉय कर रहे हैं या अपना बॉडी अंदर से फील करते हुए देख रहे हैं उसमें कितना एक्सपीरियंस है, जितना एक्सपीरियंस अर्थ में है, जितना जितनी जगह है देखने के लिए, जितने दशम फॉल्स, हुनरू फॉल्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे अंदर है। और हम ये डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर उस ट्रैफिक जाम में बैठे बैठे अपने सांस

0: को ऑब्जर्व करते रहें।
1: अच्छा, आपने ये भी बताया था जैसे मेडिटेशन या योगा करने के लिए मैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: मैं ये बोल रही थी कि दरी, मैट, आश्रम कुछ ज़रूरी नहीं है मेडिटेशन के लिए। मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेडिटेशन है। आपके साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट योर बीइंग, आई कैन फील इट। वैसे ही क्यों नहीं, अगर हम ऑफिस में बैठे हैं और कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो क्या उस समय हम अपने बॉडी को फील कर सकते हैं अंदर से? वो मेडिटेशन हो जाता है। अगर हम कुकिंग कर रहे हैं, एक मेरा वीडियो है चाय इन बी, विच इज़ कि मैं चाय बना रही हूँ और मेडिटेशन भी चालू है, मतलब हर चीज़, हर एक सेंसेशन को फील करना, ब्रेथ, आवाज़ें, जो आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़ें, बर्ड्स की आवाज़ें, जो भी सुन रहे हैं उनको बिना लेबल किए अगर हम परसीव कर रहे हैं, तो वो मेडिटेशन हो जाता है और तब दरी की ज़रूरत नहीं।
1: काफ़ी अच्छी बात आपने बताई हमें। सविता जी की बातें सुनकर तो मेरे को यही समझ में आ रहा है कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट।
0: यस,
1: एग्जैक्टली,
0: यस,
1: यस, ओके। मेरे को लग रहा है मैं समझ गया आपकी बातों को। दोस्तों, योग कोई चमत्कारी उपाय नहीं है, लेकिन ये हर दिन थोड़ी थोड़ी ऊर्जा, स्थिरता और शांति देकर हमारे जीवन को गहराई से बदल सकता है। इसी लाइन के साथ सविता जी का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इतने आसान शब्दों में हमें योग और मेडिटेशन, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है लोगों को समझना और एक्सपीरियंस करना, आपने इस स्टूडियो के माध्यम से आई एम श्योर कि काफ़ी लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आइए आज से ही शुरुआत करें, शायद कल सुबह का सूर्य नमस्कार आपके ज़िंदगी का नया अध्याय बन जाए। इसी कामना के साथ प्रशांत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
0: थैंक यू प्रशांत जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश, जिसमें आज आपने सुना योग और ध्यान विषय पर सविता नारायण से प्रशांत गौरव की बातचीत। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकिता स्वाणी, समाचार, एवियो फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला यह पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से यह हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और

0: में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाए और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज

0: मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5,400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेटनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्योम में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
2: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor.

0: 1.05 rupees per litre. The export duty on petrol remains unchanged at 1.05 rupee per litre. A liquefied natural gas LNG carrier, Disha, safely transited through the Strait of Hormuz. The LNG carrier, carrying 62,370 metric tons of LNG, is one of the first commercial vessels to transit the strait since the announcement of a preliminary ceasefire deal between the United States and Iran. Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said the vessel is expected to arrive at Dahej in Gujarat on the 18th of this month. A B-52 bomber crashed shortly after takeoff at a U.S. Air Force base in Southern California's Mojave Desert last night, killing all 8 people aboard. Aerial footage showed a plume of black smoke rising from the desert near the runway on the base. It is not immediately clear what caused the crash. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal, Vishwas ke, Vikas ke, Jan Kalyan ke. Today, we focus on Narendra Modi government's zero-tolerance policy against terrorism.
1: Last year, on the intervening night of 6th and 7th of May, Operation Sindoor sent a clear message to the world that India does not seek war, but terrorism will not be tolerated. Operation Sindoor drew a new red line that if terrorism is a state policy, it will be met with a direct and forceful response. Targeting strongholds of Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen, India successfully destroyed 9 major terrorist launch pads located in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. More than 100 terrorists were killed in this operation. On 9th and 10th of May, India became the first nation to strike 11 air bases of a nuclear-armed state in a single operation. This resulted in the destruction of 20% of Pakistan Air Force's infrastructure. There was widespread global support, with numerous global leaders extending their support to India. Talking to Akashwani News, Lieutenant General KJS Dhillon, retired, who was the 15th Corps commander in Jammu and Kashmir, praised the intelligence of government agencies during Operation Sindoor.
2: The intelligence which was gathered over the 15 days period, or the gap in between Pahalgam and terror strikes on 6th-7th May 2025, intelligence was so accurate, acquired by various means, collated, synthesized and then acted upon.
1: Meanwhile, to secure its land borders spanning over 15,000 kilometers across 7 neighboring nations, India today conducts its effective foreign policy guided by the principle of nation first, while simultaneously advancing towards self-reliance in the defense sector. Talking to Akashwani News, Professor Anup Kumar Day from Silchar said open border was a huge issue in Assam and Narendra Modi government has worked steadfastly to address this issue.
3: Pradhan Mantri Narendra Modi ji.
4: Since the Prime Minister Narendra Modi took charge, he highlighted this biggest issue of Assam. And today, fencing has been completed in most of the areas. Because of that, not only infiltration from there has been stopped, but also the illegal trade that used to happen from there has been cut off.
1: NDA government remains resolute and deeply committed to a policy of zero tolerance against terrorism. With Anand Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
0: U.S. President Donald Trump has said a preliminary deal to end the war with Iran has already been signed and suggested that details of the agreement are set to be published pretty soon. Trump said this during his talks with French President Emmanuel Macron at the G7 summit last night. More from our West Asia correspondent.
5: The announcement of a U.S.-Iran peace framework has triggered cautious optimism across West Asia, with regional governments welcoming efforts to end months-long conflict. The agreement, which is due to be formally signed in Switzerland on Friday, includes plans to reopen the Strait of Hormuz and extend a ceasefire while negotiations continue. Oil markets reacted positively, with prices falling on expectations of improved energy supplies. Despite the breakthrough, major challenges remain. The full text of the agreement has not been released, and disagreements persist over sanctions relief, Iran's nuclear program, and future navigation rules in Strait of Hormuz. Regional tensions also remain high, particularly in Lebanon, where Israel has indicated that it will maintain military positions in certain areas despite the broader diplomatic initiative. The coming days will determine whether the framework can evolve into a durable peace agreement for the region. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: In the FIFA World Cup 2026, tiny Cape Verde, making its historic first appearance at the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweights Spain. Cape Verde's 40-year-old goalkeeper, Vizinha, delivered a heroic performance as his side held Spain to a 0-0 draw. Earlier, Belgium and Egypt also drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. Egypt came close to securing their first ever World Cup victory, but were denied by a quick response from Belgium's substitutes under the intense heat. Saudi Arabia and Uruguay also drew 1-1 in their opening match of Group H in Miami Stadium in the US this morning. Abdullah Al-Amri scored on a rebound in the 41st minute for Saudi Arabia, and Uruguay's Maxi Araujo responded with an equalizer in the 80th minute. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
6: Thank you, Sunil. The peace deal between U.S. and Iran is prominently noted on the front pages of dailies. U.S. and Iran reach deal to end war, reopen Hormuz, headlines the Indian Express. U.S.-Iran strike tentative peace deal as Israel refuses land pullback, reads the headline in the Statesman. Prime Minister Modi will lead the main event of the International Day of Yoga 2026 celebrations in Kolkata on June 21, writes the Asian Age. In its editorial piece titled Label Truth, the Tribune argues that FSSAI's action against misleading food labels is necessary, but only a first step. And that is back to you, Sunil.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Slovakia confers its highest honour, Order of the White Double Cross, first class, on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi to participate in G7 summit in Avignon, France today to hold bilateral meetings with Prime Ministers of Canada and UK and UAE President. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने झारखंड के लिए अलग एनसीसी निदेशालय स्थापित करने की दी मंजूरी। राज्य में एनसीसी की प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशिक्षण गतिविधियां होंगी सुदृढ़। राज्य सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मौत पर आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने और राज्य कर्मियों के लिए अग्रिम वेतन योजना शुरू करने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का करेंगे शुभारंभ। किसानों को कृषि की नई तकनीक जानने का मिलेगा अवसर। झारखंड के 8 जिलों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की हुई एंट्री। अगले 4-5 दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी मॉनसून मजबूती के साथ देगा दस्तक। और जेएससी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड टी20 टूर्नामेंट में रांची टाइटंस ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्रालय ने झारखंड के लिए अलग एनसीसी निदेशालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में एनसीसी की प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशिक्षण गतिविधियां अधिक सुदृढ़ होंगी। नए निदेशालय के गठन से थल सैनिक कैंप, नौसैनिक कैंप, वायु सैनिक कैंप और विभिन्न साहसिक गतिविधियों में झारखंड के अधिक से अधिक कैडेटों को भाग लेने और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को नशा मुक्त राज्य बनाने के संकल्प के साथ कल रांची से राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशीले और मादक पदार्थ सेवन से स्वास्थ्य खराब होता है और यह व्यक्ति के साथ परिवार, समाज और राज्य की प्रगति के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने सही गलत की पहचान के लिए जन जागरूकता पर जोर दिया। श्री सोरेन ने कहा कि युवाओं को नशा से बचाना उनकी प्राथमिकता है।
8: हर चीज का दो पहलू, अच्छा खराब, इसी बाबत ये हम लोगों ने एक मुहिम के रूप में लिया है कि लोग सही और गलत चीजों को पहचाने। मुझे जो लगता है जिसके लिए कानून बनता है आम नागरिकों के लिए, उनको उस कानून के बारे में पता ही नहीं रहता, जाने अनजाने में घटनाएं हो जाती हैं।
7: राज्य सरकार ने कल जनहित, कर्मचारियों की सुविधाओं, सड़क निर्माण, सिंचाई और खनन से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि अब वन्य जीवों के हमले में मौत होने पर सरकार आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा देगी। सरकार ने कर्मचारियों के लिए अग्रिम वेतन योजना शुरू करने का भी फैसला किया है।
9: सरकार के कर्मचारियों को क्रेडिट सुविधाएं, बीमा उत्पाद और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एजेंसी से एम्पैनलमेंट किया जाएगा। जंगली जानवरों द्वारा मनुष्य की मृत्यु होने पर जो वर्तमान दर 4 लाख है उसे बढ़ा करके 10 लाख किया गया है।
7: इसके साथ ही नई नियुक्तियां पे लेवल 2 के तहत करने के साथ साथ सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 162 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पलामू की अमानत बराज योजना के लिए 947 करोड़ रुपए से अधिक की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को होने वाले चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव में जीत के लिए महागठबंधन और एनडीए बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। महागठबंधन के पास चुनावी जीत का आंकड़ा है तो एनडीए भी जीत का दावा कर रहा है। इधर आज शाम मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक होगी। इससे पूर्व कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, सांसद डॉ सैयद नसीर हुसैन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव और अजय शर्मा ने मुलाकात की। वहीं कल भाजपा कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी शामिल हुए। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में एसीबी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कल हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी को अन्य अभियुक्तों के संबंध में पारित न्यायिक आदेशों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अब तक एकत्र साक्ष्यों को सील बंद लिफाफे में अदालत को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि ये मामला हजारीबाग जिले में 28 डिसमिल गैर मजरुआ खास जंगल झाड़ श्रेणी की सरकारी भूमि की कथित अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
10: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
11: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का शुभारंभ करेंगे। इससे पूर्व कल कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि यह मेला किसानों के लिए नई तकनीकों और बाजार की संभावनाओं को जानने का अवसर साबित होगा। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रयासरत है। इधर किसान मेला सह प्रदर्शनी में साहिबगंज

0: लेके भी प्रगतिशील किसान भाग ले रहे हैं। कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का ने कहा कि मेले में आधुनिक तकनीक और कृषि वानिकी से जुड़े नए विकल्पों को देखेंगे।
1: समेकित कृषि प्रणाली पर आधारित कृषि एवं संबंध विभाग के सभी प्रकार के जो भी योजनाएं हैं या उससे संबंधित जो भी मशीनीकरण चीजें हैं वो सारे चीज वहां उनको दिखाया जाएगा ताकि किसान वहां देख के अपने खेतों में उसको अप्लाई कर सके। साथ ही साथ वहां कृषि के उपज भी प्रदर्शित किए जाएंगे और जितने तरह के उपज हैं उन पर कुछ प्रोत्साहन राशि भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस मेला में हम लोग साहिबगंज जिला से कुल 75 किसानों को भेज रहे हैं।
0: झारखंड के 8 जिलों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4-5 दिनों में राज्य के अन्य जिलों में भी मॉनसून प्रवेश कर जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आज और कल मॉनसून की स्थिति कमजोर रह सकती है, इसके बाद राज्य में मॉनसून की स्थिति मजबूत होगी। झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 में कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में रांची टाइटंस ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए संथाल स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 210 रन बनाए। रांची टाइटंस ने 19 ओवर और 3 गेंदों में 211 रन बनाकर जीत हासिल की। रांची के खेलगांव स्थित रोलर स्केटिंग स्टेडियम में 17 से 21 जून तक 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे, जबकि झारखंड के 13 जिलों के 127 खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। झारखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के सचिव सुमित शर्मा ने कहा कि यह आयोजन राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करेगा।
2: रोड और ट्रैक दोनों इवेंट हमारे हैं और इसमें 1000 से अबव बच्चे पार्ट करेंगे। झारखंड के इसमें 127 बच्चे भाग ले रहे हैं जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। अंडर 8 से लेके अंडर 19 तक के बच्चे इसमें खेल रहे हैं। अनीश राज और क्रिश शर्मा दोनों झारखंड के खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए और इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए हमारे गेस्ट बन के यहाँ पे आ रहे हैं।
0: अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्ति के समझौते की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ईरान को 28 लाख करोड़ देकर जंग से छूटेंगे ट्रंप। दैनिक जागरण ने लिखा है, जंगली जानवरों के हमले में मौत पर अब 10 लाख मुआवजा। हिंदुस्तान ने झारखंड की 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर लिखा है, सियासी घेराबंदी तेज, दोनों पक्षों ने झोंकी ताकत। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता में आयोजित होने की खबर को अपने पहले पेज पर जगह दी है। और अंत में मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने झारखंड के लिए अलग एनसीसी निदेशालय स्थापित करने की दी मंजूरी। राज्य में एनसीसी के प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशिक्षण गतिविधियां होंगी सुदृढ़। राज्य सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मौत पर आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने और राज्य कर्मियों के लिए अग्रिम वेतन योजना शुरू करने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का करेंगे शुभारंभ। किसानों को कृषि की नई तकनीक जानने का मिलेगा अवसर। झारखंड के 8 जिलों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की हुई एंट्री। अगले 4-5 दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी मॉनसून मजबूती के साथ देगा दस्तक। और जेएससी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड T20 टूर्नामेंट में रांची टाइटंस ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से किया पराजित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे, सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस।

0: और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट। झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026, मोराबादी ग्राउंड, रांची, 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। मैं हूँ विनीता आपके साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत उरांव लोकगीत। कलाकार हैं सोमा उरांव और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे उराव लोकगीत, कलाकार थी सोमा उराव और उनके साथी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।

0: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। तो चलिए ना, इन खूबसूरत बातों के साथ रसरंजन प्रोग्राम में विनीता का आप सभी को नमस्कार है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के बाद लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत, मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए ये तो तुम्हारा मन ही जाने, मेरे लिए तो इस शोर भरी दुनिया में सुकून हो तुम।

और अब आनंद आश्रम फिल्म का गीत, नहीं होते हो फिर भी होते हो तुम, ना जाने क्यों हर वक्त महसूस होते हो तुम।

और अब मनहर उदास और आशा भोसले की आवाज में होटल फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। कह नहीं पाएंगे असल में क्या हो तुम, शायद मेरी बेचैनियों की दवा हो तुम।

कुछ गहरा सा लिखना था, इश्क से ज्यादा क्या लिखूं? कुछ ठहरा सा लिखना था, आंसू से ज्यादा क्या लिखूं? सुनो ना, अब जिंदगी लिखनी है, तुमसे ज्यादा और क्या ही लिखूं?

दोस्तों, प्यार को केवल वही परिभाषित कर सकते हैं जो मिलने से लेकर निभाने तक उसे परखते नहीं बल्कि समझते हैं। तो बस आप भी अपने खास रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिए, यकीन मानिए रिश्ता गहरा होता जाएगा। तो बस इन बातों के साथ फिल्मी गीतों का ये सफर आज बस यहीं तक। तो इस प्रोग्राम से विनीता को दे इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे सितार पर राग रागेश्वरी, जिसमें आलाप और जोड़ के बाद प्रस्तुत है दो गते, विलंबित गत तीन ताल में और द्रुत गत एक ताल में निबद्ध है। गायक कलाकार चीर सत्य ठाकुर और संगत कर रहे तबले पर संदीप चैटर्जी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आपने सुना सितार पर राग रागेश्वरी, जिसमें आलाप और जोड़ के बाद प्रस्तुत थी दो गते, विलंबित गत तीन ताल में, द्रुत गत एक ताल में निबंध थी। गायक कलाकार थे चीर सत्य ठाकुर।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। प्रस्तुति स्वर विश्वजीत पात्र की है और संयोजन प्रभु शरण की।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत पात्र और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष खेल कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता दें कि आज क्रीड़ा जगत में खेल जगत की कई बड़ी और चर्चित खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात होगी फीफा विश्व कप 2026 की, जहां दुनिया की दिग्गज टीमें और स्टार खिलाड़ी विश्व चैंपियन बनने की दौड़ में जुटी है। इसके बाद नजर डालेंगे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप पर, जहां भारतीय महिला टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। साथ ही चर्चा करेंगे झारखंड टी20 लीग 2026 की, जिसने राज्य के युवा क्रिकेटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। पर्सनलिटी ऑफ द वीक में बात करेंगे न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज केन विलियमसन की, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। साथ ही जानेंगे भारत के दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा के योगदान के बारे में, जिन्होंने भारतीय शूटिंग को नई पहचान दिलाई। खेल खबरों में रांची की प्रतिभाशाली क्रिकेटर पलक कुमारी की उपलब्धि पर भी बात करेंगे, जिनका चयन भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2026 के विजेताओं और टूर्नामेंट की प्रमुख झलकियों पर भी नजर डालेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल आयोजन फीफा विश्व कप 2026 की, जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। फुटबॉल का महाकुंभ कहे जाने वाला फीफा विश्व कप पहली बार वर्ष 1930 में आयोजित हुआ था। पहले विश्व कप की मेजबानी उरुग्वे ने की थी और वही पहला चैंपियन भी बना था। तब से लेके आज तक यह प्रतियोगिता खेल जगत का सबसे बड़ा मंच बन चुकी है। इस बार का विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार टूर्नामेंट की मेजबानी तीन देशों, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। प्रतियोगिता 11 जून से शुरू होकर 19 जुलाई 2026 तक चलेगी। इस विश्व कप की सबसे बड़ी खासियत है कि पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही है। पहले 32 टीमें खेलती थी, अब 12 समूह बनाए गए हैं। प्रत्येक में चार चार टीमें हैं। हर टीम तीन ग्रुप मैच खेलेगी। समूह के शीर्ष दो टीमों और सर्वश्रेष्ठ 8 तीसरे स्थान वाली टीमें नॉकआउट दौर में पहुंचेंगी। कुल 104 मैच खेले जाएंगे, जो विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक है। अब नजर डालते हैं शुरुआती मुकाबले पर। उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। दक्षिण कोरिया ने चेकिया को 2-1 से मात दी। अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हराया, जबकि ब्राजील और मोरक्को का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। स्कॉटलैंड ने हैती को 1-0 से पराजित किया। जर्मनी ने कुरासाओ को 7-1 से हराकर अपने इरादे साफ। इस विश्व कप में दुनिया की नजरें कई दिग्गज खिलाड़ियों पर टिकी है।

जर्मनी और इटली ने चार चार बार जबकि अर्जेंटीना ने तीन बार विश्व कप जीता है। विश्व कप विजेता की सूची में उरुग्वे, इटली, जर्मनी, ब्राजील, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों का नाम दर्ज है। हालिया विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। अब बात करते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण इसकी सरलता है। एक गेंद और खुला मैदान हो तो खेल शुरू हो जाता है। दुनिया के लगभग हर देश में फुटबॉल खेला और देखा जाता है। फीफा के सदस्य देशों की संख्या 200 से अधिक है। विश्व कप के दौरान अरबों दर्शक मैच देखते हैं। यही वजह है कि इसे द ब्यूटीफुल गेम भी कहा जाता है। भारत की बात करें तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम वर्तमान में विश्व फुटबॉल के शीर्ष टीमों में शामिल नहीं है। भारत अभी विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है, लेकिन हाल ही के वर्षों में भारतीय फुटबॉल में सुधार हुआ है और युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम इतिहास में 1950 का विश्व कप भी याद किया जाता है, जब भारत को खेलने का अवसर मिला था लेकिन टीम भाग नहीं ले सकी। तब से भारतीय फुटबॉल प्रेमी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तिरंगा भी विश्व कप के मैदान पर लहराएगा। और अब बात फाइनल मुकाबले की। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस महा मुकाबले पर होगी, जहां दो सर्वश्रेष्ठ टीमें विश्व चैंपियन बनने के लिए भिड़ेंगी। साथियों, फीफा विश्व कप 2026 सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि देशों, संस्कृतियों और करोड़ों सपनों का उत्सव है। और अब बात करेंगे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की, जहां भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में करते हुए पाकिस्तान को हराकर पूरे देश का उत्साह बढ़ा दिया है। महिला टी20 विश्व कप की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। पिछले डेढ़ दशक में इस टूर्नामेंट में महिला क्रिकेट को नई पहचान दी है। भारत अब तक यह खिताब नहीं जीत पाया है, लेकिन 2020 में फाइनल और कई बार सेमीफाइनल तक पहुंचकर अपनी क्षमता साबित कर चुका है। इस बार महिला टी20 विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है। प्रतियोगिता 12 जून 2026 से शुरू हुई है और इसका फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस बार कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण है। अब बात भारत के पहले मुकाबले की। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मैच में भारतीय टीम ने 64 रन से शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 पर ही सिमट गई। भारत की जीत की सबसे बड़ी नायिका रही दीप्ति शर्मा, जिन्होंने 5 विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह से झकझोर दिया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत की है। भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलन है। बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, शिफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष जैसी खिलाड़ी हैं, जो किसी भी मैच का रुख बदल सकती हैं। वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और युवा खिलाड़ी का प्रदर्शन टीम को और मजबूत बनाता है। अगर भारत की उम्मीदों की बात करें तो क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह टीम इस बार खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। टीम के पास अनुभव भी है और युवा जोश भी। कप्तान हरमनप्रीत कौर का नेतृत्व तथा स्मृति मंधाना की शानदार फॉर्म भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदों को और भी मजबूत कर रही है। महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता भी इस विश्व कप में साफ दिखाई दे रही है। भारत पाकिस्तान मुकाबले में बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी ने साबित कर दिया है कि महिला क्रिकेट अब विश्व खेल जगत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो साथियों, भारतीय महिला टीम ने विश्व कप में जीत के साथ दमदार आगाज किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वुमेन इन ब्लू इस बार इतिहास रचते हुए पहली बार टी20 विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर पाती है या

नहीं। भारतीय टीम को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करेंगे झारखंड क्रिकेट के लिए एक नई और ऐतिहासिक शुरुआत की, झारखंड T20 लीग 2026 की। दोस्तों, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी JSCA द्वारा आयोजित इस फ्रेंचाइजी लीग की शुरुआत 10 जून 2026 से रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हुई है। टूर्नामेंट का फाइनल 23 जून को खेला जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में कुल 27 मैच खेले जा रहे हैं, जिनमें लीग मुकाबले के अलावा 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल शामिल है। इस लीग का उद्घाटन मुकाबला छोटनागपुर रॉयल्स और रांची टाइटंस के बीच खेला गया। वहीं उद्घाटन समारोह की सबसे बड़ी आकर्षण रहे भारत के पूर्व कप्तान और झारखंड के गौरव महेंद्र सिंह धोनी। धोनी की मौजूदगी ने खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। छोटनागपुर रॉयल्स, रांची टाइटंस, कोयलांचल सुपर किंग्स, जमशेदपुर स्टीलर्स, धनबाद डायमंड्स और संथाल स्ट्राइकर्स। एक खास बात यह भी है कि JSCA स्टेडियम में मैच देखने के लिए दर्शकों की एंट्री बिल्कुल निशुल्क यानी फ्री रख दी गई है, जिसमें क्रिकेट प्रेमी बड़ी संख्या में मैदान पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। दोस्तों, ये लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि झारखंड के युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी हुनर को दिखाने का बड़ा मंच है। यहाँ अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर घरेलू क्रिकेट, IPL फ्रेंचाइजियों और चयनकर्ताओं की नजर पड़ सकती है। यानी यह प्रतियोगिता कई युवा क्रिकेटर्स के सपनों को नई उड़ान देने का काम कर सकती है। अगर झारखंड क्रिकेट की बात करें तो इस राज्य ने भारतीय क्रिकेट को कई बड़े सितारे दिए हैं। सबसे बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी का है। इसके अलावा ईशान किशन, वरुण एरोन, शहबाज नदीम, सौरभ तिवारी और अनुकूल रॉय जैसे खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रीय और IPL स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज झारखंड T20 लीग उसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। कौन जानता है कि इस लीग में खेल रहा कोई युवा खिलाड़ी आने वाले समय में भारत की जर्सी पहनकर देश का नाम रोशन करे। कुल मिलाकर झारखंड T20 लीग 2026 राज्य के क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो युवा प्रतिभाओं को अवसर देने के साथ साथ झारखंड क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रही है। क्रीड़ा जगत कार्यक्रम में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में अब बात करते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज में गिने जाने वाले केन विलियमसन के बारे में। विलियमसन ने 16 साल के शानदार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। केन विलियमसन ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और देखते ही देखते न्यूजीलैंड क्रिकेट की पहचान बन गए। वे न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 19,000 से अधिक रन दर्ज हैं। कप्तान के रूप में उन्होंने न्यूजीलैंड को 2019 विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया और 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी दिलाया। अपनी शांत कप्तानी, खेल भावना और शानदार बल्लेबाजी के कारण वे दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक रहे। विराट कोहली, जो रूट और स्टीव स्मिथ के साथ उन्हें आधुनिक क्रिकेट के Fab 4 में गिना जाता है। उनके संन्यास के साथ क्रिकेट के एक सुनहरे दौर का महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया है। भारतीय खेल जगत के लिए हाल ही में एक बेहद दुखद समाचार सामने आया है। देश के महान निशानेबाज, एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता और दिग्गज कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से पूरा खेल जगत शोक में डूब गया है। जसपाल राणा सिर्फ एक सफल खिलाड़ी ही नहीं थे बल्कि भारतीय शूटिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अपने शानदार करियर में एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए अनेक पदक जीते। वे कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में भारत के सबसे सफल खिलाड़ियों में एक गिने जाते हैं, जहां उन्होंने 15 पदक अपने नाम किए थे। बहुत कम उम्र में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बाद में पद्मश्री और फिर कोच के रूप में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला।
खिलाड़ी के रूप में उनकी उपलब्धियां जितनी

शानदार थी, कोच के रूप में उनका योगदान उससे भी बड़ा माना जाता है। पेरिस ओलंपिक में भारत को गौरवान्वित करने वाले स्टार शूटर मनु भाकर की सफलता के पीछे भी जसपाल राणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कई युवा निशानेबाजों को तैयार किया और भारतीय शूटिंग की मजबूत नींव खड़ी की। रिपोर्ट्स के अनुसार म्यूनिक विश्व कप से लौटते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर के खिलाड़ियों, कोचों और खेल प्रेमियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। आज भारतीय खेल जगत ने केवल एक महान शूटर नहीं बल्कि एक ऐसे गुरु को खो दिया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए चैंपियन तैयार करने में लगा दी। उनकी उपलब्धियां, उनका समर्पण और खेल के प्रति उनका जुनून आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भारतीय खेल जगत के इस महान सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर नमन करते हैं। क्रीड़ा जगत में अब खास खास खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड और खास करके रांची के लिए बेहद गर्व की खबर है। युवा क्रिकेटर कुमारी पलक का चयन भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाले अंडर 19 T20 वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। खास बात यह है कि पलक का चयन दोनों प्रारूप की टीमों में हुआ है जो उनकी प्रतिभा और निरंतर प्रदर्शन को दर्शाता है। देवघर जिला से ताल्लुक रखने वाली और रांची जिला क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली पलक ने इस उपलब्धि के साथ इतिहास रच दिया है। वह रांची जिला क्रिकेट संघ RDCA से भारतीय टीम में चयनित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे झारखंड क्रिकेट के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। पलक पिछले कुछ वर्षों से झारखंड की आयु वर्ग और महिला क्रिकेट प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही। उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का ही परिणाम है कि आज उन्हें भारतीय टीम की नीली जर्सी पहनने का अवसर मिला है। टेनिस जगत का दूसरा ग्रैंड स्लैम और क्ले कोर्ट का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026, जिसे रोला गैरो भी कहा जाता है, हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुआ। दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ियों की मौजूदगी में खेले गए इस टूर्नामेंट ने कई नए सितारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। पुरुष एकल वर्ग में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इटली के फ्लाविओ कोवोली को 5 सेटों के रोमांचक फाइनल में हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। लंबे समय से ग्रैंड स्लैम जीतने का इंतजार कर रहे ज़ेवरेव के लिए यह जीत बेहद खास रही। वहीं महिला एकल वर्ग में रूस की 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी मिर्रा एड्रीवा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने फाइनल में पोलैंड की माजा ख्वालिस्का को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही एड्रीवा 1992 के बाद रोला गैरो जीतने वाली सबसे युवा महिला चैंपियन बन गई। फ्रेंच ओपन की पहचान उसकी लाल मिट्टी यानी क्ले कोर्ट से होती है, जहां खिलाड़ियों की फिटनेस, धैर्य और मानसिक मजबूती की कड़ी परीक्षा होती है। इस बार का टूर्नामेंट कई उलटफेरों और नए चेहरों के शानदार प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा। हाल ही में चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने पहली पारी में 564 रन बनाए जबकि अफगानिस्तान की टीम दोनों पारियों में क्रमशः 152 और 112 रन ही बना सकी। पदार्पण कर रहे युवा स्पिनर मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच में यादगार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो दोस्तों, इसी के साथ क्रीड़ा जगत में आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रभु शरण। अब मुझे यानी विश्वजीत पात्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में बता दें। अब से थोड़ी ही देर में यानी 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार रांची। अपनी पसंद के गीत आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद में 11:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी हम लेकर आएंगे दोपहर 12:00। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी अच्छे भविष्य के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी। जानकारी भी होगी स्वस्थ भोजन स्वस्थ शरीर। प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 12:30 पर। 1:00 हिंदी समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी समाचार आप सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:10 पर। अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे 1:20 पर। कलाकार हैं शोभा गुट्टू। आज इनसे आप सुनेंगे मिश्र पहाड़ी में ठुमरी।

1:45 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे हरिहरन की गाई चंद गजलें। मिड डे न्यूज 2 बजे और दोपहर समाचार 2:15 पर प्रसारित होंगे। फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार 2:55 पर आप सुनते हैं। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। रांची मेलोडीज 3:30 पर। 4 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार और 4:02 पर आप सुनेंगे क्रीड़ा जगत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: सांझ सरगम 4:35 पर और प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनते हैं 5 बजे। पांच बजकर 2 मिनट पर कार्यक्रम होगा युववाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोग। इसमें आज चर्चा होगी मन का सुकून, जीवन का संतुलन, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए योग, बदलते दौर का कपड़ा उद्योग। कंपेयर हैं जया श्रीवास्तव और दीपा घोष, प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की। प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे 6 बजे।
1: यहाँ मिलेगा लाइव टिक।

6:02 पर कार्यक्रम होगा किसानवाणी। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मौसम पूर्वानुमान से लाभ। आज की बात में झारखंड में मशरूम की खेती की संभावनाएं, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजीत झा। प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की। हमारी दुनिया कार्यक्रम का वक्त है 6:32। चर्चा होगी अनेकता में एकता हमारी विशेषता। सूचना भी होगी सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते कदम।

और पसंद के लोकगीत भी आप सुनेंगे। कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की। 7 बजे प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं। सात बजकर 15 मिनट पर कार्यक्रम होगा आदिवासी अखड़ा। आज का ये कार्यक्रम होगा खड़िया भाषा में। फिल्म संगीत 8 बजे और 8:10 पर विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे गूंजे झारखंड। ये कार्यक्रम होगा शिक्षा पर आधारित लोकगीत पर। प्रस्तुति है प्रदीप कुमार की। संकलन एवं वाचन संजय नीलिमा तोपनो का है। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं सबिता राय। इनसे आज आप सुनेंगे राग नंद में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है। ये थे हमारे आज कुछ खास प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सबका कार्यक्रम जोहार रांची में। मैं हूँ रचना और मेरे साथ है
2: विनीता।
1: जी हाँ, एक बार फिर से हम दोनों आपके साथ हैं। तो विनीता कैसी हैं आप?
2: एकदम ठीक। तो आपको भी नमस्कार और हमारे श्रोताओं को भी नमस्कार, जोहार, है ना
1: जी?
2: और
1: बिल्कुल।
2: कैसी हैं आप?
1: हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और हम ये भी कामना करते हैं कि हमारे श्रोता भी स्वस्थ हो।
2: बिल्कुल, और वो स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तभी तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से सुन सकेंगे ना।
1: बिल्कुल सही बात है,
2: हम उन्हीं के लिए तो लेकर आते हैं।
1: हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम है, उन्हीं के लिए लेकर आते हैं। ढेर सारी बातें भी करते हैं, लेकिन बातें करेंगे हम बाद में, पहले सुनते हैं एक गीत।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमने सुना, और ये सच में इतनी सी खुशी, मतलब खुशी अगर जीवन में हो ना तो जिंदगी बहुत ही हंसी हो जाती
1: और
0: है।
1: आसान भी हो जाती है ना, छोटी छोटी
0: होनी
1: बातों में ही खुशियां हमें ढूंढनी चाहिए,
0: चाहिए
1: है ना।
0: बिल्कुल। हम सोचते हैं कि बड़ी खुशी आएगी, उसका इंतजार करते थे, लेकिन उन्हीं में हम छोटी छोटी जो खुशियां होती है उसको हम नजरअंदाज
1: बिल्कुल,
0: करते
1: और खोते
0: हैं।
1: चले जाते हैं जिंदगी की सच्चाइयों को, है ना।
0: तो चलो कार्यक्रम में बढ़ते हैं विचार की तरफ। तो जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कठिनाइयाँ, बाधाएं, असफलताएं या अप्रिय घटनाएं ना आई हों। किंतु मनुष्य की महानता इस बात में नहीं है कि उसके जीवन में कितनी समस्याएं आई, बल्कि इस बात में है कि उसने उन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार किया।
1: बिल्कुल, तो जो व्यक्ति बीती हुई घटनाओं के बोझ को अपने मन में ढोता रहता है, वो वर्तमान की संभावनाओं और भविष्य के अवसरों को खो देता है। अतीत से सीख लेना बुद्धिमानी तो है, लेकिन उसमें उलझे रहना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी बाधा है।

0: सही कह रही हो, और बीती हुई घटनाएं बदली नहीं जा सकती, इसलिए उनके बारे में हमेशा चिंतन, सोचते रहना या केवल दुख, निराशा और मानसिक अशांति को ही जन्म देता है।
1: बिल्कुल, और इसलिए तो विवेकपूर्ण जीवन वही है जो बीती बातों से शिक्षा लेकर उन्हें वहीं छोड़ दे और नई आशा, नई संकल्प और सकारात्मक चिंतन के साथ आगे बढ़ते जाए।

0: विनीता, तो अब बातें कर लेते हैं हम मौसम की।
1: हाँ सच में वैसे मौसम पहले से थोड़ा तो ठीक हुआ है, तो आगे का हाल हम बताते हैं श्रोताओं को।
0: वैसे ऐसे बताया गया है कि झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून 2 दिन तक कमजोर स्थिति में रहेगा, और अब इसके आकलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि कैसा मौसम आगे रहेगा। वैसे तो मौसम बताया जाता है कि आज बारिश हो रही है और कभी नहीं भी होती है, और जब हम आशा नहीं करते हैं कि आज बारिश नहीं होगी तो उस समय बारिश हो जाती
1: सचमुच,
0: है,
1: यानी कि मौसम के बारे में कुछ भी सही से कह
0: कहना।
1: पाना थोड़ा सा तो मुश्किल है। और मानसून विभाग ने ये बताया कि धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा के पूरे इलाके और गिरिडीह के आसपास, रांची के कुछ हिस्सों में, रामगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है, यानी कि बस 2-4 दिनों की देरी है।
0: हाँ, वैसे मानसून दस्तक दे चुका है। अभी जब हुई थी बारिश पिछले 2 दिनों में तो बहुत जोरदार बारिश हुई थी, और बारिश जब होती है इतनी तेज होती है तो काफी मुश्किलें भी आ जाती हैं। कहीं पे पानी जमा हो जाता है और उसके कारण कहीं सड़कें भी धस जाती हैं, तेज हवा चलती है तो पेड़ पौधे गिर जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है
1: बहुत
0: उस
1: सारी
0: समय।
1: चीजें हो रही हैं और मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि वज्रपात होने का भी अनुमान है ज्यादातर, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें। अगर तेज बारिश के आसार लग रहे हैं या हो रही है तो आप, अगर काम ना हो तो बाहर ना
0: ना
1: निकलें,
0: निकले।
1: और अगर बाहर है भी तो किसी ऐसी जगह पे आप रुकें जहां पे आप इससे बच सकें।
0: किसी सुरक्षित जगह को आप चुने इससे बचने का। फिलहाल तो मौसम ऐसा ही चलता रहेगा, कभी बारिश कभी धूप, तो इस मौसम का आप आनंद लेते रहें और साथ ही साथ हमारे साथ इस गीत का भी आनंद लें।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब इतिहास की बातें करते हैं। तो अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज का दिन यानी 16 जून का दिन क्यों है खास था? है तो 1858 में आज ही के दिन प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोरार की लड़ाई लड़ी गई थी और 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना भी हुई थी
1: और 1911 में IBM कंपनी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई। पहले इसका नाम कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था।
0: और अगर 1963 की बात करें तो आज ही के दिन यानी 16 जून के दिन ही रूस की 26 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री लेफ्टिनेंट वैलेंटिना तेरेश्कोवा ने वोस्तोक 6 के जरिए अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। वे अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों की ओर रवाना हुई विश्व की पहली महिला थी।
1: और आज ही के दिन 1983 में छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी और 2007 में ही एड्स पर जागरूकता फैलाने के लिए शिल्पा को सिल्वर स्टार अवार्ड से नवाजा गया था।
0: और 2008 में आज ही के दिन मशहूर शायर वसीम बरेलवी को प्रथम फिराक गोरखपुरी पुरस्कार प्रदान किया गया और विश्व में इस्पात बनाने की सबसे बड़ी कंपनी आर्सेलर मित्तल ने अमेरिकी कंपनी बंबू स्टील का अधिग्रहण किया।
1: और आज ही के दिन 2012 में चीन ने अंतरिक्ष यान सैंगशो 9 लॉन्च किया और 2012 में ही अमेरिकी वायुसेना का रोबोटिक बोइंग X-37B अंतरिक्ष यान अपना मिशन पूरा कर पृथ्वी पर वापस लौटा था।
0: और 2012 की बात करें तो 2012 में बहुराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनी कोका कोला ने म्यांमार में 60 वर्षों के बाद कारोबार शुरू किया।

0: तो रचना, अब आज की बातें हो रही हैं तो उनकी भी बातें करते हैं जिनका है आज जन्मदिन। तो रोहित श्रीवास्तव, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध चिकित्सा वैज्ञानिक थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन 1976 में हुआ था।
1: और 16 जून 1931 को डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा का जन्म हुआ था। वे एक आईपीएस अधिकारी थे।
0: 1918 में स्वतंत्रता सेनानी और दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1900 में कन्नड़ साहित्यकार ए एन मूर्ति राव का भी जन्म हुआ था।
1: प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेश कांत का जन्म भी आज ही के दिन यानी 16 जून 1956 को हुआ था।
0: और 1950 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का भी जन्म हुआ था,
1: जिनको हम डिस्को डांसर के नाम से भी जानते
0: जानते
1: हैं।
0: हैं।
1: और 1920 में हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का जन्म भी हुआ था।
0: वैसे तो इनके गानों की लिस्ट काफी लंबी है, पर चलिए सुनते हैं एक।
1: उन्हीं का गाया हुआ खूबसूरत सा
0: बिल्कुल
1: गीत।

0: बातें हो रही हैं आज के दिन की, तो अब बातें उनकी जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। तो 1925 में महान स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का निधन हुआ था।
1: और 1944 में 16 जून को प्रफुल्ल चंद्र रॉय का भी निधन हुआ था। वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्हें रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है।
0: और 1999 में राजस्थान के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री सीएस वेंकटाचार का निधन हुआ था। और 2015 में भारतीय वास्तुकार और शहरी नियोजक चार्ल्स कोरिया की मृत्यु भी हुई थी।
1: और आज ही के दिन 2021 में भारतीय सिने अभिनेता चंद्रशेखर वैद्य इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें मुख्यतः चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इनकी कई फिल्में हैं, लेकिन उन्हें मुख्य पहचान रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक रामायण के उनके किरदार आर्य सुमंत के कारण मिली थी।
0: और वैसे भी उस समय रामायण जो था बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल हुआ करता था, और उसके एक एक पात्र को हम बहुत अच्छी तरह
1: अच्छी
0: से पहचानते थे। और चंद्रशेखर का अभिनय करियर सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए। उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया, बरसात की रात, कटी पतंग, द बर्निंग ट्रेन, नमक हलाल, डिस्को डांसर, शराबी जैसी फिल्मों में काम किया। तो सुनते हैं शराबी ही फिल्म का एक गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: सेना।
1: एक बार फिर से स्वागत है हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम जोहार रांची में। तो विनीता अब आगे बात हम करते हैं, क्या बातें करनी है,
2: घूमने फिरने की थोड़ी सी कर लेते हैं।
1: हाँ, ये भी जरूरी है,
2: बहुत जरूरी है,
1: छुट्टियां भी हैं, तो इस समय हमको, हम हमेशा बताते हैं इस कार्यक्रम में घूमने की बात,
2: बिल्कुल, और जरूरी भी है ना, कि क्या होता है ना कि ये हर दिन के बिजी लाइफ से थोड़ा सा पल अगर निकाल ले तो बच्चे भी खुश, फैमिली भी खुश और खुद में तो अच्छा लगेगा ही।
1: और एक बार फिर से हमारा जो मन है ऊर्जा से भर जाता है, नया जोश आ जाता है,
2: यानी कि रिचार्ज हो जाते हैं।
1: तो हम जो काम को करने में पहले हमको आलस आ रहा था या सोचते थे कि नहीं करेंगे, तो उसको फिर हम पूरे जोश के साथ दोबारा से करने लगते हैं।
2: तो आज किस जगह की सैर कराने वाली है आप?
1: तो आज हम बात कर रहे हैं सरथल की, जो कि समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और घास के विशाल मैदान, घने देवदार के जंगल और कुदरती नजारों के बीच पल पल बदलता मौसम।
2: वाह, आपने इतने अच्छे से बताया है कि अब तो सचमुच जाने का मन हो रहा है। और साथ ही आपको बताएं कि ये नेचर प्रेमियों के लिए ये स्थान किसी जन्नत से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सरथल के खूबसूरत पहाड़ और वादियाँ अभी भी वैसा फेमस नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप हमें जरूर याद करेंगे कि हमने बताया,
1: ज्योति खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
2: तो यहाँ क्या क्या जगह है घूमने की, ये भी हम उन्हें बता देते हैं। तो सुंदर वादियाँ, बहते झरने, पहाड़, ये सब तो है ही, साथ ही है यहाँ सेवन फॉल, है ना। गर्मी की छुट्टियां होने की वजह से यहाँ पे
1: बहुत लोग
2: आते हैं और काफी भीड़ रहती है, तो आप ये सेवन फॉल देखने का आनंद भी आप ले सकते हैं। ये एक ऐसा वाटरफॉल है जिसमें 7 झरने हैं। इसे देखने के लिए पहाड़ी पगडंडियों पर करीब 7 किलोमीटर सैर करनी होती है, और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप ट्रेकिंग करना चाहते हैं तो ये अच्छा अवसर है आपके लिए।
1: बिल्कुल, और करीब 23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले सरथल का अर्थ है धरा पर स्वर्ग। यहाँ मई से सितंबर तक का मौसम जो है वो बेहतर रहता है। चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे पंछी, जंगली जानवरों की आवक, और मात्र कुछ किलोमीटर पर बर्फ से लदे पहाड़ और प्रदूषण मुक्त स्वच्छ हवा। ये तो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हवा ही तो हमें स्वच्छ नहीं मिल पा रही है।
2: तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस जगह पे जाएं, और जैसा कि रचना ने बताया कि मई से लेकर सितंबर तक, यानी कि ये समय सही है आपके जाने के लिए।
1: और वैसे भी यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, तो अगर आप उस जगह पे जाएंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, अच्छे से आप सब जगह घूम भी पाएंगे।
2: बिल्कुल, और वहाँ ठहरने की भी सुविधा है, तो ऐसा मतलब बहुत ज्यादा होटल तो नहीं है, लेकिन जो भी है सस्ते और महंगे दोनों तरह के, तो आपको जो भी सूट करे आप वहाँ पे बुक करा सकते हैं।
1: और वहाँ पर पहुँचे कैसे? तो कठुआ से सरथल करीब 185 किलोमीटर है, आप अपने वाहन से भी वहाँ जा सकते हैं, या फिर कठुआ से लखनपुर बसोहली होते हुए बनी पहुँचा जा सकता है। वहाँ से सरथल 25 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में जो भी सीन आएंगे, जो भी समुद्र आएंगे, जो भी हरियाली आएगी, आप हंसी वाली आएगी, उसको देखते हुए आप जा सकते हैं और अपने जो है सफर का आनंद ले सकते हैं।
2: तो एक बार जरूर जाएं, छुट्टियां भी बाकी है तो आप जा सकते हैं और इस खूबसूरत से जगह का आनंद ले सकते हैं।
1: वहाँ की पहाड़ भरी जो वादियाँ हैं और हसीन वादियों का आप आनंद ले सकते हैं।

0: इतनी खूबसूरत सा गीत था और इतना अच्छा हमने बात किया था कि हम लोग इस गाने के साथ साथ लगता था कि वहीं पहुंच गए सचमुच। चलो तो अब आगे
1: बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हमने कर ली आज के खास दिन की, घूमने फिरने की, सो विचार की, सब कर ली, लेकिन एक जरूरी बात हम और करने वाले हैं। एक दिवस आने वाला है, योग दिवस है ना, जो हम 21 जून को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस वर्ष का थीम है स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग। वैसे वृद्धावस्था क्यों कहें हम, योग तो हर उम्र के लिए जरूरी है
0: ना। जैसे कई बोलते हैं ना हम लोग कि नहीं 50 के बाद जो है योग नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, 50 के बाद भी आप योग कर सकते हैं। वैसे तरह से आप योग नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ हल्के फुल्के योग है वो जरूर से आपको करने चाहिए।
1: कहने का मतलब कि अगर कम उम्र से ही अगर हम आधे घंटे योग करने की आदत डाल ले तो कई बीमारियों से हम बच सकते हैं।
0: ये बात भी सही है। और देखो क्या होता है कि सब तो कर लेते हैं घर में, हम महिलाएं जो होती हैं सबका ध्यान भी रखती, सबको बोलती भी है कर ले, लेकिन जो महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। और ये भी कहना चाहेंगे कि जो अगर घर की महिला अगर स्वस्थ रहती है ना तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है।
1: बिल्कुल। और ज्यादा कुछ नहीं, जो जैसा कि हम सब जानते हैं सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, ये सब अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। कई बीमारियां मतलब कि हृदय, पेट, घुटना, मसल सबको ठीक रख सकते हैं सिर्फ एक योग करके, सूर्य नमस्कार। तो अगर आप 5 बार या 10 बार, बहुत समय ना हो तो 5 या 10, उससे उतना भी करेंगे तो आपको इन सब बीमारियों से राहत मिल सकती है।
0: देखो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमको करनी चाहिए। और वैसे भी महिलाओं में, यानी कि हम महिलाओं में ज्यादातर क्या होता है आजकल, थायराइड की समस्या
1: बिल्कुल
0: है। तो इसलिए थायराइड की समस्या है तो आप योग कर सकते हैं। इसमें भ्रामरी जो है वो भी अच्छा एक योग है आपके लिए, आपकी थायराइड ग्रंथि को वो ठीक रखता है। तो अनुलोम विलोम, ये जो छोटे मोटे योग हैं ये आपको जरूर करने चाहिए, चाहे कोई भी हो, महिला हो, बच्चे हो, या बुजुर्ग हो, या कोई भी एज के हो, उन्हें योग जरूर करना चाहिए। कम से कम आधे घंटे का तो समय हमें अपने लिए निकालना चाहिए।
1: बिल्कुल निकालना चाहिए। और हमने कई बुरी आदतें पाल ली हैं देर रात तक मोबाइल देखने
0: बिल्कुल
1: की।
0: क्योंकि मोबाइल के चलते ही हमारे साथ सब कुछ जो है ना गड़बड़ हो रही है।
1: बिल्कुल। और इससे क्या हो रहा है कि नींद नहीं पूरी हो रही है,
0: क्योंकि अगर एक बार आप मोबाइल पे बैठ जाते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कितना समय बीत चुका है।
1: बिल्कुल। तो आधे घंटे का ध्यान मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपको नींद की बीमारी से भी राहत मिल सकती है। तो बहुत सारे फायदे हैं योग के, तो सिर्फ 21 जून को ही नहीं, आप हर दिन इसे
0: रूटीन में अपना शामिल करें, क्योंकि ये आपको तनाव से भी बचाता है। देखो वनिता, हम बातें करते करते कार्यक्रम के अब अंतिम क्षण पर पहुंच चुके हैं। हमारी जो घड़ी है वो बोल रही है कि आपका समय अब खत्म होने जा रहा है।
1: तो बिल्कुल, तो
0: हमारे श्रोता अपने सेहत का भी
1: ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हम फिर मिलेंगे जल्दी इस वादे के साथ। हम उन्हें करते हैं जोहार,
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: रखना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं आपकी ही पसंद के गीत। तो पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में, फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म का गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। सुनना चाह है ग्राम बड़बुड़िया पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। आप हैं बीहे आरा से सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी, थाना रोड बक्सर से ओमानंद केशरी, धनानंद केशरी और विनोद केशरी।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: इस संदेश के बाद फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी पसंद में, और अगला गीत सुनना चाहे रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गनवानकर, श्रीमती सरिता गनवानकर, प्रिंस एकांश गनवानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गनवानकर, प्रणीता गनवानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गनवानकर, श्रीमती वैशाली गनवानकर, श्वेता सुमित गनवानकर, कुमारी ध्वनि गनवानकर, ये सब सुनना चाहते हैं बदलापुर फिल्म का ये गीत। दिनेश विजान के बोल हैं, सचिन जिगर का संगीत है और इस गीत को गाया है आतिफ असलम ने।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में, और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, फिल्म है गुलाम। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित, और सुनना चाह है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित, मोहित और महादेव।

अगला गीत सुनना चाह है कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, आप है गोंदा टाउन काके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, सिद्धि जायसवाल, अनुप्रिया और भगत, ये सुनना चाहते हैं हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का ये गीत। आवाज़ हैं अभिजीत और श्रेया घोषाल की, इरशाद कामिल के बोल हैं, शारिब तोशी का संगीत है।

इसी गीत के साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 12 बजे हैं और वक्त है महिलाओं के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार सभी आप सभी बहनों का स्वागत है। आपके साथ है आपके सखी सुभाषिनी और रानी। रानी, कार्यक्रम में बहनों के लिए आगे क्या है वो बताओ।
5: बहनों, अब आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, परिवार को एक सूत्र में बांधती रसोई। इस विषय पर आज हमें जानकारी दे रही हैं सविता जैन और इनसे बातचीत कर रही हैं आपकी रेडियो सखी सुभाषिनी।
6: मोती चाहे जितने भी खूबसूरत हो, जब तक वो धागे में पिरोए नहीं जाते, बिखर जाते हैं। इसी तरह परिवार भी आपसी प्रेम और विश्वास का वह धागा है जो सबको जोड़ कर रखता है। आधुनिक भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने कमरों में सिमटते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान या यूं कहें कि एक ऐसा सूत्र है जो आज भी परिवार को जोड़ कर रखता है और वो है हमारी रसोई। परिवार को एक सूत्र में बांधती रसोई, इसी विषय पर आज गहराई से बातचीत करने के लिए हमारे बीच है एक खास मेहमान सविता जैन और वो

0: खास इसलिए हैं क्योंकि उनका फुल टाइम काम जो सुबह आंख खुलते ही शुरू होता है और रात को आंखें बंद होने पर ही खत्म होता है। जी हाँ बहनों, वो है एक कुशल गृहिणी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। सविता जी, हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। नमस्कार
1: नमस्कार सुभाषिनी जी, आपको भी।
0: सविता जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में जब लोग डाइनिंग आउट या कहें कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी को ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे में आप रसोई को किस नजरिए से देखती हैं? यानी आपके लिए रसोई क्या मायने रखता है?
1: सुभाषिनी जी, आपका ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं तो ये कहना चाहूंगी रसोई पर कि मेरे लिए तो रसोई सिर्फ ईंट, पत्थरों और बर्तनों से बना एक कमरा नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र स्थान है जहाँ पर हम सब परिवार के सदस्य जुड़ते हैं। और ये वो जगह है जहाँ ऊर्जा और सेहत मिलती है। और आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि घर का रास्ता उसके रसोई से होकर जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और जहाँ तक बाहर से खाने पीने की बात आपने पूछी है, तो मैं बताऊंगी कि आज की लाइफ स्टाइल के अनुसार मैं इसे पूरी तरह से गलत नहीं मानती, क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए या पर उस समय सहूलियत होती है, आपको बना बनाया खाना आसानी से मिल जाता है। लोग
0: जी
1: कभी परिवार में किसी को कुछ परेशानी आ गई, खाना बनाने की इच्छा नहीं हुई, तो इस समय के लिए ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसे एक आदत नहीं बना लेना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: हम बाहर से खाना मंगाते हैं, वो तो सिर्फ पेट भरता है, मन नहीं। लेकिन जब रसोई में खाना पकता है, तो उसमें मसालों के साथ साथ माँ का, पत्नी का या बहन का प्यार भी उसमें खुलता है। सुबह की पहली चाय की खुशबू से लेकर रात के आखिरी दूध के गिलास तक रसोई पूरे घर को एक लय में चलाती है। और वो बता दूं कि जब घर के लोग रसोई के आसपास इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ केवल खाना ही नहीं बनता, वहाँ बहुत तरह की बातें भी हम लोग करते हैं और अपने मन की बातें हम साझा करते हैं। इसीलिए रसोई मेरे लिए एक मंदिर की तरह है, जहाँ परिवार की सेहत और खुशहाली साथ साथ जुड़ी होती है।
0: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बातें बताई आपने सविता जी, और बिल्कुल सच है। लेकिन आज की जीवन शैली बहुत भाग दौड़ भरी हो गई है। पति ऑफिस में व्यस्त हैं, बच्चे कोचिंग या तो स्कूल में, और कई महिलाएं भी खुद कामकाजी हैं। तो ऐसे में रसोई सबको एक साथ लाने का काम कैसे कर पाएगी?
1: तो बिल्कुल सच है सुभाषिनी, आपके जो ये सवाल आपने किया है। लेकिन आज की जीवन शैली बहुत भाग दौड़ भरी हुई है, समय की बहुत कमी है, लेकिन भूख ऐसी चीज है जो सबको रसोई की तरफ खींच ही लाती है। और मेरे अपने घर में एक ऐसे मैंने नियम भी बना दिया है, चाहे दिन भर कोई भी कितना व्यस्त रहे, रात का खाना एक साथ बैठकर ही खाएंगे। पहले जमाने में कितना अच्छा था ना कि सब लोग, आज तो डाइनिंग टेबल पर बैठ के लोग खा रहे हैं, लेकिन पहले सब जमीन में बैठकर, पार्क में बैठकर खाना खाते थे। वो
0: बिल्कुल।
1: दिन बिल्कुल याद आते हैं तो लगता है क्यों ना वो दिन फिर से वापस ले आऊं। बच्चे दिन भर की अपनी शरारतें या स्कूल की बातें बताते हैं, और जो पति हैं जो ऑफिस में जाते हैं वो अपनी वहां की बातें बताते हैं, हल्के फुल्के मजाक भी चलते हैं। और एक घंटे के दौरान सब अपने, जो आजकल लोग खाना भी खाते हैं तो मोबाइल देखकर, लेकिन वो
0: बिल्कुल।
1: सबका दूर हो जाता है थोड़ी देर के लिए ही सही। लेकिन चलो, इसी बहाने मोबाइल से भी दूरी बनी और परिवार भी हम लोग इकट्ठे हुए। परिवार में चाहे हम कभी ऐसा भी कर सकते हैं सुभाषनी जी, कि अगर आपके परिवार में दादा दादी हैं और आप एक ही शहर में रहते हैं, तो
0: जी
1: ऐसा भी करिए कि सप्ताह में एक दिन दादा दादी, चाचा चाची के साथ डिनर कीजिए। तो वो आपको चाचा चाची के करीब लाता है, दादा दादी जी से जो दूरी बन जाती है वो आपके करीब आते हैं, तो आपका प्यार उनके प्रति बढ़ता है और उनका भी प्यार आपके प्रति बढ़ जाता है। तो ये जो रसोई है ना, सचमुच लोगों को एक डोर में बांधती है।
0: बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और सविता जी, जब कोई पार्टी या फंक्शन है, या मान लीजिए कई त्योहार भी आते हैं जैसे दिवाली हो गई, दुर्गा पूजा, तब तो रसोई में यानी खाने पीने में बदलाव करने होते हैं, साथ ही काम भी बढ़ जाता है हम महिलाओं का। तो उस समय आपका क्या अनुभव रहता है? क्या तब भी आप कहेंगी कि रसोई परिवार को बांधती है?
1: आपने जो सवाल किया है कि रसोई बांधती है, बिल्कुल बांधती है। परिवार में तो त्योहारों का एक अलग ही महत्व होता है। जब त्योहार आने वाला होता है तो उससे पहले की जो खुशियां होती है उसके कोई कहने नहीं।
0: जी
1: और आपको ये भी बता दूं कि जब आपको उसकी जो स्वाद है ना, तरह तरह के लोग नमकीन बनाते हैं, पूजा हो या दिवाली हो, तब रसोई में यानी खाने पीने में बदलाव करने होते हैं। भी
0: बिल्कुल
1: बढ़ जाता है, उस समय का आपका अनुभव जो है ना वो बहुत ही खास होता है। त्योहार
0: जी
1: के समय तो रसोई एक अलग ही माहौल हो जाता है। जाहिर सी बात है कि काम तो बढ़ ही जाता है। और मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। पिछली दिवाली पर कुछ जब मुझे बनाने बोला गया गुजिया और मटरे, तो मैं बना रही थी, तो मेरी सासू माँ ने मुझे अपनी पुरानी रेसिपी बताई।
0: अच्छा
1: बताई वो कि हमारे समय में कैसे बनते थे, वो मैं तुम्हें बता रही हूँ, और तुम
0: बिल्कुल
1: उसी अनुसार बनाओ। मेरी बेटी ने मैदा गूंदने में मदद की, और मेरे पति ने जो आमतौर पर रसोई में नहीं
0: जी
1: जाते, वो भी गुजिया तलने के लिए चले आए हमारे साथ।
0: बिल्कुल
1: बच्चों का काम था कि बनी हुई मिठाइयों को डिब्बों में सजाएं उसे ठंडा करके। और आप सोचिए, उस छोटे से स्पेस में 3 पीढ़ियां एक साथ काम कर रही थी।
0: बहुत सही
1: वहां का जो हंसी मजाक वो एक अलग ही आनंद है। तो इसीलिए त्योहारों की असली आनंद पकवान खाने में नहीं, बल्कि उसे सब मिलकर बनाने में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं है। यही वो पल होते हैं, वे बच्चों के मन में जीवन भर के लिए मीठी यादें बनकर रह जाती है। और बच्चे भी अच्छे संस्कार सीखते हैं, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: वो भी तो आज हमारे साथ हैं, छोटे हैं, लेकिन वो फिर अपनी माँ को जो काम करते देख रहे हैं, दादी को जो करते देख रहे हैं, वो फिर अपने जीवन में भी उन्हें सार करेंगे। आज न कल उनके भी घर द्वार बसेंगे। तो इसीलिए बच्चों को जरूर शामिल करिए। मैं तो यही कहूंगी, बच्चों को ये बात बताएं कि त्योहारों की जो पकवाने बनती है, मिठाइयां बनती है, उसे तुम भी सीखो।
0: बिल्कुल
1: और तब शायद बच्चे जो है ना बाजार से उतना नहीं मंगाएंगे।
0: जी
1: बाजार
0: जी
1: के स्वाद में बहुत अंतर होता है सुभाषिनी जी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और कहते हैं ना कि जो माँ जो होती है ना वो बच्चों की पहली शिक्षक होती है, और जो हमारा घर होता है वो पहला स्कूल होता है बच्चों के लिए। तो बिल्कुल आपकी बातें इस बात को सही साबित करती हैं कि बच्चे भी अच्छे संस्कार सीखेंगे, अच्छे गुण सीखेंगे। लेकिन सुधा जी, आजकल की नई पीढ़ी को लेकर अक्सर माता-पिता परेशान रहते हैं। बच्चों को घर की दाल रोटी से ज्यादा बाहर का पिज्जा बर्गर पसंद आता है। ऐसे में बच्चों को अपनी रसोई के स्वाद से कैसे जोड़ा जा सकता है? मुझे लगता है कि आपके पास इसका कोई नुस्खा जरूर होगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी बातें बता रही हैं हमें।
1: देखिए सुभाषिनी जी, मैं यही कहूंगी कि ये तो हर घर की कहानी है। बच्चों से अगर आप कुछ बातें कर रहे हैं खाने पीने की, तो जरूर बोलेंगे कि मम्मा आज पिज्जा मंगाते हैं, आज मुझे बर्गर खाने का मन है, या फिर बाहर की चाउमीन। तो मैं उनको बोलती हूँ कि बाहर के खाने में तुम्हें क्या स्वाद मिलता है, तो बहुत टेस्टी बनता है। चलो आज मेरे साथ रसोई में, और मैं जो बना रही हूँ वो बाहर के खाने से ज्यादा तुम्हें स्वादिष्ट मिलेगी। तो मैं अपने बच्चों को बाहर का खाना मंगाती हूँ, लेकिन उतना नहीं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर पिज्जा बनाना है तो मैं मैदे की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल करती हूँ, और उसमें ढेर सारी सब्जियां डालती हूँ, ताकि बच्चे उसे तोड़ेंगे तो वो सब्जियां तो उसमें गूंधी हुई आटे में वो तो फंसी रहेगी, अभी तो बाहर होंगी नहीं, इसीलिए वो फिर खाएंगे। और जब खाते हैं तो उन्हें फिर पसंद आता है, उसके लिए नुकसान भी नहीं है। तो इसीलिए मैं इस तरह से कर करके बच्चों को देती हूँ, क्योंकि मैं मतलब कहिए कि मैं गृहिणी तो हूँ, लेकिन एक और अलग तरह की गृहिणी हूँ। जो मैं किचन से कभी अपने आप को दूरी नहीं बनाती हूँ, मैं खार नहीं समझती हूँ कि मुझे खाना पकाना है, मुश्किल है, ये नहीं। मैं किचन में हंस हंस कर जाती हूँ, बच्चों को भी इंजॉय कराती हूँ, बच्चे भी खूब खुशी से खाते हैं।
0: सविता जी, एक परिवार में तो कई सदस्य होते हैं और सबकी पसंद अलग अलग होती है। बेटी हो गई, बेटा हो गए, पति हो गए, और किसी किसी परिवार में देवर, भाभी या ननद भी रहते हैं। तीखा पसंद है तो किसी को नमक, किसी को मीठा पसंद है। तो इन सबकी पसंद का ध्यान रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, और क्या इससे परेशानी नहीं होती है?
1: चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन इसी में तो मजा है। जब मेरे मूड खराब होता है या बेटे का एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो मैं बिना उससे पूछे उसकी पसंद की पनीर की सब्जी बना देती हूँ।
0: वाह,

0: और जब हस्बैंड दफ्तर में थककर आते हैं दफ्तर से, तो फिर उन्हें अदरक वाली कड़क चाय मिल जाती है। उनकी आधी थकान तो यही मिट गई। और अगर आपको किसी की पसंद का खाना बनाना है, तो असल में बिना बोले यह कहना है कि मैं आपकी परवाह करती हूँ। उन्हें
1: जी
0: महसूस होता है कि इस घर में उनकी इच्छाओं का सम्मान है। यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को अंदर से मजबूत करती है। जवाब लीजिए।
1: कविता जी, आपकी बातें वाकई दिल को छू लेने वाली हैं। हमारे पास तो अभी वक्त बहुत कम है, लेकिन बातें आपसे करने में बहुत अच्छा लग रहा है और हमें लग रहा है कि आपसे ढेर सारी बातें करें। लेकिन सविता जी, चलते चलते आप हमारे, विशेषकर आज के आधुनिक परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: कहना चाहूंगी सुभाषिनी जी, रसोई को कभी भी एक बोझ या सिर्फ एक काम मत समझिए। यह आपके घर का ऊर्जा केंद्र है। इसमें कम से कम एक दिन ऐसा रखिए जब पूरा परिवार मिलकर कुछ पकाए, चाहे वो सिर्फ मैगी या सैंडविच ही क्यों ना हो।
1: जी
0: रसोई में साथ बिताया गया समय आपके आपसी मतभेदों को भुला देता है। याद रखिए, जिस घर की रसोई में खाना नहीं प्यार बनता है, तो फिर आप देखेंगे कि उस घर की दीवारें हमेशा खुशियों से गूंजती रहती हैं।
1: खूब, बहुत ही सुंदर बातें आपने कही। और सविता जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और सचमुच हमारी बहनें भी इस बात से सहमत होंगी कि सविता जी ने जो बातें बताई, अपने अनुभव हमसे साझा किए, लगा कि सचमुच रसोई परिवार को एक सूत्र में बांधती हैं। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और अपने अनुभव साझा किए, अपनी बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थीं भेंट वार्ता, परिवार को एक सूत्र में बांधती रसोई इस विषय पर। भेंट वार्ताकार थीं सविता जैन और इनसे बातचीत कर रही थीं आपकी रेडियो सखी सुभाषिनी।
1: और बहनों, हमारी आज की मेहमान ने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई, जानकारी दी, रसोई का जिक्र किया कि कैसे एक परिवार को रसोई जो है वो एक सूत्र में बांधती है। रसोई एक ऐसा ऊर्जा का स्थान है जहाँ भोजन बनता है। और आज हम अपनी जानकारी में भी आपके लिए भोजन से संबंधित ही कुछ जानकारी आपके लिए लाए हैं। स्वस्थ भोजन, स्वस्थ शरीर, इस विषय पर आज हम जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो बहनों, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया का सबसे बड़ा राज छिपा है हमारे भोजन में। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम स्वाद और जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं।
2: हाँ बहनों, जंक फूड, ज्यादा तेल मसाले और अनियमित खान पान धीरे धीरे शरीर को कमजोर बना देते हैं। बहनों, स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यदि तन स्वस्थ हो तो मन भी प्रसन्न रहता है और जीवन की हर जिम्मेदारी निभाना आसान हो जाता है।
1: और स्वस्थ शरीर की शुरुआत आपकी रसोई से ही होती है। तो बहनों, सेहत का असली राज दवाइयों में नहीं होता है, बल्कि हमारी थाली में छुपा होता है। हम जैसा भोजन करते हैं, हमारा शरीर भी वैसा ही बन जाता है।
2: हाँ, इसलिए भोजन हमेशा संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। स्वस्थ भोजन का अर्थ केवल पेट भरना या महंगा खाना नहीं होता बहनों, बल्कि ऐसा भोजन लेना है जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर संतुलित मात्रा में मौजूद हों।
1: जैसे हमारी जो हरी सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, फल, दूध, दही, अनाज और पानी भी, पर्याप्त मात्रा में पानी हमारे खाने में, ये सारी चीजें जरूर शामिल होनी चाहिए। ये शरीर को आवश्यक पोषण देते हैं और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखते हैं।
2: हाँ, और इसके साथ ही समय पर भोजन करना बहुत जरूरी है बहनों। सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता है।
1: और बहुत अधिक तला भुना या बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है बहनों। घर का बना ताजा और संतुलित भोजन ही सबसे बेहतर है। अपने खाने में सलाद और अंकुरित अनाज जो होते हैं, उसको भी जरूर शामिल करें।
2: हाँ बहनों, और स्वस्थ शरीर के लिए सिर्फ अच्छा भोजन ही नहीं, थोड़ी शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है। रोज थोड़ी देर टहलना, योग करना या हल्का व्यायाम करना शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। क्यों सुभाषिनी?
1: बिल्कुल। तो याद रखिए बहनों, स्वस्थ भोजन ही स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव है। और जब हमारी थाली पोषण से भरपूर और संतुलित होगी और हम समय पर भोजन करेंगे, तभी हमारा जीवन भी अधिक स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान बना रहेगा।
2: हाँ
1: तो बहनों, अच्छा पौष्टिक भोजन करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारे विदा लेने का समय भी आ चुका है। तो आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की, आपकी सखी सुभाषिनी
2: और रानी को दे जाने की अनुमति।
1: नमस्कार।
3: गृहलक्ष्मी।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: கல்படை கட்டணா சுயம் இனி கட்படை பாரதிய சேனா.
1: संदेश के बाद आप सबका स्वागत है फिल्म संगीत में. सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में चलते चलते फिल्म का ये गीत. इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने.

कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं केके की आवाज में। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने, संगीत से सजा है प्रीतम ने, और आवाज है केके की।

कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राजू सिंह ने। फिल्म का नाम है राज और गायक कलाकार हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल।

ओम शांति ओम। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। आवाज़ है के की। विशाल रडलानी ने इस गीत को लिखा है और विशाल और शेखर का संगीत है।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संघ भावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में निर्देश देने की सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेट्टेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: विद्यालय को देशभर में पहला स्थान, राष्ट्रीय रैंकिंग में राज्य के 3 स्कूलों ने बनाई जगह, और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम ने जापान को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने नीट की पुनर्परीक्षा संपन्न होने तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। यह रोक 22 जून तक लागू रहेगी। इधर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा बैठक की। कल एक उच्च स्तरीय बैठक में गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। श्री मोहन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने बताया कि अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। भाजपा के मुख्य सचेतक से हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने दावा किया है कि झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत होगी। हजारीबाग में उन्होंने कहा कि नाथवानी 2 बार झारखंड से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने झारखंड को कई सौगातें दी हैं।
1: परिमल नाथवानी जी के लिए उनके वोटर 81 हैं। सभी पार्टियों से और सभी विधायकों से निर्दलीय प्रत्याशी को वोट मानने का लोकतांत्रिक अधिकार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 18 तारीख को वोट होगा और परिणाम आएगा तो परिमल नाथवानी जी विजयी होंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है।
0: कोल इंडिया की पहली कोल बेड मिथेन CBM परियोजना के तहत धनबाद के झरिया में अगले 1 साल में मिथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना से हजारों करोड़ रुपए के राजस्व के साथ साथ घरेलू रसोई उद्योग और उर्वरक क्षेत्र को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। BCCL के CMD मनोज अग्रवाल ने बताया कि मुनिडीह में CBM परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और अगले 1 साल में व्यावसायिक उत्पादन का लक्ष्य है।
2: तो हमारे BCCL के बहुत सारे माइंस, गैसी माइन, कोल माइंस में बेड में जो मिथेन पाया जाता है, उस मिथेन को निकाल कर अपने ऊर्जा के स्रोतों में हम ला पाए, इस दिशा में मुनिडीह में हमने लगभग 25 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार चिन्हित किया है और गैस का निकलना भी शुरू हो गया है, और इसका कमर्शियल यूज पाइपलाइन बिछा करके विद इन 1 ईयर हम लोग इसको शुरू कर लेंगे और इसे लगभग 125 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू की प्राप्ति होगी।
0: झारखंड हाईकोर्ट में लॉकडाउन के दौरान रांची समेत कई जिलों में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट मांगी है। इस पर प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने समय की मांग की। अदालत ने इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तय की है। गौरतलब है कि रांची, पलामू, गढ़वा, जामताड़ा, चाईबासा आदि जिलों के जंगल से अवैध रूप से हजारों पेड़ काट दिए गए थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में रांची के चान्हो स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय ने 99.20% अंक लाकर देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। इस राष्ट्रीय रैंकिंग में झारखंड के 3 स्कूल शामिल हैं, जिनमें हजारीबाग का बिहारी बालिका हाई स्कूल 21वें और लातेहार का उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुरीसात 64वें स्थान पर रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हजारीबाग के स्कूल को शौचालय और

0: स्वच्छता प्रबंध और लातेहार के स्कूल को पेयजल और वर्षा जल संचयन में बेहतर कार्य के लिए सराहा है। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने कहा है कि करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे गया पुल अंडरपास का निर्माण तय समय से पूरा हो जाएगा। वहीं गोविंदपुर में 329 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का काम भी समय पर पूरा होगा। सांसद ने कहा कि दोनों परियोजनाएं क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।
1: गया पुल चौड़ीकरण को लेकर लगातार धनबाद के लोग असमंजस की स्थिति में थे। कई एक बार टेंडर हुआ मगर गुंडा माफियाओं के डर से लोग यहाँ टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किए, मगर हम लोगों ने जाकर अपने इस क्षेत्र के दर्द और भावना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, अपने रेल मंत्री जी के पास हमने रखा और उन्होंने आश्वस्त किया कि डरने की बात नहीं है, मोदी जी है तो कोई भी काम नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है।
0: चतरा जिले में वन्य जीवों की सुरक्षा और वन पेड़ क्षेत्रों की प्रभावी गश्ती के उद्देश्य से वन्य जीव प्रबंधन योजना के तहत वनकर्मियों को 51 गश्ती बाइक उपलब्ध कराई गई है। इससे वनकर्मियों की पहुंच दूरस्थ वन क्षेत्रों तक आसान होगी। डीएफओ मुकेश कुमार ने कहा कि इससे अवैध कटाई, अतिक्रमण, वन्य जीव तस्करी तथा वन संपदा की चोरी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण में सहायता मिलेगी। रांची नगर निगम ने मॉनसून के दौरान शहर में जल जमाव से निपटने की व्यापक तैयारी की है। निगम ने सर्वेक्षण के बाद शहर के 108 ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां बारिश के दौरान पानी जमा होने की संभावना रहती है। मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम ने 11 आधुनिक डी सिल्टिंग पंप खरीदा है, साथ ही 11 क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है।
2: 11 लोगों की टीम गठित हम लोगों ने किया है, जिसके माध्यम से जहां पर भी वाटर लॉगिंग हो रहा है वहां पर पूरे तैयारी के साथ पहुंच करके पानी कैसे निकाले उसके लिए वो प्रयास करेंगे। भर में जहां जहां वाटर लॉगिंग होगा वहां वहां ये फोर्स पहुंच करके त्वरित कार्रवाई करेगा।
0: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 307 अंकों की बढ़त के साथ 76,571 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी लगभग 75 अंकों की बढ़त के साथ लगभग 24,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज एफएमसीजी और आईटी के शेयर्स में अधिक खरीदारी हो रही है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो है। एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप 2025-26 में भारतीय महिला टीम ने जापान को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। भारत के लिए कप्तान सलीमा टेटे और लाल रमसियामी ने 1-1 गोल किए। 6 अंकों के साथ पूल में शीर्ष पर चल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला 18 जून को उरुग्वे से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र ने नीट की पुनर्परीक्षा को लेकर 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर लगाया बैन। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन का दिया निर्देश। कोल इंडिया की पहली कोल बेड मिथेन परियोजना के तहत झरिया में अगले एक साल में मिथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य। झारखंड हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के समय राज्य के विभिन्न जिलों में पेड़ों के अवैध कटाई मामले में राज्य सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में रांची के चान्हो स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय को देश भर में मिला पहला स्थान। राष्ट्रीय रैंकिंग में राज्य के 3 स्कूलों ने बनाई जगह। और एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम ने जापान को 2-0, 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमला आगरा कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं ठुमरी। कलाकार हैं गिरजा देवी। बोल हैं कौन देश गए छबिलिया।

उपशास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे गिरजा देवी से ठुमरी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं हरिहरन की गाई चंद गजलें।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुनें।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, और सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं हरिहरन की गाई चंद गजलें।

सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी रांची है, 2 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।

0: राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियों में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को निर्धारित कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर माईगॉव की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
5: UNSC reform would be grossly inadequate.
6: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे
5: हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पूर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। 1740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 28वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्यभर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।
8: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: DSNR。
1: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
2: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: संदेश के बाद आप सबका स्वागत है कार्यक्रम जय भारती में, और हमारे फौजी भाइयों का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। फौजी शब्द भारतीय संस्कृति और समाज में असीम सम्मान, त्याग और भाईचारे का प्रतीक है। ये देश के वीर सैनिकों के प्रति हमारे प्रेम और कृतज्ञता को दर्शाता है, जो सरहद पर हर मौसम में डटकर हमारी रक्षा करते हैं। जी हाँ, तो इस कार्यक्रम के जरिए हम उनके लिए लेकर आते हैं कुछ फिल्मी नगमे। तो चलिए पहले सुनते हैं स्वदेश फिल्म का ये गीत उदित नारायण, कैलाश खैर और हरिहरन की आवाज़ों में। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है और ए आर रहमान ने संगीत दिया है।

इस समय आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। जी हाँ, फौजी देश की सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, चाहे युद्ध की स्थिति हो या देश के अंदर कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, जैसे कि बाढ़, भूकंप। फौजी हमेशा नागरिकों की मदद और बचाव के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो चलिए, वो आगे रहते हैं, अब हम अपने फौजी भाइयों को सुनवाते हैं अगला गीत। ये फिल्म है लगान, आवाज़ें हैं AR रहमान, श्रीनिवास और साथियों की। जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं रंग दे बसंती फिल्म का ये गीत। इसे गाया है दिलेर मेहंदी ने, प्रसून जोशी ने इस गीत के बोल लिखे हैं और ए आर रहमान ने संगीत दिया है।

0: इसी गीत के साथ ही फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जैविक उत्पादों और कृषि व्यापार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़कर विदेशों तक फल बेच रही हैं। सीएम ने कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों और निर्यातकों को सरकार के इस प्रगतिशील सोच में सहयोगी बनने का आमंत्रण दिया।
2: आज ये कृषि व्यापार मेला जिस तरीके से समय काल बीत रहा है, हमारे कृषक वर्तमान में जो कंपटीशन की व्यवस्था है और आज देश दुनिया में किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से नए तकनीक के साथ हम अपने किसानों को मजबूत कर पाए, इसका एक छोटा सा रूप आज इस मेले में उतारने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। तो आज कई ऐसे समावेशी के साथ हम काम कर सकते हैं जहां अपने किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने में मजबूती प्रदान करेगा।
1: राज्य में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। रणनीति के तहत एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के एक बड़े होटल में शिफ्ट कर दिया है। मतदान के दिन तक सभी विधायक यहीं रहेंगे, जहां उन्हें वरीयता क्रम के अनुसार वोट डालने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने अपने पलामू दौरे के दूसरे दिन मेदिनी नगर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने भाषा विवाद और पेपर लीक मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। श्री दास ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विकसित भारत का संकल्प दोहराया।
3: सरकार में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ऐसे कार्य ये है जिन्हें स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर देवघर में नमो एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे 22 जून को इसका शुभारंभ करेंगे। आधुनिक उपकरणों से लैस यह एम्बुलेंस सेवा साल के 365 दिन 2400 घंटे पूरी तरह निःशुल्क रहेगी, जिससे स्थानीय मरीजों को त्वरित आपातकालीन चिकित्सा मिल सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के बड़का गांव में बादम कोल खनन परियोजना के बीजीआर कंपनी कार्यालय पर आज सुबह अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। सुबह करीब 5 हुई इस घटना में भीड़ ने परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। बड़का गांव थाना प्रभारी दीपक सिंह और एसडीपीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान कर जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग के दारू थाना प्रभारी ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक सराहनीय पहल की है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर वॉल पेंटिंग अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। दीवारों पर चित्रों के माध्यम से बाल विवाह रोकने, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। थाना प्रभारी के अनुसार यह अभियान आम लोगों को जागरूक करने में बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर यात्रियों का पारंपरिक स्वागत हुआ और रक्तदान शिविर, छऊ नृत्य तथा वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुखद अनुभव देने की प्रतिबद्धता जताई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप मुकाबले में 36 रन की पारी खेलते हुए T20 विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हरमनप्रीत ने पूर्व कप्तान मिथाली राज के 726 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
3: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है
2: जी।
3: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है
2: जी।
3: बेबी साहू समीक्षा, बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नवतपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
3: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
3: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियां। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
3: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर यदि आप ध्यान दें तो प्राकृतिक होता है, जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुम्दी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुम्दी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यह लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुम्गी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
4: साथियों नमस्कार।
5: नमस्कार साथियों।
4: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
5: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
4: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे।
5: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
4: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
6: अरे जॉन्सी, तुम

0: और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ
2: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
3: क्या गिन रही हो?
4: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only four.
3: मेरी तरफ देखो।
4: सू, only four. ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3

0: बाबा जी, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास।
1: तू जान से
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
0: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
0: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
3: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
0: सू, मेरी दोस्त।
1: हाँ जॉन्सी।
0: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू? हाँ जॉन्सी,
0: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
1: हाँ बिल्कुल,
0: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
1: बिल्कुल जॉन्सी।
0: हाँ, हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
1: पत्ता?
0: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
1: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
0: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
1: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
0: हाँ, हाँ।
3: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
0: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
0: थैंक यू
1: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
1: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
0: ओ गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
2: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया।
0: ओह,
1: उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
0: ओह,
1: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
1: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सो उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया,
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
0: मास्टरपीस।
1: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे, और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रांची मेलोडीज़।

0: रांची मेलोडीज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज की रांची मेलोडीज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत से गीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हेमंत मुखर्जी, हेमंत यानी हेमंत कुमार के गाए गीत। आज उनका जन्मदिन है, जी हाँ, क्योंकि 16 जून 1920 को उनका जन्म हुआ था। उनका नाम हेमंत मुखोपाध्याय था, जिन्हें हम पेशेवर रूप से हेमंत मुखर्जी या फिर हेमंत कुमार के नाम से जानते हैं। वे एक भारतीय संगीत निर्देशक और पार्श्व गायक थे, जिन्होंने मुख्य रूप से बंगाली हिंदी फिल्मों में गीत गाए और साथ ही साथ मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, कोंकणी, संस्कृत और उर्दू सहित कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी गीत गाए। वे बंगाली और हिंदी फिल्म संगीत, रविंद्र संगीत और विभिन्न अन्य विधाओं के कलाकार थे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के लिए दूरराष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए और वे लोकप्रिय रूप से भगवान की आवाज के रूप में भी जाने जाते थे।
1: जाने वो कैसे

1950 के दशक के मध्य तक हेमंत मुखर्जी ने एक प्रमुख गायक और संगीतकार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। बंगाल में वे रविंद्र संगीत के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक थे और शायद सबसे अधिक मांग वाले पुरुष गायक भी थे। मुंबई में पार्श्व गायन के साथ साथ हेमंत ने एक संगीतकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने नागिन नामक एक हिंदी फिल्म के लिए संगीत तैयार किया, जो अपने संगीत के कारण काफी सफल भी रही और नागिन के गाने लगातार 2 साल तक चार्ट टॉप पर

हेमंत कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। संगीत निर्देशक, संगीतकार, गायक और फिल्म निर्माता के तौर पर अपने हर काम से उन्होंने इतिहास रच दिया। वे हेमंत दा के नाम से भी मशहूर हुए। उन्होंने मुख्य तौर पर बांग्ला हिंदी फिल्मों के गानों के लिए धुनें तैयार की और इसके अलावा उन्होंने बांग्ला, हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में भी गीत गाए।

0: बांग्ला संगीत उद्योग पर हेमंत कुमार का राज हुआ करता था। बांग्ला फिल्मों के मुकाबले उन्होंने हिंदी फिल्मों में कम काम किया, इसके बावजूद हिंदी फिल्मों में भी उनका योगदान उतना ही अहम माना जाता है। चाहे बेमिसाल आवाज में गाए हुए बेकरार करके हमें यूं ना जाइए और जाने वो कैसे लोग जैसे क्लासिक गाने हो, या फिर ये नयन डरे डरे जैसे गानों की धुन हो, हेमंत दा ने हमेशा लोगों का दिल जीतने में वो कामयाब रहे।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी पसंद।

साल 1933 में हेमंत कुमार ने 13 साल की उम्र में अपना पहला गीत गाया। सुभाष मुखोपाध्याय की मदद से हेमंत कुमार को ऑल इंडिया रेडियो पर अपना पहला गीत अमर गनेते एले नरुगुपी चिरंतनी गाने का मौका मिला और आगे चलकर सुभाष मुखोपाध्याय एक मशहूर बांग्ला कवि भी बने। हेमंत कुमार ने बांग्ला संगीतकार शैलेश दासगुप्ता से रविंद्र संगीत भी सीखा। इसके अलावा उन्होंने उस्ताद फयाज खां से भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली।

हेमंत कुमार की बेमिसाल आवाज़ उन्हें सबसे अलग बनाती थी। मशहूर संगीतकार सलील चौधरी हेमंत कुमार की आवाज़ को भगवान की आवाज़ कहते थे। साथ ही वे लता मंगेशकर के लिए कहते थे कि जब वे गाती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई महिला संत एक भक्ति गीत गा रही हो। ये एक ऐसा दौर था जब गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसी तरह के आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ऐसे में गायकों को इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता था कि उनकी आवाज़ माइक पर सही लगे, और ऐसा कहा जाता है कि हेमंत कुमार से ज़्यादा इस बात की समझ किसी को नहीं थी कि माइक पर आवाज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। वे गाने के हिसाब से माइक से दूरी बनाने में माहिर थे।

इसी के साथ ही रांची मेलोडीज अब यहीं संपन्न होता है। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हेमंत कुमार के गीत, क्योंकि आज उनका जन्मदिन था तो रांची मेलोडीज उन्हीं के गीतों से सजी थी।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। बोकारो के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज कोडरमा का दौरा किया। उन्होंने एसपी कुमार शिवासीस और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अपराध नियंत्रण के निर्देश दिए। आईजी ने जमीन विवादों के निपटारे के लिए थानों में नियमित थाना दिवस आयोजित करने को कहा। पाकुड़ में जिला परिषद सदस्य और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हंजला शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा क्रिमिनल अपील खारिज होने के बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया था। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के बनियाडी गांव में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 6 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पाकुड़ की नगर थाना पुलिस ने कलिकापुर मोहल्ला स्थित एक बंद बीड़ी कारखाने के पीछे छापेमारी कर नशीला पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस ने मौके से अवैध मादक पदार्थ के कारोबारी रमजान शेख को 29 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। चतरा की पत्थलगढ़ा थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिरकोल से मनीष मुंडा नामक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से करीब 13 लाख रुपए मूल्य की 2.5 किलोग्राम से अधिक अफीम और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची में मुक्केबाज शिक्षा कुमारी से मुलाकात की। गोड्डा की शिक्षा कुमारी ने राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत पात्र और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष खेल कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता दें कि आज क्रीड़ा जगत में खेल जगत की कई बड़ी और चर्चित खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात होगी फीफा विश्व कप 2026 की, जहां दुनिया की दिग्गज टीमें और स्टार खिलाड़ी विश्व चैंपियन बनने की दौड़ में जुटी है। इसके बाद नजर डालेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप पर, जहां भारतीय महिला टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। साथ ही चर्चा करेंगे झारखंड T20 लीग 2026 की, जिसने राज्य के युवा क्रिकेटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। पर्सनलिटी ऑफ द वीक में बात करेंगे न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज केन विलियमसन की, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। साथ ही जानेंगे भारत के दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा के योगदान के बारे में, जिन्होंने भारतीय शूटिंग को नई पहचान दिलाई। खेल खबरों में रांची की प्रतिभाशाली क्रिकेटर पलक कुमारी की उपलब्धि पर भी बात करेंगे, जिनका चयन भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2026 के विजेताओं और टूर्नामेंट की प्रमुख झलकियों पर भी नजर डालेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल आयोजन फीफा विश्व कप 2026 की, जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। फुटबॉल का महाकुंभ कहे जाने वाला फीफा विश्व कप पहली बार वर्ष 1930 में आयोजित हुआ था। पहले विश्व कप की मेजबानी उरुग्वे ने की थी और वही पहला चैंपियन भी बना था। तब से लेके आज तक यह प्रतियोगिता खेल जगत का सबसे बड़ा मंच बन चुकी है। इस बार का विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार टूर्नामेंट की मेजबानी 3 देशों यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। प्रतियोगिता 11 जून से शुरू होकर 19 जुलाई 2026 तक चलेगी। इस विश्व कप की सबसे बड़ी खासियत है कि पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही है। पहले 32 टीमें खेलती थी, अब 12 समूह बनाए गए हैं। प्रत्येक में 4-4 टीमें हैं। हर टीम 3 ग्रुप मैच खेलेगी। समूह की शीर्ष 2 टीमों और सर्वश्रेष्ठ 8 तीसरे स्थान वाली टीमें नॉकआउट दौर में पहुंचेंगी। कुल 104 मैच खेले जाएंगे, जो विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक है। अब नजर डालते हैं शुरुआती मुकाबले पर। उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। दक्षिण कोरिया ने चेकिया को 2-1 से मात दी। अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हराया, जबकि ब्राजील और मोरक्को का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। स्कॉटलैंड ने हैती को 1-0 से पराजित किया। जर्मनी ने कुरासाओ को 7-1 से हराकर अपने इरादे साफ। इस विश्व कप में दुनिया की नजरें कई दिग्गज खिलाड़ियों पर टिकी है। पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, फ्रांस के किलियन एम्बापे, इंग्लैंड के जूड बेलिंगम, ब्राजील के विनिसियस जूनियर, इंग्लैंड के हैरी केन और जर्मनी के जमाल मुसियाला जैसे सितारे इस टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि विश्व कप जीतने वाली टीम को क्या मिलेगा। विजेता टीम को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। साथ ही करोड़ों डॉलर की पुरस्कार राशि और विश्व कप फुटबॉल में अमर पहचान मिलेगी। विश्व कप जीतना किसी भी खिलाड़ी और देश का सबसे बड़ा सपना माना जाता है। यदि विश्व कप के इतिहास पर नजर डालें तो सबसे सफल टीम ब्राजील रही है, जिसने रिकॉर्ड 5 बार खिताब जीता है। इसके अलावा जर्मनी और इटली ने 4-4 बार, जबकि अर्जेंटीना ने 3 बार विश्व कप जीता है। विश्व कप विजेता की सूची में उरुग्वे, इटली, जर्मनी, ब्राजील, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों का नाम दर्ज है। हालिया विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। अब बात करते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण इसकी सरलता है। एक गेंद और खुला मैदान हो तो खेल शुरू हो जाता है। दुनिया के लगभग हर देश में फुटबॉल खेला और देखा जाता है। फीफा के सदस्य देशों की संख्या 200 से अधिक है। विश्व कप के दौरान अरबों दर्शक मैच देखते हैं, यही वजह है कि इसे द ब्यूटीफुल गेम भी कहा जाता है। भारत की बात करें तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम वर्तमान में विश्व फुटबॉल की शीर्ष टीमों में शामिल नहीं है। भारत अभी विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है, लेकिन हाल ही के वर्षों में भारतीय फुटबॉल में सुधार हुआ है और युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम इतिहास में 1950 का विश्व कप भी याद किया जाता है, जब भारत को खेलने का अवसर मिला था लेकिन टीम भाग नहीं ले सकी। तब से भारतीय फुटबॉल प्रेमी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तिरंगा भी विश्व कप के मैदान पर लहराएगा। और अब बात फाइनल मुकाबले की। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस महा मुकाबले पर होगी, जहां दो सर्वश्रेष्ठ टीमें विश्व चैंपियन बनने के लिए भिड़ेंगी। साथियों, फीफा विश्व कप 2026 सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि देशों, संस्कृतियों और करोड़ों सपनों का उत्सव है। और अब बात करेंगे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की, जहां भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में करते हुए पाकिस्तान को हराकर पूरे देश का उत्साह बढ़ा दिया है। महिला टी20 विश्व कप की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। पिछले डेढ़ दशक में इस टूर्नामेंट में महिला क्रिकेट को नई पहचान दी है। भारत अब तक यह खिताब नहीं जीत पाया है, लेकिन 2020 में फाइनल और कई बार सेमीफाइनल तक पहुंचकर अपनी क्षमता साबित कर चुका है। इस बार महिला टी20 विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है। प्रतियोगिता 12 जून 2026 से शुरू हुई है और इसका फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस बार कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण है। अब बात भारत के पहले मुकाबले की। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मैच में भारतीय टीम ने 64 रन से शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 पर ही सिमट गई। भारत की जीत की सबसे बड़ी नायिका रही दीप्ति शर्मा, जिन्होंने 5 विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह से झकझोर दिया। इस जीत के साथ भारत ने

तथा स्मृति मंदाना की शानदार फॉर्म भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदों को और भी मजबूत कर रही है। महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता भी इस विश्व कप में साफ दिखाई दे रही है। भारत पाकिस्तान मुकाबले में बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी ने साबित कर दिया है कि महिला क्रिकेट अब विश्व खेल जगत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो साथियों, भारतीय महिला टीम ने विश्व कप में जीत के साथ दमदार आगाज किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वुमेन इन ब्लू इस बार इतिहास रचते हुए पहली बार T20 विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर पाती है या नहीं। भारतीय टीम को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करेंगे झारखंड क्रिकेट के लिए एक नई और ऐतिहासिक शुरुआत की, झारखंड T20 लीग 2026 की। दोस्तों, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी JSCA द्वारा आयोजित इस फ्रेंचाइजी लीग की शुरुआत 10 जून 2026 से रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हुई है। टूर्नामेंट का फाइनल 23 जून को खेला जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में कुल 27 मैच खेले जा रहे हैं, जिनमें लीग मुकाबले के अलावा 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल शामिल है। इस लीग का उद्घाटन मुकाबला छोटनागपुर रॉयल्स और रांची टाइटंस के बीच खेला गया। वहीं उद्घाटन समारोह की सबसे बड़ी आकर्षण रहे भारत के पूर्व कप्तान और झारखंड के गौरव महेंद्र सिंह धोनी। धोनी की मौजूदगी ने खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, छोटनागपुर रॉयल्स, रांची टाइटंस, कोयलांचल सुपर किंग्स, जमशेदपुर स्टीलर्स, धनबाद डायमंड्स और संथाल स्ट्राइकर्स। एक खास बात यह भी है कि JSCA स्टेडियम में मैच देखने के लिए दर्शकों की एंट्री बिल्कुल निशुल्क यानी फ्री रख दी गई है, जिसमें क्रिकेट प्रेमी बड़ी संख्या में मैदान पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। दोस्तों, ये लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि झारखंड के युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी हुनर को दिखाने का बड़ा मंच है। यहां अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर घरेलू क्रिकेट, IPL फ्रेंचाइजियों और चयनकर्ताओं की नजर पड़ सकती है। यानी यह प्रतियोगिता कई युवा क्रिकेटर्स के सपनों को नई उड़ान देने का काम कर सकती है। अगर झारखंड क्रिकेट की बात करें तो इस राज्य ने भारतीय क्रिकेट को कई बड़े सितारे दिए हैं। सबसे बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी का है। इसके अलावा ईशान किशन, वरुण एरोन, शहबाज नदीम, सौरभ तिवारी और अनुकूल रॉय जैसे खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रीय और IPL स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज झारखंड T20 लीग उसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। कौन जानता है कि इस लीग में खेल रहा कोई युवा खिलाड़ी आने वाले समय में भारत की जर्सी पहनकर देश का नाम रोशन करे। कुल मिलाकर झारखंड T20 लीग 2026 राज्य के क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो युवा प्रतिभाओं को अवसर देने के साथ साथ झारखंड क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रही है। क्रीड़ा जगत कार्यक्रम में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में अब बात करते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज में गिने जाने वाले केन विलियमसन के बारे में। विलियमसन ने 16 साल के शानदार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। केन विलियमसन ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और देखते ही देखते न्यूजीलैंड क्रिकेट की पहचान बन गए। वे न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 19,000 से अधिक रन दर्ज हैं। कप्तान के रूप में उन्होंने न्यूजीलैंड को 2019 विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया और 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी दिलाया। अपनी शांत कप्तानी, खेल भावना और शानदार बल्लेबाजी के कारण वे दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक रहे। विराट कोहली, जो रूट और स्टीव स्मिथ के साथ उन्हें आधुनिक क्रिकेट के फैब फोर में गिना जाता है। उनके संन्यास के साथ क्रिकेट के एक सुनहरे दौर का महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया है। भारतीय खेल जगत के लिए हाल ही में एक बेहद दुखद समाचार सामने आया है। देश के महान निशानेबाज, एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता और दिग्गज कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से पूरा खेल जगत शोक में डूब गया है।
जैसे

0: यशपाल राणा सिर्फ एक सफल खिलाड़ी ही नहीं थे बल्कि भारतीय शूटिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अपने शानदार करियर में एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए अनेक पदक जीते। वे कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में भारत के सबसे सफल खिलाड़ियों में एक गिने जाते हैं, जहां उन्होंने 15 पदक अपने नाम किए थे। बहुत कम उम्र में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बाद में पद्मश्री और फिर कोच के रूप में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला। खिलाड़ी के रूप में उनकी उपलब्धियां जितनी शानदार थी, कोच के रूप में उनका योगदान उससे भी बड़ा माना जाता है। पेरिस ओलंपिक में भारत को गौरवान्वित करने वाले स्टार शूटर मनु भाकर की सफलता के पीछे भी यशपाल राणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कई युवा निशानेबाजों को तैयार किया और भारतीय शूटिंग की मजबूत नींव खड़ी की। रिपोर्ट्स के अनुसार म्यूनिक विश्व कप से लौटते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर के खिलाड़ियों, कोचों और खेल प्रेमियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। आज भारतीय खेल जगत ने केवल एक महान शूटर नहीं बल्कि एक ऐसे गुरु को खो दिया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए चैंपियन तैयार करने में लगा दी। उनकी उपलब्धियां, उनका समर्पण और खेल के प्रति उनका जुनून आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भारतीय खेल जगत के इस महान सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर नमन करते हैं। क्रीड़ा जगत में अब खास खास खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड और खास करके रांची के लिए बेहद गर्व की खबर है। युवा क्रिकेटर कुमारी पलक का चयन भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाले अंडर 19 T20 वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। खास बात यह है कि पलक का चयन दोनों प्रारूप की टीमों में हुआ है, जो उनकी प्रतिभा और निरंतर प्रदर्शन को दर्शाता है। देवघर जिला से ताल्लुक रखने वाली और रांची जिला क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली पलक ने इस उपलब्धि के साथ इतिहास रच दिया है। वह रांची जिला क्रिकेट संघ RDCA से भारतीय टीम में चयनित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे झारखंड क्रिकेट के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। पलक पिछले कुछ वर्षों से झारखंड की आयु वर्ग और महिला क्रिकेट प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही। उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का ही परिणाम है कि आज उन्हें भारतीय टीम की नीली जर्सी पहनने का अवसर मिला है। टेनिस जगत का दूसरा ग्रैंड स्लैम और क्ले कोर्ट का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026, जिसे रोला गैरो भी कहा जाता है, हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुआ। दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ियों की मौजूदगी में खेले गए इस टूर्नामेंट ने कई नए सितारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। पुरुष एकल वर्ग में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इटली के फ्लाविओ कोवोली को 5 सेटों के रोमांचक फाइनल में हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। लंबे समय से ग्रैंड स्लैम जीतने का इंतजार कर रहे ज़वेरेव के लिए यह जीत बेहद खास रही। वही महिला एकल वर्ग में रूस की 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी मिर्रा एड्रीवा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने फाइनल में पोलैंड की माजा ख्वालिस्का को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही एड्रीवा 1992 के बाद रोला गैरो जीतने वाली सबसे युवा महिला चैंपियन बन गई। फ्रेंच ओपन की पहचान उसकी लाल मिट्टी यानी क्ले कोर्ट से होती है, जहां खिलाड़ियों की फिटनेस, धैर्य और मानसिक मजबूती की कड़ी परीक्षा होती है। इस बार का टूर्नामेंट कई उलटफेरों और नए चेहरों के शानदार प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा। हाल ही में चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने पहली पारी में 564 रन बनाए, जबकि अफगानिस्तान की टीम दोनों पारियों में क्रमशः 152 और 112 रन ही बना सकी। पदार्पण कर रहे युवा स्पिनर मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच में यादगार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो दोस्तों, इसी के साथ क्रीड़ा जगत में आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रभु शरण। अब मुझे यानी विश्वजीत पात्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अभी आप सुन रहे थे खेल जगत के बारे में। खेल जगत शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह मनोरंजन और प्रतिस्पर्धा का मिश्रण है जो लोगों को एकजुट करने के साथ साथ अनुशासन और टीम की भावना को सिखाता है। सचमुच दुनिया भर में 8000 से अधिक के स्वदेशी और अधिकाधिक खेल खेले जाते हैं और इसमें मुख्य रूप से आउटडोर खेल, इंडोर खेल, बैडमिंटन, स्वदेशी खेल, बहुत सारे खेलों को खेला जाता है। आइए अब हम बात करते हैं खेलों के महत्व के बारे में। खेल का दायरा सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी खेलों का बहुत महत्व है। यह शरीर को मजबूत बनाता है और एकाग्रता, अनुशासन सिखाता है। यह सामाजिक और आर्थिक लाभ को भी बढ़ावा देता है। हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन जैसे ओलंपिक या राष्ट्रीय मंडल खेल मेजबान देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को एक बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। अगर हम बात करते हैं खेलों के द्वारा तो इनके महत्व में योग्यता और रोजगार भी सम्मिलित है। आज के समय में खेल का एक बड़ा कैरियर विकल्प बन चुका है जिसमें खिलाड़ी अपने दम पर पहचान और सरकारी नौकरियों तक हासिल कर लेते हैं।

सचमुच खेल जगत एक बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देशों को भी जोड़ने का माध्यम है।

श्रोताओं, स्वागत है आपका इस रेडियो कार्यक्रम में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां दे दें। 4:55 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। युवाओं के लिए कार्यक्रम युवानी आप सुनेंगे 5:02 पर। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोग। 6 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का।

6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर आप सुन सकेंगे जिले में आजकल। आदिवासी अखड़ा का कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:15 पर।

7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अंग्रेजी टॉक। विषय रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट की टू नेशन। 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8:10 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम। विषय रहेगा वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे मनी टॉक और 9:45 पर मंथन।

10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंजे झारखंड, जिसमें आप सुनेंगे शिक्षा पर आधारित लोक गीत। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। 11 बजे से आप सुनेंगे हिंदी और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का ब्यूरो।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम में आइए सुनते हैं पहला गीत फिल्म तुमसे अच्छा कौन है। गीत समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण के और आवाज कुमार शानू के हैं।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांस सरगम का अगला गीत फिल्म अंजाम से। गीत समीर के हैं, आनंद मिलंद के संगीत है और आवाज अभिजीत के।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित
2: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
3: भाइयों एवं बहनों जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार।
2: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम सांझ सरगम में। आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं। गीत जावेद अख्तर के हैं, संगीत राजेश रोशन के और आवाज उदित नारायण के।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में 3 दिवसीय झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले के लोगों का लोकार्पण किया और टाना भगत परिवारों को पशु शेड निर्माण के लिए 100% अनुदान राशि सौंपी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने रांची स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि नामको मिलिट्री हॉस्पिटल में 19 जून तक विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वर्ष 2003 की SIR मतदाता सूची से मैपिंग पूरी होने के बाद राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को वर्तमान प्रक्रिया में कोई दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे। इन मतदाताओं को केवल प्री फिल्ड गणना फॉर्म और रंगीन फोटो देना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने गुमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के क्रियाकलापों की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज जिला स्तरीय नारकोटिक समन्वय समिति की बैठक की। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए पांकी, मनातू और छतरपुर सहित कई थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। रांची कल से 2 बड़े खेल आयोजनों के लिए तैयार है। खेलगांव में कल से द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो रहा है। इसके साथ ही कल से ही खेलगांव में 5 दिवसीय 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप भी शुरू हो रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही अपने मनपसंद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आपकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।
1: बिल्कुल दोस्तों, अपने ठंडे ठंडे ड्रिंक के साथ रेडियो के करीब आ जाइए और कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाइए। हम आपके साथ बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करेंगे और कुछ मज़ेदार गीतों को भी एंजॉय करेंगे।
0: जी हाँ दोस्तों, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त सना
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका।
0: हम दोनों की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए सोचिए, एक बेटा जो अपने गांव से दूर किसी बड़े शहर में नौकरी कर रहा है, एक पिता जो विदेश में रहकर दिन रात मेहनत कर रहा है, या एक बेटी जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर रह रही है। भले ही ये लोग अपने परिवार से दूर हो, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने घर के साथ जुड़ा रहता है।
1: बिल्कुल सना, और जब महीने के आखिर में उनकी कमाई का एक हिस्सा घर पहुंचता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं होते, उसमें छुपी होती है मेहनत, जिम्मेदारी, त्याग और अपने परिवार के लिए खूब सारा प्यार। दोस्तों, आज 16 जून है और पूरी दुनिया आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मना रही है।
0: श्रोताओं, फैमिली रेमिटेंसेस एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज़मर्रा की बातचीत में शायद कम सुनते हैं, लेकिन इसका असर लाखों करोड़ों परिवारों की ज़िंदगी में दिखाई देते हैं।
1: हाँ सना, जब कोई व्यक्ति अपने घर से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने परिवार को भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। ये पैसा परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, घर के खर्चे और भविष्य की योजनाएं में मदद करता है।
0: बिल्कुल प्रियंका, लेकिन दोस्तों अगर हम गौर करें तो ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, ये उस विश्वास का प्रतीक है जो परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। दूरी चाहे कितनी भी हो, रिश्तों की डोर हमेशा बनी रहती है।
1: सही कहा सना, आज के समय में ऐसे लाखों लोग हैं जो अपने घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं। कई लोग दूसरे राज्य में तो कई तो दूसरे देशों में भी। वो अपने परिवार के साथ हर त्यौहार नहीं मना पाते, वो हर खुशी हर मुश्किल में मौजूद नहीं रह पाते, लेकिन उनकी मेहनत का फल हर महीने परिवार तक पहुँचता रहता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को विशेष महत्व दिया है। और दोस्तों, इसका उद्देश्य उन करोड़ों लोगों को योगदान है जो दूर रहकर भी अपने परिवार की खुशियों के लिए लगातार मेहनत करते आ रहे हैं।
1: और सना, तुम्हें पता है आज के समय में टेक्नोलॉजी ने भी इस काम को काफ़ी आसान बना दिया है।
0: बिल्कुल प्रियंका,
1: पहले पैसे भेजने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब नेट बैंकिंग, UPI और डिजिटल पेमेंट सिस्टम की मदद से ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी और सुविधाजनक से हो गई है।
0: लेकिन दोस्तों, इस दिन का महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये हमें परिवार के महत्व की भी याद दिलाता है। परिवार वह ताकत है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाहे हम कहीं भी रहे, परिवार से जुड़ाव हमेशा बना रहता है।
1: हाँ, और दोस्तों, कई बार हम सिर्फ ये देखते हैं कि पैसे घर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, संघर्ष और त्याग नहीं समझ पाते। घर से दूर रहना आसान नहीं होता है। अपने प्रियजनों से दूर रहकर काम करना, नई जगह पर खुद को संभालना और फिर भी परिवार की जिम्मेदारियां निभाना वास्तव में सराहनीय है।
0: इसीलिए आज का दिन उन सभी लोगों को धन्यवाद कहने का दिन है जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत न केवल उनके परिवार बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।
1: बिल्कुल सना, इसीलिए दोस्तों हमें इस दिन पर उन सभी लोगों के प्रयासों और समर्पणों को सलाम करना चाहिए जो दूरी के बावजूद अपने परिवार के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं।
0: दोस्तों, परिवार के लिए दूर रहकर मेहनत करने वाले लोग हमें ये सिखाते हैं कि

0: जिम्मेदारियां निभाने के लिए कई बार अपनी सुविधाओं और आराम को पीछे छोड़ना पड़ता है।
1: हाँ सना, पर दोस्तों जब हम अपने सपनों, लक्ष्य या जिम्मेदारियों के लिए उस आरामदायक दायरे से बाहर निकलते हैं तो वहीं से शुरू होती है हमारी असली ग्रोथ।
0: बिल्कुल, तो आइए अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हर उम्र के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और वो है कंफर्ट जोन से बाहर आना क्यों जरूरी है।
1: सना, कंफर्ट जोन में रहना बुरा नहीं है, लेकिन हमेशा वहीं रह जाना हमारी प्रगति को रोक सकता है, क्योंकि कई नई चीजें सीखना, आगे बढ़ना, खुद को बेहतर बनाने के लिए हमें कभी कभी अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलना पड़ता है।
0: बिल्कुल, सोचिए अगर एक छात्र मंच पर बोलने से डर रहा है तो उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा। दोस्तों, अगर कोई नई स्किल सीखने से घबराए तो वह आगे कैसे बढ़ेगा।
1: इसीलिए हर छोटा कदम हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सोचते हैं और उससे कई ज़्यादा करने की क्षमता रखते हैं।
0: हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम सिर्फ सफल होना नहीं सीखते बल्कि मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना भी सीख जाते हैं।
1: हाँ, और आज के युवाओं के लिए ये विषय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का समय बदल रहा है। नई स्किल सीखना, टेक्नोलॉजी को समझना और खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी हो गया है।
0: हाँ, और ये सब तभी संभव है दोस्तों जब हम अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलने की हिम्मत करें। याद रखिए, ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ बहुत कम चल पाते हैं।
1: इसीलिए कभी कभी कंफर्ट जोन हमें इतना आरामदायक लगने लगता है कि हमें बदलने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे वही आराम हमारी ग्रोथ को रोकने लगता है।
0: दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर आने का ये मतलब नहीं कि अचानक बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया जाए। छोटे छोटे कदम भी काफ़ी होते हैं, जैसे रोज़ कुछ नया सीखना या उस काम को करना जिससे आपको थोड़ा बहुत डर महसूस होता है।
1: तो दोस्तों, अगर आप भी लंबे समय से किसी सपने को सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है, तो शायद आज सही समय है कि पहला कदम उठाइए, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियाँ अक्सर वहीं से शुरू होती हैं जहाँ हमारा कंफर्ट जोन खत्म होता है।
0: बिल्कुल प्रियंका, दोस्तों याद रखिए, अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता आया हो। लेकिन अगर आप कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं तो नई मंजिल, नए अवसर और नए अनुभव आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
4: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।

0: भाइयों बहनों जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार।
1: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों आइए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर जहां 16 जून की तारीख ने कई यादगार घटनाओं को जन्म दिया है।
4: बिल्कुल, 16 जून 1903 को हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी और आम लोगों के लिए कार्स को सुलभ बनाया।
3: इसी के साथ 1950 में बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन दा का जन्म हुआ था।
4: और दोस्तों 1963 को सोवियत अंतरिक्ष यात्री वैलेंटिना ट्रेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला बनी। उन्होंने वोस्टोक 6 यान में उड़ान भर के इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि विज्ञान और महिला सशक्तिकरण दोनों के लिए एक मील का पत्थर बना।
3: बिल्कुल दोस्तों, साथ ही 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी। उन्होंने अपने पहले मिशन के दौरान कुल 195 डे अंतरिक्ष में बिताए, जो उस समय तक किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्रा द्वारा अंतरिक्ष में बिताया गया सबसे लंबा समय था।
4: सना, आज हमने फैमिली रेमिटेंस और कंफर्ट जोन के बारे में बात किया, तो हमारा अमेजिंग फैक्ट भी उसी से मिलता जुलता है।
3: बिल्कुल दोस्तों, तो जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति दिन भर में लगभग 35,000 फैसले ले सकता है?
4: लेकिन सना, इसमें से ज्यादातर फैसले हम आदतों के आधार पर लेते हैं, इसलिए जब हम कोई नई चीज करते हैं तो हमारा दिमाग अधिक सक्रिय हो जाता है। यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना दिमाग की एक एक्सरसाइज होती है।
3: बिल्कुल दोस्तों, साथ ही वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी नई आदत को जीवन का हिस्सा बनाने में लगभग 66 डेज लग सकते हैं।
4: इसीलिए दोस्तों, अगर शुरुआत में कोई काम मुश्किल लगे तो हार मत मानिए, आपका दिमाग अभी उसे सीख रहा है।
3: बिल्कुल दोस्तों, और दोस्तों एक शोध में पाया गया है कि जो परिवार साथ में बैठकर भोजन करते हैं उनमें आपसी संवाद और भरोसा अधिक मजबूत रहता है।
4: इसीलिए शायद हमारी दादी नानियां हमेशा बोलती हैं कि साथ में बैठकर खाना।
3: बिल्कुल दोस्तों,
4: और दोस्तों हमारा दिमाग अनजान चीजों को अक्सर खतरा समझता है, चाहे वो वास्तव में खतरा ना हो। यही कारण है कि कई बार नई जगह, नया काम या नए लोगों से मिलने में हमें घबराहट होती है।
3: दोस्तों दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक समान बात पाई गई है, उन्होंने अपने जीवन में कम से कम एक बार ऐसा कदम जरूर उठाया है जो उन्हें डराता था।
4: मतलब दोस्तों, सफलता अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर आपका इंतजार कर रही होती है।
3: दोस्तों साथ ही हंसी सकारात्मक होती है, ये तो हम सब जानते हैं। जब परिवार का एक सदस्य हंसता है तो दूसरे लोगों के हंसने की संभावना और भी बढ़ जाती है।
4: इसीलिए घर में मुस्कान सिर्फ एक चेहरे पर नहीं पूरे माहौल पर असर डालती है।
3: बिल्कुल दोस्तों साथ ही एक तितली अगर अपने कोकन से बाहर निकलने के संघर्ष से बच जाए तो उसके पंख पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते।
4: इसीलिए दोस्तों, संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है, ठीक उसी तरह कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही हमें उड़ना सिखाता है। तो सना, अमेजिंग फैक्ट्स तो बहुत अच्छे से हो गए, क्यों ना म्यूजिकल ब्रेक भी हो जाए।
3: बिल्कुल दोस्तों, तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम से यही सीख मिलती है कि परिवार हमें जड़ें देता है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमें पंख देता है। इसीलिए परिवार से जुड़े रहिए, पंखों से उड़ते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का असली मज़ा वही है,
1: बिल्कुल दोस्तों,
0: जहाँ सीखना, बढ़ना और अपने को साथ कभी खत्म नहीं होता। और दीजिए अपनी दोस्त प्रियंका
1: और सना को
0: इजाज़त।
1: नमस्कार।

0: आज की श्रमिक लोक कार्यक्रम में मैं जया आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को नमस्कार जोहार। और आज हमारे साथ है दीपा। नमस्कार दीपा, आपको भी
1: नमस्कार जया, और आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जया, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम के विषय में थोड़ी जानकारी दे दें।
0: जरूर, आज हम बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी, साथ ही रेमिटेंस से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की चर्चा करेंगे और कपड़ा उद्योग के बदलावों की बातों के साथ साथ याद करेंगे प्रसिद्ध कलाकार संगीत शिल्पी हेमंत मुखर्जी के संगीतमय जीवन यात्रा को।
1: यानी जानकारियों और मनोरंजन का पूरा पिटारा लेकर आई हैं आप।
0: बिल्कुल,
1: आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में मन का सुकून कहीं खो सा गया है। तनाव, चिंता, काम का दबाव और जिम्मेदारियों के कारण लोग मानसिक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं और ऐसे में जीवन का संतुलन असंतुलित हो रहा है। इस परिस्थिति में योग एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी उपाय बनकर सामने आया है।
0: और योग को केवल शारीरिक व्यायाम समझना भूल है। योग का दायरा इससे कहीं अधिक बड़ा है दीपा, क्योंकि योग शरीर, मन और भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। नियमित योग करने से मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। खासकर श्रमिक साथियों के लिए योग बहुत ही लाभकारी है। लंबे समय तक काम करने, शारीरिक थकान और मानसिक दबाव के बीच योग ऊर्जा और सुकून देता है।
1: बिल्कुल जया, प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का योग जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके लिए कुछ सरल अभ्यास किए जा सकते हैं, जैसे ताड़ासन, वज्र आसन, भुजंगासन, प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और गहरी सांस लेने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है।
0: और आजकल भावनात्मक स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। कई लोग इससे जुड़ी समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। इन समस्याओं को दूर करने में योग प्रभावी होता है। योग भावनाओं को समझने और संतुलित करने की क्षमता देता है, या आत्मविश्वास बढ़ाता है और धैर्य को विकसित करता है।
1: स्वस्थ जीवन के लिए मन का स्वस्थ होना जरूरी है। मन का सुकून ही जीवन का वास्तविक संतुलन है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।
0: प्रसन्न तो हमें हर दिन होना चाहिए। और कार्यक्रम के अगले विषय की ओर भी हम बढ़ते हैं, और आज हम अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि आज 16 जून को यह दिवस मनाया जाता है और यह दिवस प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जो अपनी आय का एक हिस्सा अपने परिवार के लिए घर भेजते हैं।
1: और वो जो हिस्सा घर भेजते हैं ना, यही रेमिटेंस कहलाता है। और इस हिस्सा का बहुत बड़ा प्रभाव जिस जगह वो पैसा भेजते हैं वहाँ की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। प्रवासी श्रमिक देश के विकास यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। अपने स्थायी घर से दूर रहकर रोजगार प्राप्त करते हैं और अपनी आय का एक भाग परिवार की भरण पोषण के लिए भेजते हैं। और जैसे कि हमने पहले ही बात की, यही से ही रेमिटेंस कहते हैं।
0: और जब प्रवासी श्रमिक पैसे भेजते हैं ना, तो उनके परिवार की ज़रूरतें पूरी होती हैं। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, घरों की मरम्मत और छोटे व्यवसाय में निवेश संभव होता है। ये गतिविधियाँ गाँव की आर्थिक विकास को गति देती है।
1: बिल्कुल, इनसे स्थानीय दुकानदार, छोटे उद्यमियों को लाभ होता है। गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ती है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।
0: और वर्तमान समय में डिजिटल माध्यमों से भी रेमिटेंस को आसान और सुरक्षित बना दिया गया है। डिजिटल माध्यमों के प्रयोग के लिए वित्तीय जागरूकता भी बेहद जरूरी है, और सामाजिक सुरक्षा वित्तीय समावेशन के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
1: और जया बातें तो हम और भी करेंगे, लेकिन अब अभी समय है हमारे श्रमिक साथियों के मनोरंजन का।
0: हाँ हाँ, और हमें पता होता है कि हमारे जो श्रमिक साथी है काफ़ी थक हार के घर पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उन्हें जो भी ज़रूरी जो भी जानकारी देते हैं उसके साथ साथ उनका मनोरंजन भी हम करवाएं। तो भाई मनोरंजन का मतलब है कि हम एक खूबसूरत संगीत अपने साथियों को सुनाते हैं।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
7: भाइयों बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
6: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडिया फार्मर्स देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: आप सुन रहे कार्यक्रम श्रमिक लोग जया और दीपा के साथ। दीपा, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अक्सर आप देखती होंगी ना कि हमारे जो श्रमिक साथी है बाहर काम पे हर दिन निकलते हैं और बहुत ऐसे जगह में भी काम करते हैं जिसमें बहुत सारे धूलों में भी काम करना पड़ता है या डस्ट वाले जगह में। तो ऐसी जगह में ना श्रमिकों के ना मतलब जो बोलते हैं स्किन वाले प्रॉब्लम बहुत अधिक होने के चांसेस होते हैं। और अभी जैसा कि मौसम अभी मानसून में या बारिश के मौसम में भी ना त्वचा संबंधी बहुत सारी आप बीमारी को देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को त्वचा संबंधी बीमारी होने का डर होता है। तो क्यों ना हम अपने श्रमिक साथियों को एक भेंटवार्ता सुनवाते हैं। और श्रमिक साथियों, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भेंटवार्ता श्रमिकों के लिए त्वचा रोगों से बचाव के उपाय। और भेंटवार्ताकारी डॉक्टर श्वेता कमल और इनसे बातचीत कर रही हैं दीपा घोष।
9: हमारे जो श्रमिक साथी हैं वो कई प्रकार का काम करते हैं और इस काम करने के दौरान उन्हें बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इन्हीं में से एक परेशानी है त्वचा संबंधी परेशानी। आइए आज हम उनके त्वचा संबंधी परेशानियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कमल से और उनसे जानते हैं कि त्वचा संबंधी बीमारियों के क्या कारण होते हैं और किस प्रकार हम उनसे बचाव कर सकते हैं। नमस्कार
10: जी, मैं डॉक्टर श्वेता कोमल, अभी डर्मेटोलॉजिस्ट।
9: सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि श्रमिक साथियों को जो त्वचा संबंधी जो बीमारी होती है या जो चर्म रोग होते हैं उनके कारण क्या हो सकते हैं?
10: देखिए, चर्म रोग होने के तो कई कारण हो सकते हैं, पर चूंकि हम आज श्रमिकों के बारे में बात कर रहे हैं तो उन पर त्वचा संबंधी समस्याओं के कारण हम जानते हैं। तो सबसे पहले कारणों में है कि उनके वर्क प्लेस यानी जो काम करने की जगह है वहाँ की दशा कैसी है। जैसे जगह हवादार है होनी चाहिए, ज्यादा गर्म या ठंडा भी नहीं होना चाहिए। श्रमिकों को अपने काम के अनुसार सेफ्टी के लिए वैसी पोशाक, कमरे, कपड़े, चश्मे, ग्लव्स या जूते भी उपलब्ध करवाने चाहिए। अगर ये सुविधाएं श्रमिकों के काम करने की जगह पर नहीं उपलब्ध है तो वहाँ पर काम करने वाले श्रमिकों को त्वचा संबंधी समस्याएं अधिक होती है। फिर उनके वर्क प्लेस या फैक्ट्रीज में प्रयोग होने वाले केमिकल से, मशीन्स में प्रयोग होने वाले ग्रीस या ऑयल से, निर्माण कार्य में जो जुड़े हुए हैं उन लोग को सीमेंट, धूल, मिट्टी, प्रदूषण से, और जो खेती से जुड़े हुए हैं लोग उन लोग को खाद, मिट्टी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से एलर्जी हो सकती है। जो कि त्वचा में रैशेज, दाने, इरिदमा या लाल चकत्ते के रूप में प्रकट हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटल केमिकल बर्न्स भी होते हैं, जैसे केमिकल से उनकी त्वचा में अगर वो गिर जाए तो उनकी त्वचा जल जाती है। तो भी यह कारण। फिर अगर कारखानों में काम करने वाली जगह पर अगर गर्मी बहुत है या उमस बहुत है तो शरीर पर दाने होते हैं यानी मीलिया जो हम कहते हैं, या फंगल इन्फेक्शन भी, जैसे जिसको आम भाषा में लोग दाद या दिनाए कहते हैं, वो भी हो सकते हैं। फिर गर्म और तेल जैसी पदार्थों के जैसे कोल टार या ग्रीस के साथ काम करने पर अत्यधिक मुहासे भी हो की समस्या भी हो सकती है, जिसको हम क्लोरेक्ने कहते हैं।
9: ये जो कारण है इनसे चर्म रोग हो सकता है।
10: हाँ, बालों और नाखूनों की भी समस्या हो सकती है। बाल झड़ते हैं, रूसी होते हैं, बालों का समय सफेद भी होता है या नाखून भी टूट जाते हैं। कई बार केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से शरीर में सफेद दाग भी होते हैं जिसको हम केमिकल ल्यूकोडर्मा कहते हैं। शरीर पे मोटापन या चमड़ा का मोटापन हो जाना जिसके लाइकनिफिकेशन या कालापन भी हो सकता है, जिनसे खुजली और एक्जिमा जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट यही सारे मुख्य कारण है चर्म रोग होने के, जो फैक्ट्री में काम करने वाले खासकर हमारे श्रमिक भाइयों के लिए।
9: जी, अक्सर जब चर्म रोग शुरू होते हैं तो हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं या फिर इसकी ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं या इसे हम साधारण खुजली या फिर इस तरह की चीजें समझ लेते हैं। तो कैसे हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये चर्म रोग ही है या फिर साधारण से जो त्वचा संबंधी जो बीमारी होती है, खुजली, रैशेज होते हैं, वो है? इसकी पहचान करने का क्या तरीका है?
10: जब भी देखिए शरीर पर लाल दाने, खुजली, चकत्ते या त्वचा का मोटा होना, सफेद दाग, कालापन, रूखापन या अत्यधिक मुहासे हो, खास करके शरीर के उन जगहों पर जो कि एक्सपोज या खुले रहते हो, जैसे जो कपड़े से ढके हुए नहीं रहते हैं, जो हमेशा काम करते वक्त आपके हवा से, प्रदूषण से,
9: वातावरण से जो संपर्क में आते हैं,
10: उन जगहों पर हो, जैसे कि चेहरा, हाथ, पैर, गला, गर्दन, तो ये समझ लेना कि चाहिए कि उन्हें त्वचा संबंधी समस्या हो रही है और उस स्थिति में उन्हें तुरंत कोई एक अच्छे चर्म रोग विशेषज्ञ से सलाह ले लेनी चाहिए।
9: जी, त्वचा संबंधी बीमारी होने पर हमें किसी भी तरह से कोई घरेलू नुस्खा नहीं अपनाना चाहिए।
10: ये एक बहुत सही बात कहा आपने।
9: अक्सर हम लोग देखते हैं कि उस पर हम लोग कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह लगा लेते हैं। आप बताइए कि ऐसी समस्या होने पर क्या करना चाहिए।
10: जैसे कि सबसे पहली बात तो जैसा आपने कहा कि हमें कभी भी अपने से उस पर सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए कि अपने से कुछ भी दवाई लगा लिए या फिर कोई जड़ी बूटी या फिर तेल, फिटकरी, ये सब चीज नहीं लगाना चाहिए कभी भी। दूसरी चीज है कि हमेशा अच्छे से साफ रखना चाहिए, जो आपके त्वचा है उससे उसको साफ रखना चाहिए हमेशा। जब भी आप काम से आए तो साबुन से अच्छे से चेहरा, हाथ, पैर, मुंह धोए, उसके बाद फिर या अगर जरूरत पड़े तो नहा भी ले, क्योंकि कई बार लोगों में ये गलत धारणा रहती है कि साबुन लगाएंगे तो फिर वो जो रोग है वो चर्म रोग बढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है, इसलिए साबुन लगाना चाहिए। पर क्या है कि ज्यादा डेटफिटकरी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये त्वचा को अत्यधिक ड्राई कर देती है जिसमें खुजली और दानों की समस्या और अधिक हो जाएगी। तो इस ड्राइनेस को कम करने के लिए हमेशा शरीर पे अच्छा से नारियल तेल की मालिश करनी चाहिए एक बार जब भी नहाए उसके बाद। त्वचा रोगों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि है तो नहीं छोड़ दो, बाद में इसका इलाज करवा लेंगे या फिर घर का कोई भी मलहम है तो लगा ले, तो ये सब नहीं करना चाहिए और हमेशा एक अच्छे चर्म रोग विशेषज्ञ से सही परामर्श लेकर उन पर अमल करना चाहिए।
9: आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि त्वचा रोग के लिए भी क्या किसी विशेष प्रकार के खान पान की जरूरत होती है।
10: नहीं, खान पान से हमारे तरफ से कोई विशेष परहेज नहीं है, सभी तरह का पौष्टिक आहार लें। हाँ, पर अगर आपको लगे कि कोई चीज खाने से आपको खुजली या चकत्ते ज्यादा हो रहे हैं या ज्यादा आपकी त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ रही है तो उन पदार्थों से आप परहेज कर सकते हैं। या आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में जो सामान नहीं खाना चाहिए जैसे अत्यधिक चीनी, चावल, ये सब चीजों से आप परहेज कर सकते हैं।
9: फिर अगर चर्म रोग है तो इसमें खान पान हमें पौष्टिक रखना चाहिए और अपना जो सामान्य खान पान है वो हम खा सकते हैं।
10: हाँ,
9: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे श्रमिक बंधु हैं वो अलग अलग तरह का काम करते हैं, तो उनका ध्यान रखना चाहिए।
10: देखिए, जिन्हें भी त्वचा संबंधी समस्या है, सबसे पहली बात तो वही है कि जब भी वे काम पे अच्छे से साफ करके धूप में सुखाना चाहिए और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेनी चाहिए चर्म रोग विशेषज्ञ के पास और अपने से सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। धूप में भी काम करते वक्त शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। फिर घर या काम करने वाली जगह भी हवादार एवं खुली वेंटिलेशन वाली होनी चाहिए। यही सब आप छोटी छोटी बातों से अपनी त्वचा का सही देखभाल कर सकते हैं। कई बार दुकान में ऐसी मिलने वाली दवाइयां अपने से नहीं यूज करना चाहिए, जब तक डॉक्टर का आपको परामर्श ना हो तब तक आप ना यूज करें, अपने से कोई भी सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें।
9: जी, आपने बहुत अच्छी, कोई भी हो चाहे वो त्वचा संबंधी हो या फिर कोई और भी हो, हमें खुद से कोई किसी तरह का इलाज नहीं करना चाहिए, इलाज हमेशा विशेषज्ञ के परामर्श से ही करना चाहिए जिससे कि हमें उसका सही परिणाम मिले। आपसे हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: सच में बहुत अच्छी जानकारी। श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता श्रमिकों के लिए त्वचा रोगों से बचाव के उपाय। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर श्वेता कमल और भेंटकर्ता दीपा घोष। और अब थोड़ी सी जानकारी हम अपने श्रोता मित्रों को दे देते हैं संगीतकार हेमंत मुखर्जी के बारे में, क्योंकि आज उनकी जयंती है। दीपा,
11: जी साथियों, हेमंत मुखर्जी का सफर बंगाल की माटी से निकलकर भारतीय संगीत के फलक पर छा जाने की एक अद्भुत दास्तान है। उनकी मखमली शांत और गहरी आवाज में रविंद्र संगीत की सादगी और बॉलीवुड के गीतों का जादू इस तरह घुला था कि उन्होंने लगभग 5 दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया।
8: और हेमंत मुखर्जी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर संगीत को अपना जीवन बनाया। उनकी जादुई और भारी आवाज को भगवान की आवाज भी कहा जाता था दीपा। और मैं आपको बता दूं कि सन 1950 में फिल्म आनंद मठ में संगीत देने के लिए मुंबई आए। इसमें लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत और उनका संगीतबद्ध गीत वंदे मातरम आज भी देश में सबसे लोकप्रिय गीतों में शामिल है।
11: सन 1954 में फिल्म नागिन के संगीत ने उन्हें अपार सफलता दिलाई और फिल्म जागृति में उनके संगीतबद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं और दे दी हमें आज़ादी, इन गीतों ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य आकर्षण बनने लगे उनके गाए ये गीत।
8: और साथ ही बाद में हेमंत दा ने गीतांजलि प्रोडक्शन में खुद की फिल्म निर्माण कंपनी बनाई, जिनके बैनर तले 20 साल बाद कोहरा और खामोशी जैसी आइकॉनिक सस्पेंस और मेलोडीज फिल्में बनाई। और दीपा, रविंद्र संगीत की सादगी से लेकर बॉलीवुड के ग्लैमर तक हेमंत दा का सफर इस बात का प्रमाण है कि सच्चा संगीत हमेशा दिलों को छूता है। उनकी विरासत आज भी भारतीय संगीत में जीवित है।
11: तो श्रोता मित्रों, आज उनकी जयंती पर हम उन्हें याद करते हैं और उनकी मखमली आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: और इस प्यारे से गीत के साथ ही समय हो गया है अपने श्रमिक साथियों से विदा लेने का। तो आज के लिए अपनी दोस्त दीपा
1: और जया को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोग, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित अंगदान और उत्तक दान कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने अंगदान को मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक बताते हुए इसके प्रति व्यापक जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिकी कंपनियों ने झारखंड में रणनीतिक महत्व के दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन में गहरी रुचि दिखाई है। इस सिलसिले में आज रांची में मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अमेरिकी काउंसलेट जनरल कैली जाइल डियाज के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। गढ़वा जिले में हड़ताल पर गए सभी मनरेगा कर्मियों को उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू ने 24 घंटे के भीतर कार्यस्थल पर लौटने का निर्देश दिया है। डीडीसी ने बताया कि मार्च से जारी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण ग्रामीण रोजगार सृजन का लक्ष्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र स्थित गैलेक्सी इनगोट प्लांट में आज दोपहर फार्नेस भट्टी में विस्फोट होने से दो कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस के अनुसार बॉयलर में लीकेज के कारण अचानक यह धमाका हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खूंटी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 स्थित उर्दू स्कूल में आज एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी और उपाध्यक्ष शशांक शेखर ने किया। आज के शिविर में कुल 11 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। राज्य में मानसून का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिनों तक इसके कुछ कमजोर रहने के आसार जताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रशांत महासागर में अलनीनो की सक्रियता से खेती किसानी प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: जैविक खेती अपनाओ और खेती बाड़ी के बचाओ।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवैया सो भाई बहन मन के जुगनी बहन दन से जोहार और मनोज भाई और के भी हमर दन से जोहार।
0: सबके रोर मन का संगे मनोज का जोहार, जुगनी में रोर का जोहार, का हाल चाल है?
1: एकदम नगदे नगद है। देख रौर बट्टे कैसन है, खेती बाड़ी मन कैसन हुआ थे, देखो बेरा बेरा से बरखा पानी मन हुआ थे, रौर बट्टे खेती बाड़ी कैसन है।
0: सब ठीक है ठाक है बहन। देखो ने खान तो आइस के देखो रोद करला कर ठे गर्मी बुझा लखे नहीं, लेकिन तनी दिन पहले कहब तो मौसम ठीक रहे और पानी बरखा आए रहे, तो तनी खेत बाड़ी में ठीक है, काम करे के मन लगे, धूप में तनी काम करे में तनी दिक्कत बुझा ले, लेकिन क्या करब, खेती बाड़ी है, काम तो करके है कि
1: एकदम
0: नहीं?
1: एकदम देखो खेती बाड़ी हमरे लगा ही, तो खेती बाड़ी के जतन करे के। और देखो बरखा पानी का दिन है, और देखो आज के मौसम बदल जाएला, बरखा कखने बरखा करेला कखने धूप करेला, तो हमरे के खेती बाड़ी लगा ही तो हमरे के मौसम पूर्वानुमान से हमरे के लाभ लेवे के है कि नहीं।
0: सही बात। देखो नहीं आजकल झारखंड कर क्षेत्र में कहब तो ठंड का बहुत गिरेला आजकल, देखो जब देखो तो बादल में गरजते रहेला, तो हमरे मन के जब खेत बाड़ी जात ही नहीं, तो इस सब चीज़ का ध्यान रखे कि भाई लोहा कर डंटा कर छाता का प्रयोग कर रखे, गाछ बिरिछ के नीचे जाए के रखे, मैंने ऐसा चीज़ के हमरे मन के बाँचे कर अपने आप के सुरक्षित खेती बाड़ी करे के है कि नहीं?
1: एकदम आपदा प्रबंधन जो है हमरे के ऊपर से सुरक्षित रहे के काले के मौसम कखने बरखा पानी होवेला तो ठंड का मन गिरेला, तो हमरे के अगर मौसम खराब करत है तो हमरे के खेत बाड़ी से हमरे के हट जाए चाहिए, तने सुरक्षित जगह में जाए चाहिए है कि नहीं। जहाँ हमरे सुरक्षित रह सकेला वैसा जगह में हमरे के जाए चाहिए और अपने के सुरक्षित रखे के।
0: तो भाई देखो जानकारी कर बात करीला, लेकिन कहे चाहते कि एक कार्यक्रम कर प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और एक बार देखो आज कर जानकारी कर बात कहब तो सबसे पहले हमरे मन के जानकारी देवे डॉक्टर पोलमी रे, जे कि बतावे कि खेती में लागत कैसे घटाएं मुनाफा कैसे बढ़ाएं। एक बाद कृषि विकास गीत में सुनो देवदास विश्वकर्मा और संगीवन कर गावल गीत, और नौ और नौ फसिल में आज कर किसान है विक्की कुमार, जे कि मशरूम उत्पादक किसान है। भाई अब देखो और मौसम कर बात कर रहे थे, तो मौसम कर जाने के भी जरूरी है कि अखन कर मौसम का चलते है कि नहीं?
1: तो चलो जानकारी करेला मौसम कर। मौसम विज्ञान विभाग बटले मिलल जानकारी कर मुताबिक राज्य में मौसम कर मिजाज बदले कर चलते राजधानी रांची में उमस कर संगे गर्मी कर एहसास हो लग रहे, और आज का तापमान इधर आकल गलत। राजधानी रांची कर अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर कर अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री। डाल्टनगंज कर अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री। वही तर देवघर कर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री। गढ़वा कर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आकल गए लग रहे। तो ये रहे आज कर मौसम कर खबर।
0: सही बात है। देखो मौसम के हमरे मन बेरा बेरा से जानकारी देते रहेला, और संगे संगे पेपर के माध्यम से कहब चाहे और न्यूज़ कर माध्यम से कहब, तो हमरे मन के मौसम कर जानकारी होते रहेला, इसके अनुसार से हमरे के खेती बाड़ी करे के है कि नहीं? और देखो भाई बहन हमरे मन खेती बाड़ी करेला, लेकिन खेती बाड़ी में हमरे मन के जो लागत है नहीं ओके कम करे के है, और मुनाफा के हमरे मन के बढ़ाए के है। बहुत से किसान मन के ऐसा नहीं कि खेती बाड़ी कर तौर तरीके के बारे में नहीं जाने ना, तो लागत बगरा बढ़ जाएगा है कि नहीं, और मुनाफा भी कम होएला।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: हमरे के जाने के कि लागत के कम कैसे करे के है और मुनाफा के कैसे बढ़ाव है कि नहीं, तो इसके बारे में हमरे के जानकारी देते हैं डॉक्टर पोलमी रे।
1: और इनकर से गोठिया है कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: किसान साथियों नमस्कार,

0: आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर किसान की चिंता से जुड़ा हुआ है। खेती में बीज, खाद, दवा, मजदूरी और सिंचाई की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसानों के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि बढ़ती लागत के बीच खेती को लाभकारी कैसे बनाया जाए। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर पौलमी रे, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, सहायक प्राध्यापक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची। डॉक्टर पौलमी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मैडम। आजकल किसान अक्सर कहते हैं कि खेती में लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन फसलों में दाम उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान सबसे पहले किस बात पर ध्यान दें?
1: जी देखिए, खेती में केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन से किसान को कितना लाभ मिल रहा है।
0: जी।
1: कई बार किसान अधिक उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन लागत इतनी बढ़ जाती है कि वास्तविक मुनाफा बहुत ही कम रह जाता है। इसीलिए खेती में सफलता का अर्थ केवल अधिक उपज नहीं, बल्कि अधिक शुद्ध आय होना चाहिए।
0: जी, लेकिन किसान यह कैसे समझ सकता है कि उसकी लागत कहाँ अधिक हो रही है?
1: जी, इसके लिए जो सबसे पहला कदम है वो है खर्च का हिसाब रखना। ज़्यादातर किसान बीज, खाद, दवा, मजदूरी और सिंचाई पर होने वाले खर्च को अलग अलग नहीं लिखते हैं। यदि किसान एक साधारण सा डायरी भी मेंटेन करे, सभी खर्चों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दे, तो साल के अंत में उन्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि सबसे अधिक खर्च किस चीज में हो रहा है। जब समस्या दिखाई देती है तभी उसका समाधान जा खोज सकता है।
0: जी जी, तो अक्सर देखा जाता है कि किसान अधिक उत्पादन की आशा में खाद और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करते हैं, तो क्या यह हमेशा लाभकारी होता है?
1: नहीं, हमेशा नहीं। मैं इसे एक सरल उदाहरण से समझाना चाहूंगी। मान लीजिए आपने फसल पर 1,000 रुपए अतिरिक्त खर्चा किया, लेकिन उससे केवल 500 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिला है। ऐसी स्थिति में आपका खर्च बढ़ा लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ा। इसीलिए जरूरत से अधिक खाद या दवा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतना ही उपयोग करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभकारी होता है।
0: जी, तो आजकल कृषि यंत्रों का उपयोग भी बढ़ रहा है, क्या प्रत्येक किसान के लिए ट्रैक्टर या अन्य मशीन खरीदना उचित है?
1: देखिए, हर स्थिति में नहीं, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए कई बार मशीन खरीदने की तुलना में किराए पर लेना अधिक लाभदायक होता है। मशीन खरीदने के बाद उसकी मरम्मत, मेंटेनेंस, डीजल और अन्य खर्च भी बहुत जुड़ जाता है। इसीलिए किसी भी बड़े निवेश से पहले ये सोचना आवश्यक है कि उससे वास्तविक लाभ कितना होगा।
0: एक बात और जो किसान अक्सर पूछते हैं वह यह है कि खेती के लिए लिया गया ऋण कहीं अतिरिक्त बोझ तो नहीं बन जाता?
1: ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋण स्वयं समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब ऋण का सही उपयोग नहीं किया जाता। यदि किसान ऋण का उपयोग बीज, सिंचाई, पशुपालन या अन्य उत्पादक गतिविधियों में करता है तो वही ऋण आय बढ़ाने का साधन बन सकता है। लेकिन यदि ऋण का उपयोग उत्पादन बढ़ाने वाले कार्यों में नहीं किया जाता तो जो इंटरेस्ट है उसका बोझ बढ़ सकता है। इसीलिए ऋण को खर्च नहीं बल्कि निवेश की तरह एक देखना चाहिए।
0: मैडम, आजकल मौसम भी काफी अनिश्चित हो गया है, क्या इसका भी खेती की लागत पर प्रभाव पड़ता है?
1: जी जी जी बिल्कुल। कभी सूखा, कभी अधिक बरसात और कभी अनियमित मॉनसून के कारण किसानों को लागत बढ़ता जाता है। कई बार क्या होता है, पुनः सोइंग करनी पड़ती है, अतिरिक्त सिंचाई करनी पड़ती है या फसल संरक्षण पर अधिक खर्चा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में केवल एक फसल पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। यदि किसान फसल के साथ पशुपालन, सब्जी उत्पादन

0: लेकिन दूध या अंडा इससे नियमित एक आय मिल सकता है। यही कारण है कि मिश्रित कृषि प्रणाली छोटे किसानों के लिए अधिक लाभदायक मानी जाती है।
1: अभी आपने लागत की बात की, लेकिन कई बार अच्छी फसल होने के बावजूद किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता, इसमें विपणन की क्या भूमिका है?
0: ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसान का लाभ केवल खेत में नहीं बल्कि बाजार में भी तय होती है। यदि किसान ने अच्छी फसल पैदा कर ली लेकिन उसे सही दाम नहीं मिला तो उसका पूरा परिश्रम अपेक्षित लाभ नहीं दे पाएगा। इसीलिए उत्पादन के साथ विपणन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है।
1: जी, तो किसानों को विपणन के क्षेत्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहला जो बात है, किसान को बाजार की मांग को समझना चाहिए। कई बार किसान वही फसल करते हैं जो बहुत सालों से वो करते आ रहे हैं, जबकि बाजार की मांग कुछ और बदल चुकी है। दूसरी बात, कटाई के तुरंत बाद मजबूरी में फसल बेचने से बचना चाहिए। अक्सर कटाई के समय बाजार में कीमत कम हो जाती है फसल का। यदि स्टोरेज या वेयरहाउसिंग का सुविधा उपलब्ध हो तो उचित समय पर बिक्री करके बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।
1: जी, आजकल मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन की भी काफी चर्चा होती है, तो किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह?
0: ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपने बताया अभी, वैल्यू एडिशन। मूल्य संवर्धन का अर्थ है कि किसान आप अपने उत्पाद को थोड़ा और प्रोसेस्ड या प्रक्रियाकृत करके उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, केवल दूध बेचने के बजाय जैसे दही, पनीर या घी बनाकर बेचना। इसी प्रकार इमली, लैक और अन्य वन उत्पाद में भी बहुत सारा मूल्य संवर्धन की अच्छी संभावनाएं है।
1: जी,
0: इससे किसानों को बेहतर आय प्राप्त हो सकता है।
1: जी, तो क्या किसान समूह बनाकर भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने एक बहुत बहुत अच्छी बात की। जब किसान एक अकेले बाजार में जाते हैं तो उनकी नेगोशिएशन की क्षमता बहुत सीमित होती है, लेकिन जब किसान उत्पादक संगठन यानी FPO, सहकारी समिति या समूह के माध्यम से एक साथ खरीद और बिक्री करते हैं तो उन्हें बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समूह के माध्यम से बीज, खाद और अन्य कृषि की इनपुट की खरीद करने पर भी लागत भी बहुत कम हो सकती है।
1: जी, झारखंड के किसानों के लिए आप कौन सी विशेष संभावनाएं देखती हैं?
0: देखिए, झारखंड में दलहन, तिलहन, सब्जी उत्पादन, दूध उत्पादन, लैक, इमली और अन्य वन उत्पादन की अच्छी संभावनाएं है। इसके अलावा धान के बाद खाली रहने वाली भूमि में दलहन और तिलहन की खेती से अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। यदि किसान उत्पादन के साथ प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और बेहतर विपणन पर ध्यान दे तो उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
1: तो अंत में हमारे किसान श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं सभी किसान भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूंगी कि खेती को केवल परंपरा एक रूप में नहीं बल्कि एक उद्यम के रूप में भी देखें। हर निर्णय लेते समय ये विचार करें कि उससे आपकी आय और मुनाफा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखिए, अधिक खर्च करके अधिक उत्पादन करना ही सफलता नहीं है बल्कि समझदारी से खर्च करके अधिक मुनाफा कमाना भी वास्तविक सफलता है। और एक बात, अच्छा किसान वो नहीं जो सबसे अधिक उपज ले बल्कि वह है जो अपनी उपज से सबसे अधिक शुद्ध आय प्राप्त करे।
1: तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि लागत प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, मूल्य संवर्धन और बेहतर विपणन के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी कैसे बनाया जा सकता है। डॉक्टर पॉलमी, आपने इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, जोहार।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडिया देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में
4: व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
5: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
4: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में।
7: तो देखो भाई बहन, बेरा वही चलत है किसान कर, तो आज कर किसान के हैं बताओ।
8: आज कर किसान है बिक्की कुमार, जी की मशरूम उत्पादक किसान है और इनकर से गुठिया है हमरे कर संगी मनोज कुमार।
9: किसान वाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग खेती बाड़ी करते हैं और बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो खेती बाड़ी के अलावा बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे कि अपने आमदनी को बढ़ाते हैं। तो किसान भाइयों, आज आपको एक ऐसे किसान से मिलवाते हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कुछ खास व्यवसाय पे। क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, चलो उन्हीं से जानते हैं। भाई आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
10: नमस्कार सर,
9: अपने बारे में कुछ बताएं, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं।
10: सर मेरा नाम विक्की कुमार है, मैं काके बोलोक के नेवरी विकास गांव के रहने वाला हूँ और मैं सबसे ज़्यादा मशरूम का खेती करता हूँ।
9: अच्छी बात है भाई कि आप मशरूम का खेती बाड़ी करते हैं। भाई आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई थी?
10: हाँ, पढ़ाई लिखाई एक्चुअली मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई कर चुका हूँ, उसके अलावा मशरूम का प्रशिक्षण लिए हुए हैं। मशरूम का प्रशिक्षण लेते हुए और ट्रेनिंग भी हम देते हैं गाँव जाके, और इस खेती को जैसे मशरूम हो जाता है ना, तो इसमें सबका माल को मशरूम को लेके बेचने का भी काम हम ही करते हैं।
9: तो भाई अच्छी बात है, आप मशरूम से जुड़े हुए हैं, तो कितने सालों से जुड़े हैं मशरूम से?
10: हम 10 साल हो गया।
9: 10 साल इस क्षेत्र में आपके लिए प्रेरणा कैसे मिला, कहां से आप सोचे कि भाई क्षेत्र में आना चाहिए मशरूम का क्षेत्र में?
10: एक्चुअली हम एक बार रांची आए थे तो रांची यूनिवर्सिटी गेट के पास बिकते हुए देखे थे, तो उनके बाद हम उस बेचते हुए देखे तो वो पता कि कहां से ये होता है, तो जिस समय हम देखे थे उस समय तो वो दिल्ली से आता था, तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि हम दिल्ली से मंगा पाए, तो उसको थोड़ा सा हम गूगल उगल में सर्च किए, उसके बाद पता चला नहीं प्लांडो में इनका बीज मिलता है, बीज मिलता है, तो बीज को ला के उसके बाद प्रैक्टिकली किए, तो प्रैक्टिकली करने के बाद फर्स्ट टाइम तो नहीं सक्सेसफुल हुए, लेकिन उसी क्रम में प्रक्रिया 1-2-3 बार किए उसके बाद सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद मेरे अंदर आत्मविश्वास हो गया कि मैं अब कर सकता हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं करना स्टार्ट किया, करते करते आज देखिए मैं इसको एक प्रोफेशनल टाइप से वर्क कर रहा हूँ, वर्क करते करते 4-5 आदमी भी रखे हुए अपने साथ।
9: तो अच्छी बात है बिकी भाई कि आप मशरूम के क्षेत्र में कदम रखे और अभी हमको लगता है कि आप काफी सफल हो चुके हैं। तो शुरुआत दौर में कैसे शुरुआत किए थे आप, कितने जगह से शुरुआत किए, क्या पूंजी लगा?
10: स्टार्टअप में मैं स्टूडेंट थे तो पैसा एक्चुअली कैपिटल का भी पूंजी था, तो 10x10 का रूम में 7-8 हजार लेके हम आए थे, और उसी को 7-8 हजार लेके आने के बाद उसी को धीरे धीरे कर्म बाई कर्म करके साल बाई साल मेहनत करते हुए अपने प्रतिभा को आगे बढ़ाते हुए आज अप्रोक्स लाखों का बिजनेस कर रहे हैं, और रांची में पूरा कवरिंग कर लिया, मेरा ख्याल से 100 आदमी बेच रहा है, तो 50 आदमी मेरा माल को मतलब मेरा मशरूम को बेच रहा।
9: तो जैसे मशरूम की बात करें तो कौन कौन सा मशरूम का उत्पादन करते हैं?
10: हम एक्चुअली झारखंड में सबसे ज्यादा बटम और डिंगरी मशरूम का बहुत ज्यादा प्रचलित है, और उसके अलावा और भी मशरूम का हम जानते हैं प्रोडक्शन करने, लेकिन वो बहुत कोई जानता नहीं है, इसीलिए हम उसको तो नहीं बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बटम और डिंगरी मशरूम, जो कि बटम अभी तो सब जगह सब राशन दुकान में भी मिल रहा है, जगह जगह चौक चौराहे पे भी मिल रहा है, और छाता मशरूम अभी देखिए खटाल में मिलता है, कचहरी रवि एंड मशरूम एंड वेजिटेबल सप्लायर में भी मिलता है, प्लस मेरा नेवरी विकास में भी ऑफिस है वहाँ भी मिलता है, इस टाइप से हर एक जगह मशरूम मिलता है।
9: जैसे आप बटम का बात किए और बहुत सारे मशरूम के बारे में बात किए, तो सबसे ज़्यादा डिमांड अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका है अभी के क्षेत्र में?
10: अभी के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बटम मशरूम का डिमांड है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे पार्टी में नॉनवेज नहीं बन रहा, नॉनवेज नहीं बनने के कारण ये है कि कुछ तो गेस्ट लोगों को खिलाया जाए जो कि स्पेशलिस्ट हो, नॉनवेज भी ना हो और अच्छा रहे, तो इसके देखते हुए मशरूम सबसे ज़्यादा बटम मशरूम को प्रचलित है, और गांव देहात में देखा जा रहा है कि छाता मशरूम, क्योंकि छाता मशरूम थोड़ा सा मूल्य में कम में मिलता है, बटम मशरूम थोड़ा अधिक में मिलता है, तो शहर में देखा जाए और बड़े बड़े होटल में देखा जाए तो बटम मशरूम का ज़्यादा डिमांड है, और रूरल एरिया में छाता मशरूम का ज़्यादा डिमांड है, दोनों अपने जगह अपने अपने स्थान पर है।
9: तो आप अपने क्षेत्र में जहाँ पे मशरूम लगाए हैं वो करीब कितना बड़ा एरिया में लगाए होंगे?
10: हम अभी बटम मशरूम का 4 रूम में अपना लगाए हुए हैं, प्रत्येक दिन 150 kg प्रोडक्शन हो रहा है, छाता का माने तो 30x50 का 2 रूम है उसी में प्रोडक्शन हो रहा है, और छाता मेरा ख्याल से 150 kg प्लस है रांची में मेरा।
9: हाँ, तो डेली आपका सप्लाई हो रहा है?
10: हाँ, डेली सप्लाई हो रहा, हर एक काउंटर में सप्लाई हो रहा।
9: तो बेचने का समस्या कोई नहीं है सर?
10: कोई समस्या नहीं, हम तो और बोलते हैं कि और किसान हमारे साथ जुड़े तो उसका भी बेचने का जिम्मेवारी हम ले लेंगे।
9: जैसे कि बटर मशरूम के बारे में बात करें तो शुरुआत से कैसे लगाते हैं, शुरुआत थोड़ा सा बताएं उसको कैसे लगाते हैं?
10: जैसे कि बटर मशरूम का प्रोसेस अलग है, डिंगरी का अलग है, तो पहले बटर मशरूम के बारे ये बताना चाहते हैं कि बटर मशरूम का मेथड 1 महीना 45 दिन का है, उनका एक कंपोस्ट खाद बनता है, कंपोस्ट खाद में बहुत सारा रॉ मटेरियल आता है, जैसे भूसा हो गया, चोकड़ हो गया, गुड़ हो गया, और कुछ कुछ खाद बीज दुकान से कुछ कुछ मटेरियल आता है, यूरिया यूरिया डीएपी भी कुछ कुछ वहाँ डाला जाता है, और जो हो गया पोल्ट्री जो मुर्गी का जो होता है वो भी डाले जाते हैं भूसा को गर्म करने के लिए, वो सबको 1 मंथ तक प्रक्रिया किया जाता है। मतलब अगर हम चेंबर में बनाते हैं तो 14 से 15 दिन में हो जाता है, और प्रकृति के हिसाब से हम बनाते हैं तो कम से कम 30 दिन लगता है। तो अब हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे बनाएं। बड़े बड़े प्लांट जैसे खुले वो तो अपना चेंबर बनाए हुए हैं, वो तो 14 से 15 दिन में खाद कंप्लीट कर ले रहे हैं, वो खाद में स्पॉनिंग करके उसके बाद उसका जो एसी रूम होता है वहाँ डाल देते हैं, वहाँ कम से कम 15 दिन लगता है, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है।
9: तो करीब कितने दिन में तैयार हो जाता है मशरूम बटम का?
10: बटम मशरूम 45 दिन में कंप्लीट फ्रूटिंग आने लगता है।
9: 45 दिन में। और जैसे कि आपने बताया कि दूसरा मशरूम के बारे में बताया, तो उसका प्रोसेस क्या है?
10: वो डिंगरी मशरूम तो हर एक गांव देहात में किया गया है, जैसे कि उसका मेथड है जैसे भूसा हो गया, भूसा के बाद आपको भूसा को शुद्धिकरण करना पड़ता है, जैसे हम लोग कपड़ा पहने रहते तो गंदा हो जाता है, तो उसी प्रकार हम लोग भूसा को शुद्धिकरण करते हैं। तो शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग वेवेस्टीन एक है पाउडर और केमिकल है, तो पानी में हम लोग पहले केमिकल डालते हैं फॉर्मेलिन, उसके बाद वेवेस्टीन, उसके बाद उसको डंटा से पूरा घोल लेते हैं, जैसे सरफ होता है ना उस टाइप से घोल लेते हैं, उसके बाद वहाँ जितना भूसा है उसको डाल देते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा चढ़ के इधर उधर ऐसे टाइप से जाते हैं जैसे कि धुआं आ जाए, उसके बाद उसको 12 घंटा के लिए बंद कर देते हैं, फिर उनको बाहर निकाल के पूरा पसार देते हैं, पसारने के बाद उसको सुखाते हैं, और इतना सुखाना चाहिए कि हाथ में पकड़े लेकिन पानी ना आए लेकिन नमी पता चले, नमी पता चले तो हमें इससे ये भरोसा हो जाता है कि ये मैच्योर हो चुका है, ये हमारा जो है ओस्टर डिंगरी मशरूम लगाने के लिए पूरा खाद तैयार हो गया। उसके बाद उसको कोली बैग में 24x आपके हिसाब से निर्भर करता है आप कितने के कोली बैग लेते हैं, कोली बैग में लेयर बाय लेयर करना पड़ता है, थोड़ा सा ले लिया नीचे में लेयर बाय लेयर करना पड़ता है, पहले उसमें भूसा दे दिए एक लेयर, उसके बाद थोड़ा सा स्पॉनिंग कर दिए, फिर भूसा दे दिए, फिर स्पॉनिंग कर दिए, ऐसे लेयर बाय लेयर 4 या 5 लेयर करते हैं, 6 लेयर भी कर सकते हैं, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाता है, उसको बांध के 12 से 20 दिन के लिए हम कोई अंधेरी रूम में रख देते हैं,
9: उसमें छेद कर देते हैं।
10: हाँ, छेद करके अंधेरी रूम में रख देते हैं, अंधेरी रूम में वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया करना स्टार्ट कर देता है।
9: कितने दिन में तैयार हो जाता है?
10: वो 30 दिन में तैयार हो जाता है, 30 से 35 दिन में
9: तैयार
10: हो जाता है, मार्केट में चल जाता है।
9: चलिए अच्छी बात है बिकी भाई कि आप मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं और बहुत सारे किसान लोग बता रहे हैं और इससे लोग जागरूक भी हो रहे हैं, और एक तरह से कहिए तो एक आमदनी का अच्छा स्रोत भी है कि नहीं?
10: हाँ,
9: आपको क्या लगता है कि अभी के क्षेत्र में एक अच्छा आमदनी से मिल सकता है?
10: बहुत अच्छा स्कोप है अभी के क्षेत्र में, जैसे हम पहले आपको डिक्लेरेंस किए कि हम एक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है,
9: सही बात,
10: और आज के डेट में हम अपना फाइल लेके दर दर नौकरी मांगने से अच्छा है कि हम आत्मनिर्भर बन जाए,
9: सही बात,
10: और हमारे आज अभी सब कोई आत्मनिर्भर बनना स्टार्ट कर जाए तो बेरोजगार ही हट जाएगा।
8: तो एखन हमरे मन जानकारी करत रहे, किसान से करल बातचीत के सुनत रहे किसान रहे बिक्की कुमार और इनकर से गुठियाला मनोज कुमार।
9: एकरे संग आज कर किसान होने के बेरासी रात ही कार्यक्रम का प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
8: और प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालगिर।

0: आज कर बचत, कल कर सुरक्षा।
1: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनवाइया सो भाई बहन मन के जुगनी बहन दन से और एकदम जोहार और मनोज भाई और के भी हमर दन से जोहार।
0: जोहार जोहार जुगनी बहन और मोर दने से भी सब के जोहार। और का हाल चाल है?
1: एकदम नगदे नगद है
0: आमन खूब
1: मौसम
0: खाते इसने।
1: एकदम। देखो अखन आम वामन पाके लगल है बड़ा बढ़िया एकदम। आ देखो खट्टा मीठा आम है बड़ा सुंदर लागेला खाए के लिए। तो आओ हमरे दने एको दिन आम खाए के लिए।
0: सही बात है। देखो ना आजकल तो बड़का बड़का आम मन भेटाएल है। ऐसे ऐसन आम है जे कि हियाँ कर आम देखो तो विदेशों जाते हैं। बता तो कितना हियाँ कर मने पहचान बनत है हियाँ कर आम कर है कि नहीं।
1: एकदम एकदम। देखो हमरे का देखो भारत देश ऐसा है कि एकदम नाना बरन कर हियाँ सांस्कृतिक धर्म और जो भाषा है लेकिन हम ये सब अलग अलग है लेकिन भी यहाँ कर आदमी मन सब एकजुट हो के रहे ना है कि नहीं। और
0: सही बात है। देखो नहीं अम्बा कर बात कर ली तो सब मिलजुल के खेती बाड़ी करते हैं, आपस में रह के खेती बाड़ी करते हैं। सभी तो अलग अलग धर्म जाति कर रहे हैं लेकिन सबको मैसा हो के खेती बाड़ी करके देखो विदेश भेजते हैं। तो आपसी एकता कर बात है कि
1: बिल्कुल बिल्कुल ये
0: नहीं?
1: हमरे करे को पहचान है कि नहीं। और देखो नहीं अगर गुलदस्ता में हमरे नाना वरण कर फूल के अगर एक जगह जुमाए के रखेला तो कितना सुंदर
0: सही
1: दिखेला
0: बात है,
1: उकर से
0: सही बात
1: कितना
0: है।
1: सुंदर दिखो में कितना सुंदर दिखेला और उकर से खुशबू भी कितना बढ़िया आवेला है कि
0: हाँ
1: नहीं।
0: देखो
1: तो एहन यार हमरे का देश में भी एकदम हमरे का देश में पहचान बनल है एकदम सुंदर गुलदस्ता नियर हमरे का राइज दिखेला और यही हमरे का पहचान भी है
0: आ
1: कि
0: सही बात। देखो नहीं हमारे मन कर कार्यक्रम देखब तो और चाइर को हमारे कर क्षेत्रीय भाषा जैसे कि कुरमाली, पंचफड़गनिया, खोटा, नागपुरी सब अलग अलग भाषा है लेकिन एक जगह कार्यक्रम करे ले तो सबके आपस में एकता बुझा ले कि चलो भाई कम से कम सब भाषा का अपन अपन महत्व है लेकिन हमारे एक जगह रह के हमारे गोठिया ले बलिया ले और बात करी ले और हमारे मन कार्यक्रम के पेश करे ले तो बेस लागे आपस में एकता कर मतलब ये सब संदेश है कि नहीं।
1: रीछ रंग करेला है कि
0: सही
1: नहीं।
0: बात
1: तो
0: है,
1: आज ये पसंद का लोकगीत कर कार्यक्रम
0: सही
1: भी है
0: बात,
1: के
0: सही बात
1: तो
0: है कि आज
1: चलो
0: मंगर का दिन है के और बहुत कोई आसरा करे ना कि मंगर का दिन में हमारे मन आब और बढ़िया बढ़िया गीत के सुनाब है नहीं। तो सबसे पहले और करेले पंच परगनिया भाषा कर गीत से और हमारे के सुनाते हैं और हमारे गाय के सुनाते हैं सुभाष परी और संगीमन।
1: चलो तभी के सुना हमारे।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडिया देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
10: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
9: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
11: पश्चिम का लोकगीत कार्यक्रम में अगला गीत हमरे नागपुरी लोकगीत सुनब। कलाकार हैं मुंद्रजीत महली और उकर संगीमन।

तो संगीत साथी मन एखन हमारे सुनलिए मुद्रजित महली से गावल गीत जेकि नागपुरे रहे और बहुत बढ़िया गीत रहलक। अब एक बार देखो हमारे कर बेरा भी सिरा थे, लेकिन जाइक से पहले एक गीत सुन ले। वो खोटा भाषा में है, करुणा कुमारी और संगी मिलकर गावल गीत।

0: एकदम मधुर गीत रहे हमरे कर खोटा भाषा में करुणा कुमारी और संगी मिलकर गावल गए। तो संगी साथी और भाई बहन एक संग देखो आइज कर हमारे दुनिया कर पसंद कर लोग गीत कर बेरासी रात है और कहे चाहते कि खुश रहो मस्त रहो और व्यस्त रहो और हमरे की इजाजत देव रोर मन का संगी मनोज और
1: जुगनी बहन के देव विदा
0: जोहार।
1: जोहार।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
4: भाइयों बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
3: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
4: भाइयों बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
3: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएमसूर्यघर.gov.in पर।
3: हर

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में किया झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि निर्यात में वैश्विक पहचान बनाने का दिया संदेश। राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू। मिशन 28 के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने 23 की चुनावी रणनीति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी। राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से मिली छूट। राज्य के क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक में अमरीकी कंपनियों ने दिखाई निवेश की रुचि। प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक। और रांची में कल से थ्रो बॉल और स्केटिंग का महाकुंभ। दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप और 12वीं नेशनल रैंकिंग के लिए रांची में जुटेंगे 5 देशों के खिलाड़ी और देश भर से 1,000 स्केटर्स। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में 3 दिवसीय झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले के लोगों का लोकार्पण किया और टाना भगत परिवारों को पशु शेड निर्माण के लिए 100% अनुदान राशि सौंपी। मुख्यमंत्री ने जैविक खेती तथा आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया।
1: हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में ही बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया, जहां किसान अपने खेतों में बंजर भूमि में फलदार वृक्ष लगाने का, और आज उसका फल मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर सिमडेगा की वो महिलाएं जो बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ी हुई हैं, आज वो अपना आम इंग्लैंड में भेजने का काम कर रही है। आप सभी किसान भाइयों से एक ही चीज निवेदन करूंगा कि आपने इन फसलों में कोई जहरीला पदार्थ का उपयोग ना करें, वो शारीरिक रूप से काफी नुकसानदेह होता है।
0: राज्य में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। रणनीति के तहत एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के 1 5-सितारा होटल में शिफ्ट कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं।
2: पार्टी के विधायक पार्टी लाइन से हट के कभी कुछ नहीं सोचता है। खाली जो लाइन प्रत्याशी को समर्थन देने का परिमल नाथवानी जी को सभी पूरी तरीके से एकजुट होकर के उस निर्णय के साथ खड़े हैं। अभी तो आना होगा, फिर आगे देखा जाएगा।
0: इधर इंडिया गठबंधन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज और कल रांची में मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन के सभी विधायकों और प्रमुख नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बीच राज्य के मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया है कि इस चुनाव में गठबंधन की जीत निश्चित है।
3: प्रणव झा जी, हम लोग जीतेंगे, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, ये बंगाल नहीं है, झारखंड है, और यहाँ इस बार लोग अस्मिता के साथ झारखंड की मान मर्यादा के साथ वोट करने जा रहे हैं।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने रांची स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि नामकुम मिलिट्री हॉस्पिटल में 19 जून तक विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और आम नागरिकों को निःशुल्क नेत्र जाँच की सुविधा मिल रही है। राज्यपाल ने इस लोक कल्याणकारी पहल की सराहना की। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वर्ष 2003 की एसआईआर सूची से मैपिंग पूरी होने के बाद राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। इन मतदाताओं को केवल प्री फिल्ड गणना फॉर्म और रंगीन फोटो जमा करना होगा। प्रवासियों के लिए बुक ए कॉल की सुविधा दी गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
4: नई तकनीक
0: से समाचार इस विराम के बाद।
4: खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
5: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
7: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
6: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
9: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने गुमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के क्रियाकलापों की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।
10: 1 रुपया यदि भेजते हैं तो लाभ के 15 पैसा पहुँचते थे, 85 पैसा बिचौलिया। वही चीज को एक बड़ा पारदर्शिता ये भारत में लाया प्रधानमंत्री, ताकि कोई बिचौलिया किसी ऐसा तत्व का कोई हाथ ना लगे, 100% लाभुक के बीच में पहुँचे।
0: अमेरिकी कंपनियों ने झारखंड में दुर्लभ और रणनीतिक खनिजों के खनन में गहरी रुचि दिखाई है। इस संबंध में आज रांची में मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अमेरिकी काउंसलेट जनरल के प्रतिनिधिमंडल के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कंपनियों को लिथियम और टाइटेनियम जैसे खनिजों के अन्वेषण में निवेश के लिए आमंत्रित किया। राज्य में मानसून का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिनों तक इसके कुछ कमजोर रहने के आसार जताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रशांत महासागर में अलनीनो की सक्रियता से खेती किसानी प्रभावित हो सकती है। हालांकि मानसून धनबाद, बोकारो और कोल्हान प्रमंडल को पूरी तरह कवर कर चुका है। विभाग ने कल रांची और रामगढ़ सहित अधिकांश जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची कल से दो बड़े खेल आयोजनों के साथ खेल मानचित्र पर चमकने के लिए तैयार है। खेल गांव में कल से द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो रहा है, जिसमें भारत, नेपाल और श्रीलंका सहित पांच देशों के 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड की अरुणा यादव भारतीय महिला टीम की कमान संभाल रही हैं। इसके साथ ही कल से ही खेल गांव में पांच दिवसीय 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप भी शुरू हो रही है। इसमें देश भर के 1000 से अधिक स्केटर्स अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में किया झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि निर्यात में वैश्विक पहचान बनाने का दिया संदेश। राज्य में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू। मिशन 28 के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने 23 की चुनावी रणनीति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी। राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से मिली छूट। राज्य के क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक में अमेरिकी कंपनियों ने दिखाई निवेश की रुचि। प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक। और रांची में कल से थ्रो बॉल और स्केटिंग का महाकुंभ। दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप और 12वीं नेशनल रैंकिंग के लिए रांची में जुटेंगे पांच देशों के खिलाड़ी और देश भर से 1000 स्केटर्स। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
11: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
1: आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
1: पाकुड़ जिले की पुलिस विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ साथ मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने एवं इस कारोबार में शामिल लोगों की धरपकड़ की जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। इस पर बात की पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने।
2: छापामारी की गई तो वहाँ एक चाय की दुकान में जो है ये 21 पुड़िया मिली है ब्राउन शुगर की और गांजा की 26 पुड़िया मिली है। दो आदमी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जो दुकान वाला है वो भी गिरफ्तार हुआ है और एक खरीदार था वहाँ, उसे भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इसमें पुलिस जो है बैक लिंकेज पे काम करती है, तो कुछ और भी नाम आए हैं जिन पर पुलिस छापामारी कर रही है, जल्द ही वो लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे।
1: शहरी क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर नगर परिषद द्वारा मकान मालिकों को विशेष छूट का लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वैसे मकान मालिक जो 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा कर रहे हैं, उन्हें 5 से 15% की

0: स्टेट है, जैसे बंगाल है, साथ ही साथ जो नेबर कंट्री है बांग्लादेश, तो ये माइग्रेट होने का बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि ये एक दूसरे से कंटामिनेट होने से, छींकने से, खांसने से संक्रमण जो फैलता है। अतः हम लोग की जो टीम है पूरे पाकुड़ जिला की स्वास्थ्य टीम अलर्ट मोड पे है और नजर हम लोग बनाए हुए हैं, किसी तरह का आउटब्रेक अभी नहीं है। पूरे जिला जो है हमारे खसरा का जो नियंत्रण है, कोई तरह का और रिपोर्ट कहीं से नहीं आ रहा है।
1: पाकुड़ जिले के लोगों को समय पर आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र मुहैया कराने को लेकर उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर पंचायतवार 3 दिवसीय विशेष शिविर लगाया गया है। आयोजित शिविरों में आवेदनों का निष्पादन भी अंचलाधिकारी सहित राजस्व कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
2: अभी आप सुन रहे थे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन रहे थे झीले में आजकल।
1: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, आदिवासी अखाड़ा।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
3: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
2: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ

0: सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आज पे तमाम नोरे पे हुई बाखड़ी बाखड़ी है के बेरोजगारी अनिदान तकनीकी शिक्षा बुंग लव बाखड़ी ते आंपा मुगम ते उतुन ते कियर माइंडसोन सिल्वानुस कियर ला आए पे ओंडोरे पे
3: राज ते उबर बराना पढ़े लिखे रो पढ़े लिखे शिक्षित रो अशिक्षित खंधाया लेबू की आज मैं उबर खंधाया कुरुक किया समस्या दियो दियोगा बढ़ेगा चोलताई विशेषकर को शिक्षा कुई कुई स्कूल कॉलेजा कुरुक की पढ़े कौन होकी ते चाकरी उमकुईताई चाकरी या तलाश बूंग होकी हंते उते बतके ताकी रो होकी ते कामू उमकुईता होरोज कौन होकी आत्महत्या कराए गो तेमाए ऊ खबर दियो दियोवा अखबार कागज कीते ओनर डोमता रोजो डोमता खोड़ी पौधा चाहे शहर सोप रोछोप बेरोजगार समस्या नाग बुआंग लिखे फैलेता पढ़े लिखे बेटा बेटी किया संख्या उपने जुगाई हुई गोटसी नो सरकार बेरोजगार लेबू कीते बरोल नाथोंग इजो नाफा कुना वाला रोजगार तेरना पालते जहाँ बराना मदद जो तेरना पालते जहाँ बराना प्रोत्साहन जो तेरना पालते गरीब रो रोजगार मुंजगा केचिया या सिका लेखे आइकियर गरीबी ते डिपसाना रोजगारा महा देन हेके राज ते कोलगिल कॉलेज केंद्र शुरू मा मूल कारण रोजगार गाहे के राज ते बेरोजगार जनसंख्या उपने जुगाई आज नो सरकार ते जहाँ योजना लागू कराएना सहज उमोड़ी जैसन जनसंख्या बढ़े सी हो अनुपात बूंग रोजगार विकास होना पाल सी बेरोजगार मुद कारण व्यवस्था या कमी है के पढ़े लिखे कुरू कीते खाली किताब ज्ञान ते डोमता वास्तविक ज्ञान कुना या चलते होकी ते बाहरी ज्ञान कुना पालते रो होकी अनुभवहीन होई गो तमय उद्योगीकरण सही सही ज्ञान होकी ते कुता अनिंग ते तमा जो जुकुर जिनिस बाहरे तय ओलना होता होकड़ा थों अनिंग ते बड़े बड़े कारखाना बायना होना होडोमा निर्भर बुंग आसरा योना होना जुगाई पढ़े लिखे लेबू की चाहे तेमाय नो इंग ते चक्री गा कुना जहाँ व्यवसाय कराना उमाय लामते व्यवसाय करायनाया बुद्धि होकी ते उमोड़ी तमगा नेडाते उस संकट बूंग बंचाय ना थों लेबू किया मोझीते बदलाव इकुट जुकुराई जेगा शिक्षा होना चाहिए होकड़ा कामू करायना वाला शिक्षा होना चाहिए डिग्री धो धो पढ़े लिखे कुड़ू कीते तुरथेगा चाकरी कुना चाहिए बसरते होकी ते तकनीकी ज्ञान रो प्रायोगिक ज्ञान या गुण होना चाहिए किताबी ज्ञान तय तकनीकी ज्ञान ते जुगाई जोर तेरना चाहिए होखो बरन या उखो बरन संस्था की खोलाना चाहिए नो होकी ते बारूडा शिक्षा कुई गुरु होकड़ा थोंग मुन जबर डा योजना बायना जुकुराई बेरोजगार ते डिप्सा अनाथों सिंचाई या करज करम खोड़ी पौधा योजना बायना सब लेबू ते राशन तकना या कार्यक्रम झाड़ी लेबू किया

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महा उत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
3: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
2: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी वार्ता, विषय था वुमेन एम्पावरमेंट, की टू द नेशन बिल्डिंग। टोकर थी सुमाइला तहजीब, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्मी गीत कार्यक्रम फिल्म संगीत में।

पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म कर्ज से। आनंद बख्शी के गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी के।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026, रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप की नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
4: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
5: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महा उत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
6: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
5: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जनकल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
2: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
1: जी,
2: विश्वास और जनकल्याण
1: जी,
2: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जनकल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपए भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है। वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
2: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा, जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
2: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
2: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जनकल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
2: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
2: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है?

0: समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो इमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पे बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
0: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं, वहां PM2.5 और PM10 ये दो जो तत्व, मतलब PM2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पोल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्री पोल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है
1: जी। प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक, इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?

0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे। अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव-गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं, और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है, और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8,10,00,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे

0: आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
1: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
0: जी।
1: और नेचर का ये नियम होता है कि जहां प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
0: जी।
1: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
1: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है, और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहां पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था, तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नजदीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं, और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
0: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान।

0: आपने भी बात की, अब वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
1: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
0: जी।
1: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार, हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
0: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
1: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
0: जी,
1: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
0: जी?
1: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है, गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
0: जी।
1: आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
0: जी?
1: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
0: जी?
1: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
0: जी,
1: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
0: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
1: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
0: जी,
1: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है, जो मेट्रो का विस्तार है

0: ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नई एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉर्पोरेट जगत का कितना इंपॉर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉर्पोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉर्पोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉर्पोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा है, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभी आप सुन रहे थे वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण पर एक विशेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

आइए अब हम आपको आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9:00 का वक्त होगा न्यूज 8:09 का। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। पे आप सुनेंगे मनी टॉक। 9:45 पर कार्यक्रम मंथन। दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। दस बजे आप सुनेंगे शिक्षा पर आधारित लोक गीत कार्यक्रम गूंजे झारखंड में।

11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। श्रोताओं, हम बात करते हैं हमारे जीवन के बारे में। खुशी हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत और अनमोल भावना है, जो हमारे मन को सुकून और संतुष्टि देती है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके, बल्कि यह हमारे भीतर से ही पैदा होती है। अक्सर लोग सोचते हैं बहुत सारा पैसा, बड़ा घर या महंगी गाड़ियाँ होने से ही खुशी मिलती है, लेकिन असलियत में खुशी का संबंध बाहरी भौतिक चीज़ों से नहीं, बल्कि हमारे मन के स्थिति और संतोष से है। जब हम अंदर से शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं, वही असली खुशी होती है। महान दार्शनिकों के अनुसार खुशी तब मिलती है जब हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कर्म एक समान होते हैं।

और हम अपने जीवन में अगर रक्तदान करते हैं तो मरीजों की भी जान बचती है, बल्कि नियमित रक्तदान से दाता का अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम भी कम होता है।

रक्तदान एक पुनित कार्य है जो किसी जरूरतमंद की जान बचा सकती है। एक सुरक्षित और सफल रक्तदान के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप पात्रता के मापदंडों को समझें, सही आहार लें और दान के बाद उचित देखभाल करें।

तभी हम एक खुशहाल इंसान बन सकते हैं और माहौल को सकारात्मक और ऊर्जावान बना सकते हैं। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में हम सुनेंगे समाचार संध्या। कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले

0: रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमरीका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण में भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देशभर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष
2: स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी और जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की यह पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि यह दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देशभर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए

0: परमाणु हथियार युक्त देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जलवायु तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian.

0: हजार से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। भारत और जापान ने जहरीली गैस के अखराज में कमी करने और पायदार तरक्याती इकदामात से मुतालिक तआवुन को फरोग देने की गरज से पेरिस मुआहदे के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के लिए निफाज के जाब्ते को अपनाया है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे में इसराइल को लिबनान से अपनी फौजें भी वापस बुलानी होंगी। आईएमडी ने शुमाली भारत में कल के लिए बिजली चमकने और तुंध हवाओं के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। और फेंसिंग यानी शमशेर जनी की सीनियर एशियाई चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के शहर एविया में जारी G7 समिट में एक आला सतह के वर्किंग इजलास में हिस्सा लिया। इस इजलास का मौजू था मीरे नौ का फरोख। इस इजलास में G7 मुल्कों के लीडर, शराकतदार ममालिक और आलमी बैंक और अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक के सीनियर नुमाइंदे शरीक हुए। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जाने लीडरों के बाकायदा खैर मकदम के फौरन बाद ये मीटिंग शुरू हुई। मीडिया पर तस्वीर जारी की और लिखा कि भारत और G7 ममालिक आलमी खुशहाली, पायदारियत और इंसानों की फलाह को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे नुमाइंदे अंकित कुमार, जो वजीर आजम के G7 के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके हमराह गए हुए हैं, ने ताजा तरीन सूरत रिपोर्ट भेजी है।
1: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, नवाचार और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है। उर्दू खबरों के लिए एविया फ्रांस से अंकित कुमार।
0: इससे कबल आज दिन में वजीर आजम कल शुरू हुए समिट में शिरकत के लिए दो रोजा दौरे पर एविया पहुंचे। अपनी आमद के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने लिखा कि वो अहम आलमी मामलात पर दुनिया के लीडरों के साथ बातचीत और तबादला ख्याल के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत एक ज्यादा पायदार और खुशहाल कुर्राए अर्ज की जानिब इज्तिमाई कोशिशों में पेशरफ के तहीं पुरअज़्म रहेगा। समिट से अलग वजीर आजम कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, इंग्लैंड के वजीर आजम केयर स्टामर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। आज शाम देर गए वो सदर मैखां की जानिब से मुनक्किदा एक शानदार इशाइये में शिरकत करेंगे। समिट के दौरान एक और अहम बात वजीर आजम मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल होने वाली मुलाकात है। दोनों लीडरों के मुतालिक तवक्को है कि वो कई शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकेकार पर तबादला ख्याल करेंगे। साथ ही बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी सतह पर रूनुमा होने वाले अहम वाकयात पर तबादले ख्याल करेंगे। फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम मोदी कल शाम पेरिस पहुंचेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज फ्रांस के नीस में यूपीआई का आगाज किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि फ्रांस के बावकार खुर्दा कारोबारी मकामात में से एक में भारत के आलमी दर्जे के डिजिटल अदायगी के प्लेटफॉर्म को लाना यूपीआई की आलमी पैमाने पर तौसी में एक और नुमाया कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि यह पहल बड़े पैमाने पर भरोसे, बिला रुकावट और इंटर ऑपरेबल डिजिटल हल फराहम करने की भारत की सलाहियत का मजहर है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि यह आगाज भारत और फ्रांस के दरमियान इकतसादी और तकनीकी ताल्लुकात को मुस्तहकम करता है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जामे शराकत दारी की बढ़ती हुई गहराई और उमंगों की अक्कासी होती है। बड़े सनती मुल्कों के ग्रुप ऑफ सेवन समिट के मौके पर अमरीकी इत्तेहादियों ने आज रूस यूक्रेन तनाजे के चार साल से ज्यादा अरसे के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन की हिमायत के एजेंडे के आगे बढ़ाने के लिए काम किया। میزبان فرانس کے صدر ایمانیول میخاں نے کہا کہ وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو ترغیب دی جاتی رہے کہ وہ یوکرین کی حمایت اور روس پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ کسی

0: Dice सुपर्णा शेख हफीज।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज ऐलान किया है कि तारीखी ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियांग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने मुल्क के दिफा

के लिए रिजर्व होंगी। 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम दहशतगर्दी के खिलाफ नरेंद्र

मुजाहिदीन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में वाक दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया।

कर रहा है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए सिलचर के प्रोफेसर अनूप और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मामले से निपटने के लिए तेजी के साथ काम किया है। एनडीए हुकूमत दहशतगर्दों

ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने पेरिस मुआहदे की दफा 6.2 के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM पर अमल कार्रवाई, जहरीली गैसों के अखराज में कमी और पायदार तरक्की की स्कीमों के

0: निकाल लीजिए, रंगदारी टैक्स जिसे कहते थे. सो दैट वॉज कट मनी. एंड देन यू हैड सिंडिकेट्स. आप घर बना रहे हैं तो आपको अपना ईंटा, बालू, सीमेंट, लोहा पार्टी के लोगों से खरीदना पड़ेगा और उन्हीं के रेट पर खरीदना पड़ेगा. उनका जो ब्रांड है, उनका जो भी है, वही लेना पड़ेगा. आपका कोई इसमें ऑप्शन नहीं है. या आप अपना घर बेच रहे हैं, समझिए आपके पास मकान है जिसका वैल्यू 10 करोड़ है. वो लोग आकर बोलेंगे, सिंडिकेट कहेगी जी ये मकान हम लोग तय करेंगे, आप कितने में बेचोगे, किसको बेचोगे, और 1 करोड़ का बिकवाएंगे, बाकी 9 करोड़ से वो लोग आधा 4.5 करोड़ अपने जेब में ले लेंगे.
1: सो एन एब्सोल्युटली एक्सप्लॉइटेटिव.
0: इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट, इट वॉज अ मॉन्यूमेंटल, क्या कहें, इट वॉज अ फैक्ट्री ऑफ करप्शन, इट वॉज एन इंडस्ट्री ऑफ करप्शन, इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट.
1: एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी. अपने विक्ट्री स्पीच में प्रधानमंत्री ने May 4 को एक बात का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो गोल्डन एज जब थी तो 3 भाग हमारे देश के उस गोल्डन एज के पिलर्स थे, अंग, बंग और कलिंग. तो अंग मतलब बिहार पहले भाजपा की विक्ट्री में आ चुका था, उसके बाद ओडिशा भाजपा जीत चुकी थी और अब बंगाल की बारी थी, वो अब May 4 को रिजल्ट में हो गया. तो कितना इम्पोर्टेंट आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करना है तो ये 3 भागों को विकसित करना जरूरी है क्योंकि ये पिछड़ गए हैं भारत की विकास यात्रा में.
0: ये बात सही है. और अंग बंग कलिंग जो आप कह रहे हैं, बट उसमें आप असम को भी जोड़िए, जो अपने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी जोड़िए. और जब तक ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक ईस्ट की इकोनॉमिक कहानी एक कॉम्पिटिटिव स्टोरी नहीं बनेगी, तब तक भारत अपने आप को विकसित भारत नहीं कह पाएगा. अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, वेस्ट इंडिया काफी डेवलप्ड है, साउथ इंडिया भी काफी डेवलप्ड है, ईस्ट इंडिया बस एक ही जगह रह जाता है जहां पर अभी तक कुछ खास काम नहीं हो पाया. मिडिल इंडिया, आप अगर मध्य प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश की जो रिकवरी स्टोरी है, बीमारू प्रदेश से आज कहां पहुंच गई है. अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें, नया प्रदेश है और इतनी डिप्राइव्ड जोन थी कि उसको अलग स्टेट बनाना पड़ा, आज छत्तीसगढ़ कहां पहुंच गया, और वेस्ट बंगाल वहीं का वहीं पड़ा रह गया. तो हमें आगे का देखना पड़ेगा. एंड वेस्ट बंगाल कैन नॉट जस्ट बी अ पोटैटो इकोनॉमी. That we produce the country's most largest amount of potatoes.
1: Like you heard Kanchan Gupta ji, that the destiny of India is inextricably linked to the destiny of Bengal, because you would recall that it was from Bengal that the British also began experimenting with their divide and rule policy, because they realized very early that if they have to capture the soul of India, they must first break Bengal. So that's the importance of West Bengal to the fate and destiny of our country. Thanks for joining us, Kanchan ji. Thank you.
2: In this special program, you were listening to a discussion on West Bengal after BJP's historic mandate, governance, development and future priorities. Participants were Kanchan Gupta, senior journalist and political analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

आइए सुनते हैं शिक्षा पर आधारित लोकगीत कार्यक्रम गूंजे झारखंड में। संकलन और वाचन संध्या नीलिमा टोपनो के, प्रस्तुति प्रदीप कुमार की।

स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई, पवित्रता और शुद्धता। यह न केवल हमारे शरीर और घर तक सीमित है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण, समाज और पूरे देश से भी जुड़ी हुई है। स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमें स्वस्थ और सुखी रहने में सहायता करती है। कहा जाता है कि स्वच्छता ही आधा स्वास्थ्य है, अर्थात यदि हम साफ सफाई का ध्यान रखें तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज सुनिए स्वच्छता से संबंधित कुछ लोकगीत। सबसे पहले हमें व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। रोज स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, दांत साफ करना और हाथ धोना बहुत ही आवश्यक है। इससे हम कीटाणुओं से बच सकते हैं और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। विशेष रूप से खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है।

यदि हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते तो हम स्वयं भी बीमार पड़ सकते हैं और दूसरों को भी बीमार कर सकते हैं। इसके अलावा घर की स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और उसे सही जगह पर डालना चाहिए। रसोई घर को साफ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि गंदगी से खाने में कीटाणु फैल सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। घर के आसपास गंदगी होने से मच्छर और मक्खियाँ पनपती हैं जो कई खतरनाक बीमारियां फैलाती हैं, जैसे डेंगू मलेरिया आदि।

सामाजिक स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक स्थान भी हमारे ही हैं, इसलिए उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और साफ सफाई का ध्यान रखे तो हमारा समाज और देश स्वच्छ और सुंदर बन सकता है। स्वच्छता का महत्व केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व और संस्कृति को भी दर्शाता है। एक स्वच्छ वातावरण में रहने से मन प्रसन्न रहता है और काम करने की ऊर्जा बढ़ती है।

स्वच्छता से हमारे देश की छवि भी बेहतर होती है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसलिए स्वच्छता को अपनाना हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। यह अभियान तभी सफल हो सकता है जब हर नागरिक इसमें अपना योगदान दे। ये कहा जा सकता है कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। हमें इसे केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में अपनाना चाहिए। यदि हम सभी मिलकर स्वच्छता का पालन करें तो हम एक स्वस्थ, सुंदर और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम स्वयं भी स्वच्छ रहेंगे और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे।

पेड़ पौधे और जंगल प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं और वन्य जीवों को आश्रय देते हैं। ये हमें खुशियाँ देते हैं। प्रदूषण वनों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने, पानी बचाने और प्लास्टिक का उपयोग कम करके प्रकृति की रक्षा में अपना सहयोग देना चाहिए।

श्रोताओं गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज आपने सुना स्वच्छता संबंधी कुछ लोकगीत। कलाकार थे उराव में रायसन उराव और साथी, मुंडारी में छोटराय मुंडा और साथी, सोमरा लोहरा और साथी, खोरठा में करुणा देवी और साथी, नागपुरी में रूना देवी और साथी। वाचन स्वर था संध्या नीलिमा तोपनो का और प्रस्तुति थी प्रदीप कुमार की।

अभी आप सुन रहे थे शिक्षा पर आधारित लोक गीत कार्यक्रम गूंजे झारखंड में। संकलन और वाचन संध्या नीलिमा टुपनो के थे, प्रस्तुति प्रदीप कुमार की।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। रागनंद में ख्याल गायन विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। गायक कलाकार है सविता राय, तबले पर संगत कर रहे हैं श्यामानंद झा, हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, राग नंद में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। गायक कलाकार थी सविता राय, तबले पर संगत कर रहे थे श्यामानंद झा और हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की

0: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitaye Sarvajan Sukhaye has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Evian, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of operations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses and advanced contingency plans for low rainfall districts. Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi during which consensus was reached among six states on the long-pending Kishan multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishan project will be placed before the Union Cabinet for approval. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles EFR will soon be revived with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally in Kursiong under Darjeeling District to accord a grand welcome to the newly elected Chief Minister in the Darjeeling Hills, Mr. Adhikari paid tribute to the valor and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. India and Japan have adopted the rules of implementation for the joint crediting mechanism or JCM under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the memorandum of understanding reached between the United States and Iran. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in Group 1 clash at New Jersey in the United States tonight. And that is the end of this news bulletin.
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रांची केंद्र है। रात्रि के 11:10:17 हुए हैं। हमारी आज की यह सभा यही संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा सुबह 5:55 पर पुनः आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। एफएम सभा जारी रहेगी। जय हिंद। सुप्रभात।

प्रातःकालीन सभा सुबह 5:55 पर पुनः आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, FM सभा जारी रहेगी। जय हिंद, सुप्रभात।